नमस्कार श्रोताओं, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 6 अगस्त सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 और 33 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
2: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
1: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणाली के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉ. वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रुपए की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार नमस्ते स्कीम के अंतर्गत ऐसे लोगों को टिकाऊ आजीविका के अवसर देना जारी रखे हुए है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का ढहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें भारत के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए की जा रही पहलों की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पर श्री जोशी ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता और सुलभता को बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत एट 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। ईरान ने कहा है कि ओमान के साथ हॉर्मूज जलडमरू मध्य पर समझौते की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस सप्ताह समझौते की घोषणा का अंदेशा जताया है। संभावित समझौते से इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को फिर से खोलने में मदद मिल सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो सकता है। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कोयम्बटूर में आज खेले जाने वाले सेमीफाइनल में ओडिशा का मुकाबला पंजाब से और झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, ओडिशा, महाराष्ट्र के भीतरी हिस्सों, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना।

भारत केवल एक देश नहीं बल्कि विविधताओं में एकता का अद्भुत उदाहरण है। जिस मिट्टी में राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर ने जन्म लिया, उस भारत पर हर भारतीय को गर्व है। भारत की शक्ति उसकी संस्कृति, संस्कार और एकता में निहित है। भारत की पहचान उसकी प्राचीन सभ्यता और आधुनिक सोच का सुंदर संगम है। भारत का भविष्य उसके जागरूक, शिक्षित और संस्कारी नागरिकों के हाथों में है।

श्री कृष्ण की मुरली का सबसे बड़ा संदेश है अहंकार का त्याग। मुरली भीतर से पूर्णतः खोखली होती है, उसमें अपना कुछ भी नहीं होता। इसलिए जब कृष्ण उसे अपने अधरों से लगाते हैं, तभी उससे मधुर संगीत निकलता है। यही शिक्षा मनुष्य के लिए भी है। जब तक हमारे भीतर अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ भरे रहेंगे, तब तक जीवन में मधुरता नहीं आएगी। जिस दिन मन विनम्र हो जाएगा, उस दिन ईश्वर की कृपा का संगीत हमारे जीवन में भी गूंज उठेगा।

आज का मनुष्य सुख सुविधाओं की दौड़ में इतना व्यस्त हो गया है कि उसके पास स्वयं के लिए भी समय नहीं है। जीवन में धन है, प्रतिष्ठा है, परंतु शांति नहीं है। ऐसे समय में भगवान शिव का जीवन हमें सिखाता है कि वास्तविक आनंद सरलता में है, संयम में है और संतोष में है।

भगवान के चरण कमल का अर्थ है भगवान के दिव्य चरण जो कमल के समान पवित्र, कोमल, निर्मल और सुंदर माने गए हैं। भक्त उनके चरणों में शरण लेकर अहंकार, भय और दुख से मुक्ति प्राप्त करने की कामना करता है। प्रभु के चरण कमलों में ही जीवन का सच्चा विश्राम है। जहाँ श्रद्धा है वहाँ शांति है, जहाँ समर्पण है वहाँ परम आनंद है। जो मन भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लेता है उसके जीवन का प्रत्येक मार्ग स्वयं प्रभु प्रशस्त कर देते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे वंदना, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब प्रस्तुत है चिंतन। आज का विषय है सहिष्णुता और अंतर्मन का विस्तार। आलेख किशोर श्रीवास का, वाचक स्वर महिमा द्विवेदी के।
1: मानवीय चेतना की विकास यात्रा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो केवल भाषा का अंग नहीं होते बल्कि संपूर्ण सभ्यता के आचरण का निचोड़ होते हैं। ऐसा ही एक उदात्त शब्द है सहिष्णुता। स्थूल रूप से देखने पर कई बार इसे केवल एक व्यवहारिक गुण या सामाजिक शिष्टाचार माना जाता है, किंतु सूक्ष्म स्तर पर यह अंतर्मन के असीम विस्तार की घोषणा है। यह मनुष्य के भीतर छिपी उस आध्यात्मिक प्रौढ़ता का प्रमाण है जो संसार को उसके मूल स्वरूप में स्वीकार करने का साहस रखती है। प्रकृति के विशाल प्रांगण को देखें तो विविधता ही इसका आदि और अंत दृष्टिगोचर होती है। एक ही वनखंड में विशाल वटवृक्ष भी अपनी जड़ें फैलाता है और उसके मूल में एक नन्ही सी दूब भी अपना अस्तित्व बनाए रखती है। एक ही आकाश के नीचे मरुस्थल की तपन भी है और हिमालय की धवल शीतलता भी। ऋतुचक्र के बदलते रंग, पर्वतों की नीरवता और महासागरों का अनंत विस्तार, ये सभी बिना किसी अंतर्विरोध के एक साथ अस्तित्व में रहते हैं। प्रकृति कभी किसी एक तत्व के एकाधिकार को स्वीकार नहीं करती। वह सह अस्तित्व के इसी अघोषित नियम पर टिकी है जिसे मानवीय समाज में सहिष्णुता का नाम दिया गया है। यदि प्रकृति इतनी उदार न होती तो यह सृष्टि कभी भी जड़ और नीरस को हो चुकी होती। किंतु समकालीन परिदृश्य में जहाँ गति ही जीवन का एकमात्र मापदंड बन चुकी है और तकनीक ने दूरियों को तो मिटा दिया पर मनों को संकुचित कर दिया है, वहां विचारों के सुंदर वितान में एक संकुचन स्पष्ट दिखाई देता है। वैचारिक मतभिन्नता को स्वीकार करने का धैर्य निरंतर क्षीण होता जा रहा है। आज का मनुष्य दूसरों को सुनने से अधिक स्वयं को सुनाने के लिए उद्वेलित रहता है। हम भूल जाते हैं कि मतभेद होना जड़ता का नहीं बल्कि एक जीवंत, प्रबुद्ध और प्रगतिशील समाज का अनिवार्य लक्षण है। जहाँ विचार टकराते हैं वही मंथन होता है और वहीं से सत्य की नई रश्मियाँ प्रस्फुटित होती हैं। यदि संपूर्ण सृष्टि को एक ही रंग में रंग दिया जाए, यदि सबके विचार और दृष्टिकोण एक जैसे ही कर दिए जाएं, तो इस संसार की समस्त बौद्धिक सुंदरता और सृजनात्मकता ही समाप्त हो जाएगी। भारतीय वांग्मय और दार्शनिक चिंतन में सहिष्णुता को कभी भी दुर्बलता, मूक सहमति या विवशता के रूप में परिभाषित नहीं किया गया। यह किसी के सामने झुकना नहीं है, वरन यह तो उस आंतरिक सामर्थ्य का परिचायक है जो व्यक्ति को स्वयं के सत्य पर अडिग रहते हुए भी दूसरों के सत्य का आदर करने की पात्रता और विनम्रता प्रदान करता है। हमारे मनीषियों ने सदा इस बात पर बल दिया है कि सत्य कोई एक आयामी वस्तु नहीं है, उसके कई पहलू होते हैं। महाकवि जयशंकर प्रसाद ने अपनी अमर कृति कामायनी में समन्वय के इसी महान सिद्धांत को रेखांकित किया था। जब तक मनुष्य दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की निश्चल चेष्टा नहीं करता, तब तक उसका स्वयं का ज्ञान भी एकांगी और अधूरा ही रहता है। एक मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक सत्य ये भी है कि असहिष्णुता का पहला और सबसे तीव्र आघात स्वयं व्यक्ति के अंतःकरण पर होता है। क्रोध, हठधर्मिता, ईर्ष्या और पूर्वाग्रह सबसे पहले उस पात्र को ही जलाते हैं जिसमें वे उत्पन्न होते हैं। जो मन दूसरों के विचारों के प्रति अनुदार होता है वह कभी भी शांत और स्थिर नहीं रह सकता। इसके विपरीत सहिष्णुता मन को वह आत्मिक विश्राम और शीतलता प्रदान करती है जहाँ पहुंचकर जीवन के बड़े से बड़े झंझावात और वैचारिक मतभेद भी स्वतः शांत हो जाते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटें तो संसार के महानतम पुरुषों और संतों का जीवन दर्शन भी यही प्रमाणित करता है कि उनकी अमरता उनकी विजयों और भौतिक उपलब्धियों में नहीं बल्कि समाज के हर विरोधाभास, हर कटुता और हर विपरीत विचारधारा को अपने भीतर समाहित कर लेने की अगाध क्षमता में थी। आज के इस कोलाहल पूर्ण युग में जहाँ सूचनाओं की बाढ़ है और हर ध्वनि स्वयं को सर्वश्रेष्ठ और अकाट्य सिद्ध करने के प्रयास में मुखर है, वहीं ठहरकर दूसरों को सुनना, उनके दृष्टिकोण को आदर देना एक परम साधना बन जाता है।
0: ये था आज का चिंतन। आइए अब सुने खेती की बातें। विषय है प्राकृतिक खेती और जैविक आदान। वाचन स्वर अनुराधा शर्मा के।
2: सगड़ा किसान भाई बहनों के डॉक्टर अनुराधा शर्मा की राम राम। भाई बहनों, आज अपन बात करा प्राकृतिक खेती ने जैविक आदान होने का बारा में। आज को हमारा विषय ऐसो है जो खेती की लागत कम करने का बारा में तो बात करे जे, पन मिट्टी पर्यावरण ने आने वाली पीढ़ी हो उनके स्वास्थ्य से भी जुड़ी है। यो विषय है प्राकृतिक खेती और जैविक आदान। देश में पिछला कुछ साल होन से कृत्रिम रासायनिक उर्वरक होन और जहरीला कीटनाशकों को प्रयोग

0: जीवाणु कल्चर, जैविक अवशिष्ट, ये सब ऐसा संसाधन है जो पौधा उनके पोषण भी दे और अतिरिक्त लागत भी नहीं लगे। और जब किसान भाई बहनों इनका उपयोग करे तो उनके बाहर से जो रासायनिक आदान देनु पड़ी रही है उसका ऊपर उनकी निर्भरता कम हो जाए और खेती की लागत घटी जाए। अब हमारा किसान भाई बहनों कभी कभी ये भी सोचे कि जैविक आदान का ही हो। भाई जैविक आदान को ये मतलब है कि जो प्राकृतिक रूप से अपना खेत उनके आसपास अपने मिली जाए और हमारा खेत की मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में, पौधा उनके पोषण देने में, कीट और रोग का नियंत्रण में सहायक भी होए। इनमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, पंचगव्य और नीम आधारित सारा उत्पाद और जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक भी इन श्रेणी में आए। वो प्राकृतिक खेती को सिद्धांत यो है कि भाई जितना भी सूक्ष्म जीव हमारी मिट्टी में है उनकी संख्या बढ़े, ये सूक्ष्म जीव पौधा उनके पोषक तत्व उपलब्ध कराई दे और मिट्टी की संरचना के भी सुधारी दे। और देखो हमारा किसान भाई बहन उनके ये तो बात मालूम है कि प्राकृतिक खेती को सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यो है कि मिट्टी को स्वास्थ्य बनाई के रखनू, क्योंकि मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो फसल भी स्वस्थ रहेगी। ये जैविक पदार्थ उनके प्रयोग से मिट्टी की जलधारण क्षमता बढ़ी जाएगी, सूखा की स्थिति में भी मिट्टी में अधिक समय तक नमी बनी रहेगी और अधिक वर्षा होने पर मिट्टी की संरचना उके बिगड़ने नहीं देगी। इना समय हम देख ही रहे हैं कि मौसम को बिल्कुल ठिकानो नहीं रह गई है, कभी खूब पानी पड़े, कभी खूब गर्मी होए, कभी खूब ठंड लगे और कभी कभी वर्षा का बीच में लंबो सूखो पड़ी जाए, ऐसा भी देखने में आए। ऐसा में ये प्राकृतिक खेती मिट्टी के ऐसी बनाई दे कि मिट्टी प्रतिकूल परिस्थिति में होने में भी आसानी से फसल उगाई सके। और देखो एक बात और कि प्राकृतिक खेती में जी आदान लगी रहा है वे तो किसान भाई बहनों अपना घर पे भी बनाई ले, पर यदि रासायनिक खेती या कृत्रिम रासायनिक उर्वरक होन को उपयोग कर रहा है या जहरीला कीटनाशक नाखी रहा है तो वह तो उनको बाजार से खरीदने जानू पड़ेगो। तो कोई भी आदान आप घर में बनाओगा तो आपके सस्तो पड़ेगो, उत्पादन लागत में कमी आई जाएगी। पर एक सबसे बड़ी समझने की बात जी है कि प्राकृतिक खेती कोई जादुई उपाय नहीं है कि आज चालू करी ने कल को असर अपना खेत पे दिखने लगी जाएगो, ऐसा हमारे किसान भाई बहनों उनके बिल्कुल भी नहीं सोचना है। देखो जब हमारा किसान भाई बहनों ने खेत में कृत्रिम रसायन उनको उपयोग शुरू करियो थो तो भी तो उनका समय लगे था नहीं, तो प्राकृतिक खेती पे अपनाने पे भी शुरुआती वर्षों में उत्पादन में उतार चढ़ाव आई सके है। पर इका कारण हमारा किसान भाई बहनों उनके अपनों धैर्य रखनू है, वैज्ञानिक मार्गदर्शन लेता रहनू है और चरणबद्ध तरीका से प्राकृतिक खेती के अपनानू है तो इको असर आने वाला साल उनमें आने वाली पीढ़ी उनके जरूर दिखेगो। आज हमारो किसान भाई बहनों से योज केनू है।
1: खेती की बातें में डॉक्टर अनुराधा शर्मा हमें जानकारी दे रही थी प्राकृतिक खेती और जैविक आदान के बारे में। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुने श्री रामचरित मानस गान में आज का प्रसंग।

मारीच तथा सुबाहु सहित अन्य राक्षसों के उपद्रव से मुक्ति पाने के उद्देश्य से विश्वामित्र ने राजा दशरथ के सम्मुख उपस्थित हो राक्षसों के संहार के लिए छोटे भाई लक्ष्मण के साथ श्री रघुनाथ जी की याचना की। बोले, इनके द्वारा राक्षसों के वध होने पर वह निरापद हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर महाराज दशरथ के मुखमंडल की कांति फीकी पड़ गई। वह मुनि के चरणों में धरती, गोधन, राजकोष, अपना सब कुछ अर्पित करने को प्रस्तुत थे, किंतु प्राणों से भी अधिक प्रिय राम को मुनि को देते किसी प्रकार नहीं बनता। ये सुकुमार किशोर भला किस प्रकार राक्षसों का सामना कर सकेंगे।

तब गुरु वशिष्ठ ने अपने वचनों द्वारा राजा दशरथ का संदेह और अज्ञान दूर किया। राजा ने अपने दो पुत्र मुनि विश्वामित्र को सौंप दिए। पुरुष रूप में दो सिंह श्रीराम और लक्ष्मण मुनिजन के कष्ट हरने चले। श्याम और गौरवर्ण के दो परम सुंदर किशोरों के रूप में मुनिवर को जैसे दुर्लभ निधि प्राप्त हो गई हो। राह में ताड़का वध करते हुए दोनों भाई मुनि के आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने ऐसी विद्या प्राप्त की जिससे भूख प्यास न लगे तथा शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान में आज का प्रसंग। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज सवेरे 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम साहित्य की। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन सकते हैं कविता वर्मा की कहानी उजास और यशवंत सिंह राठौर का कविता पाठ। सवेरे 7:35 पर सुनना ना भूलें सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल। वतन का राग, ये प्रायोजित कार्यक्रम हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। समय रहेगा सवेरे 8:30। दयाराम सरोलिया और साथियों के गाए मालवी लोकगीत सुनिएगा लोक संगीत में सुबह 9 बजे और शाम 6:45 पर।

सवेरे 9:15 पर और शाम 6:30 पर होगा सुगम संगीत। कलाकार होंगी गुरुशा दुबे। आज सवेरे 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिएगा वैशाली फड़के का शास्त्रीय गायन, राग होगा अहीर भैरव। दस बजे भोपाल केंद्र से प्रसारित होगी जिले की चिट्ठी और 10:05 से हमारे श्रोताओं के पसंदीदा गीत सुनवाए जाएंगे उनके मनपसंद कार्यक्रम मन भावन में। दिन में 1 बजे होगा महिला कार्यक्रम जिसमें

रिश्तों में संवाद के महत्व के साथ ही आपको प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना की जानकारी दी जाएगी। डॉक्टर नीरजा पुराणिक हमें शिशु के संपूर्ण स्वास्थ्य में स्तनपान कितना महत्वपूर्ण है इस बारे में बताएंगी। आपका नाइट स्किन केयर कैसा होना चाहिए ये जानिएगा रूपलावण्य में। महिलाओं में बढ़ता ऑस्टियोपोरोसिस उसके कारण और निवारण के बारे में जानिएगा फैमिली फिटनेस सेगमेंट में। इसके साथ ही ऑफ सीजन सेल में शॉपिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए ये भी आप इस कार्यक्रम में जानेंगे। हमारे भोपाल केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में सुबह 11:58, 12:58 और 2:58 पर सुनिएगा इस घंटे की खास खबरें। दिन में 12 बजे का समय रहेगा फिल्म संगीत का। 12:30 पर सुनिएगा संग्रहालय से। दिन में 1:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत। 1:45 पर सुगम संगीत और चित्रपट संगीत 2:30 पर। हमारी शाम की सभा में 5 बजे युवा साथियों के लिए युववाणी का प्रसारण किया जाएगा जिसका आकर्षण रहेगा गीतों भरी कहानी। फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 5:45 पर और रात 8:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुनिएगा शाम 6 बजे। शाम 7:30 पर सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। संसद समीक्षा हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से रात्रि 8 बजे। भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होगी न्यूज रील सुर्खियों में 8:15 पर। रोजाना की तरह चित्रगीत आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर और 9:30 पर होगा कार्यक्रम मन भवन। संसद में प्रश्नकाल हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से रात्रि 10 बजे और शास्त्रीय संगीत में आप सुनेंगे वैशाली फड़के का शास्त्रीय गायन, राग होगा श्याम कल्याण। श्रोताओं, ये थी जानकारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एतत् विधेयकं प्रास्तौत। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रतिपादितवान् यत् भारते कथा कथनस्य समृद्धा परम्परा तथा सृजनात्मक प्रतिभायाः विपुलः निधिः वर्तते, यस्य उपयोगेन भारतं वैश्विक सामग्री निर्माणस्य प्रमुख केन्द्र रूपेण विकसितुं शक्यते। असौ सामाजिक संचार पटले संसूचितवान् यत् नवदिल्ल्यां नेटफ्लिक्स इत्यस्य सह मुख्य कार्यकार्यधिकारिणा टेड सैरंडोज इत्यनेन सह असौ मेलनं कृतवान्। प्रधानमंत्री अवदत् यत् तयोः मध्ये भारतस्य मनोरंजन क्षेत्रस्य विशाल संभावना विषये अपि विस्तृतः विचार विमर्शः अभवत्। विश्वस्य प्रमुख सामाजिक माध्यम मञ्चानां मूल संस्थायाः मेटा इत्यस्य मुख्य कार्यकार्यधिकारिणा मार्क ज़ुकरबर्ग इत्यनेन बाल यौन शोषण सामग्री तदनुषंगिक सामग्री कृत्रिमतया निर्मित सामग्री चेत्येषु अथ मंच संचालने च जात दोषान् अधिकृत्य भारत प्रशासनात् क्षमा याचिता। सूत्राणामनुसारं मेटा संस्थया स्वीकृतं यत् केषाञ्चन प्रकाराणां सामग्रीणां प्रचाराय बहुधनराशि व्ययिता आसीत्। भारत प्रशासनेन मेटा संस्थायै एतत् स्पष्टीकृतं यत् सा मध्यस्थ परिभाषायाः अन्तर्गतं न आयाति, यतः सा संस्था एव निर्धारयति यत् का सामग्री कस्मै प्रेषणीया इति। मेटा संस्थया स्वदोषः स्वीकृतः तथा तस्मिन् विषये दुःखं च व्यक्तम्। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अवदत् यत् भारतं अफ्रीका देशहि सह समावेशिनं आवश्यकताधारितं च विकास सहयोगं समर्थयति, यत् स्थानीय सामर्थ्यं सुदृढीकृत्य राष्ट्रीय प्राथमिकतानां पूर्तौ सहायकं भवति। ह्यः नवदिल्ल्यां अफ्रीका दिवसावसरे अवदत् यत् अफ्रीका देशानां प्रमुख व्यापार निवेश सहभागिषु भारतमपि अन्यतममस्ति इति गौरवस्य विषयो वर्तते। गतवर्षे उभयोरपि मध्ये 93 अर्बुद डॉलर मितः द्विपक्षीय व्यापारः जातः। सः एतदपि अवदत् यत् अफ्रीका देशेषु भारतस्य निवेशः आहत्य 80 अर्बुद डॉलर मिताधिकः जातः, येन भारतं तत्रत्य प्रमुख निवेशक देशेषु अन्यतमं जातम्। हॉकी क्रीडायां षोडश भारत कनिष्ठ पुरुष राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धायाः डिवीजन ए इत्यस्य उपांत्य चरणे उड़ीसा पंजाब झारखंड मध्य प्रदेश राज्यानां दलानि प्रवेशं कृतानि। तमिलनाडु राज्यस्य कोयम्बतूर नगरे ह्यः सम्पन्नेषु प्रागुपांत्य चक्रे पंजाब दलेन कर्नाटक दलं 5-2, उड़ीसा दलेन हरियाणा दलं 5-1, झारखंड दलेन समतायाः अनन्तरं शूटआउट पद्धत्या उत्तर प्रदेश दलं अथ मध्य प्रदेश दलेन दादर नागर हवेली दमन दीव दलं च 7-3 इत्यंकांतरालेन पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सैरंडोज के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकते हैं। श्री मोदी ने श्री टेड के साथ मीडिया और मनोरंजन केंद्र पर चर्चा की। नेटफ्लिक्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा की गई। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की भी घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।
2: इंडिया इज प्राउड टू बी वन ऑफ अफ्रीका।
3: भारत अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापार और निवेश साझेदार होने पर गर्व महसूस करता है। पिछले साल हमारा द्विपक्षीय व्यापार 93 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। ये निवेश दूर संचार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचे, कृषि और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।

0: infrastructure and digital services.
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध 10 सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में युगांडा की संसद में की थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिल्क्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिल्क्यारा सुरंग का ढहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखी और फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए सभी संभव संसाधनों को जुटाना सुनिश्चित किया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें भारत के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए की जा रही पहलों की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पर श्री जोशी ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता और सुलभता को बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। इस अवसर पर आयोग के उपाध्यक्ष डॉ अशोक कुमार लाहड़ी ने कहा कि ध्यान चिकित्सा उपचार पर नहीं बल्कि देखभाल पर केंद्रित है और देखभाल उपचार से कहीं अधिक व्यापक है। रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। इस मंजूरी के साथ ही अलग अलग मार्गों के लिए अलग अलग पंजीकरण कराने की व्यवस्था बंद हो गई है। नई व्यवस्था के तहत ऑपरेटरों को 20 वर्ष तक के लिए अनुमति दी जा सकेगी। मंत्रालय के अनुसार कंटेनरों की रेल ढुलाई से सड़क यातायात की भीड़ कम होगी, ईंधन की खपत में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। महाराष्ट्र में डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है। डॉक्टर सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं, जिसके तहत होम्योपैथ को महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद ने पंजीकरण कराने और 6 महीने का प्रमाण पत्र लेने के बाद एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति दी गई है। महाराष्ट्र में डॉक्टर एसोसिएशन ने आगाह किया है कि अगर सरकार बातचीत शुरू नहीं करती तो 24 घंटे बाद आपातकालीन सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। हालांकि बेहद गंभीर मामलों में इलाज जारी रहेगा। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसी सप्ताह यह समझौता हो सकता है। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुल जाएगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा और युद्ध को समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि समझौता इस बात पर निर्भर करेगा कि अमरीका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाता है या नहीं। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
3: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: श्रोताओं, आज यानी दिनांक 6 अगस्त 2026 को सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है स्तनपान, भ्रांतियां और तथ्य। आप इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर नीरजा पौराणिक से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। आज यानी गुरुवार को सुबह 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। फोन नंबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं 27

10223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। तो फोन करना ना भूलें सुबह 10:32 से 11:02 तक। ये कार्यक्रम आप विविध भारती इंदौर से FM 101.6 MHz पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर सुन सकते हैं।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत वैश्विक स्तर पर कंटेंट निर्माण का केंद्र बनने में सक्षम। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने नशे के दुष्प्रभावों पर जताई चिंता, परिवार और समाज को नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया। भोपाल में ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक में सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई और राज्य में आगामी 24 घंटे में व्यापक वर्षा का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा और रचनात्मक प्रतिभाओं की बड़ी क्षमता मौजूद है। इसका उपयोग भारत को वैश्विक स्तर पर कंटेंट निर्माण का केंद्र बनाने में किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने आज नई दिल्ली में नेटफ्लिक्स के सह मुख्य कार्यकारी

0: अधिकारी टेड सारंडोस से मुलाकात की। इस दौरान भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र की संभावनाओं पर चर्चा हुई। नेटफ्लिक्स इंडिया ने बताया कि बैठक में भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को वैश्विक मंच पर ले जाने की साझा सोच पर बातचीत हुई। कंपनी ने रचनात्मक प्रतिभाओं को अवसर देने के लिए नई पहल शुरू करने की घोषणा भी की। इसके तहत भारतीय प्रतिभाओं को कौशल विकास और शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के साथ मिलकर काम किया जाएगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने नशे के दुष्प्रभावों पर चिंता व्यक्त करते हुए परिवार और समाज को नशा मुक्त बनाने में सहयोग की अपील की है। उन्होंने कल भोपाल में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए नशा मुक्त भारत अभियान के संदर्भ में ये अपील की। राज्यपाल श्री पटेल कल सिविल सेवा चयनित प्रतिभागियों के अभिनंदन एवं मार्गदर्शक सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता के लिए आत्मचिंतन जरूरी है। सतना में नशा मुक्ति के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से वॉलीबॉल और फुटबॉल के मैत्री मैचों का आयोजन भी कल किया गया, जिसमें जिले के युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। खेलों के माध्यम से युवाओं को सकारात्मक दिशा देने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। समापन अवसर पर खिलाड़ियों को नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई गई। किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग ने प्रदेश के किसानों के हित में महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीद की अंतिम तिथि की तारीख बढ़ाकर किसानों को बड़ी राहत दी है। उपार्जन प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत मूंग उत्पादक किसानों के हित में मूंग उपार्जन के लिए स्लॉट बुक करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त और मूंग एवं उड़द उपार्जन की अंतिम तिथि 20 अगस्त कर दी है। इसके तहत किसानों को आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और रजिस्टर में अपना पूरा ब्यौरा दर्ज करना होगा। उल्लेखनीय है कि खाद वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए हाइब्रिड मोड लागू किया गया है। किसानों के हित में उपार्जन नीति में आंशिक संशोधन करते हुए मूंग का उपार्जन कृषकों के उत्पादन का 60% किए जाने का प्रावधान भी किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है, जो विद्यार्थियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल के टीटी नगर स्थित कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय में किताब से कल तक अभियान के तहत विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि युवाओं के चेहरों पर भारत का उज्ज्वल भविष्य दिखाई देता है। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को ज्ञान, अनुशासन और निरंतर प्रयास के माध्यम से सफलता की ओर बढ़ने का प्रेरक संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी जिज्ञासाओं का उत्तर दिया और उन्हें नवाचार, तकनीकी और सतत रूप से सीखने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि
1: स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सांदीपनी विद्यालय जो बना करके विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए उपलब्ध हुए हैं, स्वावलंबन तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाने का, सर्वांगीण विकास करने की जो कल्पना है वो हमारे सांदीपनी विद्यालयों के माध्यम से वाकई अद्भुत है। ऐसे में सांदीपनी विद्यालय की सौगात देश में अनूठी और सर्वश्रेष्ठ है। हमारे यहाँ आज ड्रॉप आउट भी जीरो हुआ है और जितनी मेरिट के विद्यार्थी, चाहे टेंथ हो या ट्वेल्थ हो, सारी मेरिट में अधिकांश सरकारी स्कूल के बच्चे निकल करके आ रहे हैं। ये सरकारी स्कूलों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था का प्रमाण है।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। भोपाल में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक के पहले दिन ब्रिक्स देशों के बीच आपसी सम्मान, आम सहमति और साझा उद्देश्यों के माध्यम से सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य चर्चा हुई। सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ बनाने और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान भारत द्वारा कल्चर ट्रैक के अंतर्गत निर्धारित प्रमुख प्राथमिकताओं, रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक एवं रचनात्मक उद्योग, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण तथा संस्कृति आधारित सतत विकास पर प्रतिनिधिमंडलों ने अपने प्रारंभिक विचार प्रस्तुत किए। उद्घाटन सत्र में संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने कहा कि चर्चाओं ने इस साझा विश्वास को पुष्ट किया है कि संस्कृति केवल अतीत की धरोहर नहीं बल्कि नवाचार, लचीलेपन, समावेशी विकास तथा लोगों के बीच गहरे संबंध स्थापित करने की एक सशक्त प्रेरक शक्ति है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान जन भागीदारी के साथ चलाने की घोषणा की है। इस अभियान के तहत तिरंगा यात्रा, प्रदर्शनी, रंगोली, प्रश्नोत्तरी, साइकिल रैली, तिरंगा एंथम और अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। प्रदेशवासियों से तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करने और सोशल मीडिया के माध्यम से इस अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 7 अगस्त से शुरू होने वाले जन विश्वास अभियान 2026 की

जानकारी भी दी। शिक्षा में एआई के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंदौर जिले में विद्या शक्ति अभियान के अंतर्गत एक अभिनव पायलट परियोजना प्रारंभ की गई है, जिसके प्रथम चरण में कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों को एआई आधारित शिक्षण पद्धति का प्रशिक्षण दिया गया। एआई आधारित ऐप की सहायता से शिक्षक अपने लेक्चर प्लान, क्लास वर्क, होमवर्क तैयार करने, विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण करने तथा मूल्यांकन को अधिक व्यवस्थित बनाने जैसे कार्य आसानी से कर सकेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को अब भारतीय रिजर्व बैंक की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के माध्यम से राशन उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू की गई है। नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि भारत सरकार ने इस महत्वाकांक्षी पायलट प्रोजेक्ट के लिए प्रदेश के भोपाल और इंदौर जिले का चयन किया है। दिसंबर 2026 तक सभी उचित मूल्य दुकानों पर यह व्यवस्था लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के लागू होने के बाद पात्र हितग्राहियों को हर महीने उनकी खाद्यान्न पात्रता के अनुरूप सीबीडीसी टोकन सीधे उनके डिजिटल वॉलेट में भेजे जाएंगे। राशन लेने के लिए हितग्राही को केवल अपने मोबाइल ऐप से उचित मूल्य दुकान पर उपलब्ध क्यूआर कोड स्कैन करना होगा और टोकन का उपयोग करते ही गेहूं चावल सहित पात्रता अनुसार खाद्यान्न मिल जाएगा। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि वर्ष 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98,000 ऐसे लोगों की पहचान की गई थी जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉक्टर वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रुपए की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार नमस्ते स्कीम के तहत ऐसे लोगों को टिकाऊ आजीविका के अवसर देना जारी रखे हुए है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान चंबल, रीवा और शहडोल संभागों के अधिकांश जिलों में बारिश दर्ज की गई। वहीं ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई। झाबुआ जिले में पिछले 24 घंटे में 4.05 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई। सर्वाधिक 8.10 मिलीमीटर वर्षा राणापुर में रिकॉर्ड की गई। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार प्रदेश में नया सिस्टम बनने से कल प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश होगी, वहीं कुछ स्थानों पर तेज बारिश की भी संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत आज आगरमालवा जिले के बड़ौद में स्थानीय कार्यक्रम के बाद नागदा उज्जैन के प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान 2026 के तहत शिवपुरी में उद्यम संवाद हेतु जिला दल का गठन किया गया है। वहीं जबलपुर के पाटन में भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है। अशोकनगर के डबल लॉक केंद्र पर 1,100 किसानों को यूरिया उर्वरक का वितरण किया गया है। झाबुआ के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कल्याणपुरा में छात्राओं को डेंगू के कारण, लक्षण और बचाव के प्रति जागरूक किया गया। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बोधी परियोजना कार्यालय में विभाग में 81 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। संभागीय आईटीआई रीवा में 19 अगस्त को वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। वहीं शासकीय चंद्रविजय महाविद्यालय डिंडौरी में युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन 13 अगस्त को किया जाएगा। और मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज 2026 का जिला स्तरीय आयोजन कल धार जिले में किया जाएगा, जिसमें पूर्व में पंजीयन करा चुकी पंजीकृत टीमें भी भाग लेंगी और 8 से 10 बजे तक ऑन स्पॉट पंजीयन भी किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुने कार्यक्रम साहित्यिकी।
2: प्रस्तुत है साहित्यिकी। कार्यक्रम के आज के इस अंक में कहानी और कविता पाठ आयोजित हैं। जब हम कहते हैं कि समय, पल, लम्हे, क्षण और वक्त, इन सब से जुड़ी है इंसानी जिंदगी। जीवन के कई रंग हैं। अगर इसे इस तरह कहें कि समय का पंछी उड़ता जाए, एक उजला, एक काला पर फैलाए। इसी आशय को लिए प्रस्तुत है कहानी उजास, और ये कहानी आप तक पहुंचा रही है कविता वर्मा।

चारपाई के चरमराने की आवाज से रामदेव ने करवट बदल कर देखा और झोपड़ी के गुप्त अंधेरे में अपनी आंखें चारपाई पर सोए या जागे अपने पति बद्री पर गड़ा दी। बद्री ने भी मानो रामदेव के करवट बदलने से धरती के चरमराने की आवाज सुनी हो उस तरफ देखा और दम साध कर जिस अवस्था में था उसी अवस्था में थम गया। अब अंधेरे में दो जोड़ी आंखें एक दूसरे के जगने सोने की थाह लेती अपलक ठहरी हुई थीं। दोनों ही एक दूसरे से खुद के जागते रहने को राज रखना चाहते थे। झोपड़ी वक्त के साथ दम साधे दोनों को देख रही थी कि देखें कौन पहले इस कोशिश में हारता है। कुछ देर बाद खुद के सोए होने की नौटंकी से झुंझलाकर रामदेव ने पूछा, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है? तू भी तो जाग रही है और जता ऐसे रही है जैसे गहरी नींद में हो। दोनों ही जानते हैं कि नींद नहीं आ रही, लेकिन किसे दोष दें, अपनी किस्मत को या? कहते कहते रामदेव का गला रुंध गया। ला पानी पिला दे, किसी तरह रुंधे गले से आवाज निकालते बद्री ने कहा। रामदेव उठ बैठी और चारपाई के पाए के पास रखे लोटे से कटोरी हटाकर बद्री को पकड़ाया। अंधेरे में गट गट गट पानी पीने की आवाज आती रही। लोटा लेकर बचा पानी अपने मुंह में डालकर रामदेव ने गले को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जानती थी कि वहां बहुत सारे प्रश्न अटके पड़े हैं। चारपाई फिर चरमराई। दो पल की चुप्पी बहुत लंबी हो गई और झोपड़ी इंतजार करने लगी अब कौन पहले बोले। एक बार फिर रामदेव ने पूछा, क्या सोचा है किशोर के बाबू, क्या करोगे? तू बता क्या कहती है, तेरा मन क्या कहता है? मैं क्या कहूं, बेटे की मर्जी, उसकी तकलीफ हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? और हमारी तकलीफ वह कौन देखेगा? बद्री ने कुछ तुनक कर कहा। हमें क्या तकलीफ है, फिर बेटे ने कहा तो है कि वह हर महीने पैसे भेजेगा, और अगर ना भेजे तो बुढ़ापे में कटोरा लेकर घूमेंगे, अभी उम्र में तो मेहनत मजदूरी होने से रही। झोपड़ी के अंधेरे में भयावह भविष्य की कालिमा भी घुल गई, जिसमें शब्द खो गए और सन्नाटा पसर गया। कुछ देर बाद रामदेव ने फिर साहस बटोरा। इस बार उसने बड़ी मेहनत से चुन चुन कर शब्दों को बटोरा। भेजेगा क्यों नहीं, बेटा है आखिर। वह आगे भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्दों के खोखलेपन से घबरा कर चुप हो गई। उसने पीठ सीधी कर ली। तूने भी दुनिया देखी है, फिर भी ऐसी बात करती है? अगर उसे हमारी चिंता होती तो हमें अपने पास बुलाता या सिर्फ जमीन बेचकर पैसा मंगवाता? न चाहते हुए भी बद्री का स्वर कसैला हो गया, आवाज हांफ गई जैसे बहुत जोर लगाकर निकली हो। कह देने के बाद जैसे उसे राहत मिली। उसने अंधेरे में आंखें मिचमिचाकर मानो उसे धन्यवाद दिया। दिन के उजाले में इस बारे में कई बार बात हुई, लेकिन इन शब्दों में इतना नंगापन था कि वे गले से बाहर ही नहीं आ पाए। जमीन नहीं बेचोगे तो पैसे कैसे भेजोगे? रामदेव के स्वर में बेटे की चिंता थी। मेरे पास क्या पैसों का पेड़ है जो तोड़कर भेज दूं? क्या उसे हमारी हालत नहीं पता? माना 8-10 साल से शहर में है, लेकिन क्या उसे पता नहीं है कि यहाँ हर महीने कमाई नहीं होती? 4-5 महीनों में एक बार फसल पर पैसे मिलते हैं और उसमें अगला पिछला खर्च होता है। पता क्यों नहीं है, सब पता है, या कहो अब भूल गया हो। लेकिन उसकी बात नहीं मानी तो कहीं वह नाराज ना हो जाए। बेटे के रूठने का डर रामदेव के स्वर में आ गया। फिर अब तुमसे भी तो इतनी मेहनत नहीं होती, जमीन का करोगे क्या? एक उपाय है तो, लेकिन किशोर को अच्छा नहीं लगेगा। कहते हुए बद्री ने पीठ चारपाई से लगा दी और सोच में पड़ गया। लंबी चुप्पी से घबराकर रामदेव ने कहा, कहो ना। देख रामदेव, जमाना खराब है, शहर जाकर पढ़ने नौकरी करने वाले लड़के गांव की ओर नहीं पलटते, और जमीन बेचकर उन्हें पैसा दे दिया तब तो माँ बाप की ओर देखते भी नहीं। अपने किशोर को ही लो, उसकी शादी को 4 साल हो गए, 2 बार 2-2 दिन के लिए आया, कभी हमें अपने पास नहीं बुलाया, ना कभी पैसा कौड़ी की व्यवस्था पूछी। उसकी पढ़ाई के लिए एक खेत गिरवी रखा था, नौकरी लगने के बाद कभी ढेला नहीं दिया, ना उसे छुड़वाने की बात

0: की। बेटे का मुंह होता है, लेकिन उसमें अपने बुढ़ापे का ख्याल नहीं छोड़ना चाहिए। रामदेई दम साधे इस भूमिका को सुन रही थी। वह अंदाजा नहीं लगा पा रही थी कि बद्री कहना क्या चाहता है। देख, मैं सोच रहा हूं, धनिया और कृष्णा अपने खेत पर बरसों से काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी की अच्छी समझ भी है। उन्हें एक एक खेत बटाई पर दे दूं, जैसे पहले काम करते थे वैसे काम करेंगे और मजदूरी के बजाय फसल का एक हिस्सा लेंगे। जमीन अपनी रही तो पेट जितनी रोटी मिलती रहेगी। उन्होंने बेईमानी कर ली तो? नहीं करेंगे, और बेईमानी करेंगे तो फसल के हिस्से में करेंगे, जमीन तो हमारी रहेगी। वकील बाबू से कागज पर लिखा पढ़ी करवा लेंगे ताकि कोई दगा ना हो। किशोर, उसे बुरा लगेगा, उसने संबंध तोड़ लिए तो? रामदेई की आवाज कांप गई, आंखों की कोरों से बहकर आंसू सूखी धरती में समा गए। किस भुलावे में है रामदेई, बेटे से संबंध तो पहले ही छिड़छिड़ा गए हैं। जमीन का पैसा लेकर वह आखिरी झटका देने की तैयारी में है, लेकिन जमीन बची रही तो एक रेशा बचा रहेगा, शायद उसके सहारे कभी लौट आए। हमें न जाने अभी और कितना जीना है, तब तक हाथ न फैलाना पड़े, इतनी जद्दोजहद तो करनी पड़ेगी। क्या कहती है? ठीक कहते हो किशोर के बाबू, यही ठीक है। बातचीत खत्म होते होते दरवाजे की झीर से सूरज की एक किरण ने झोपड़ी में प्रवेश कर असहायता की घनी कालिमा को अपनी उजास से दूर कर दिया। झोपड़ी मुस्कुरा दी।
1: ये थी कविता वर्मा की कहानी उजास, और अब कार्यक्रम का समापन हो रहा है कविता पाठ से। प्रस्तुत है यशवंत सिंह राठौर का कविता पाठ।
2: मेरे दोस्तों, आंखें चार न हुई तो बात क्या होगी, हो भी गई तो भी नमस्ते ही होगी। लेकिन ये नमस्ते वो फूल है जो महक देता है। अगर तुम प्रेम या प्यार में रहो तो काम भी प्यार है प्रेम है, नाकाम भी प्यार है प्रेम है, और नहीं तो जो करते हो हम माली ही है। क्या तुम इच्छा से जन्मे हो? नहीं, प्रभु की इच्छा से। तो फिर क्यों रोते हो? तूने मेरे शरीर को देखा और इसी में सब कुछ देखा, मगर इसमें और भी था, वो कहां देखा? वो तूने नहीं देखा। मेरी नजर वहीं थी कि शायद तू वहां भी आ जाए। कहां छुपोगे चेहरे से, हाथों की रेखाओं से, अपने कदमों की चापों से, लफ्ज़े बुए रूहानी से? नहीं छुप सकोगे, सब दिखता है। गर्म दूध पर दल मलाई ना आई हो, पढ़ाई लिखाई वाणी में ना समाई हो, वाणी ने भी तजुर्बे की ललक न लाई हो, कवि के चेहरे पर कविता ना आई हो, बेकार है। निगाहों की निगाहों से बात होती है, हाथों की हाथों से बात होती है, होठों की होठों से बात होती है, कंठों की कंठों से बात होती है, और ऐसे भी तो बात होती है, लेकिन वो जरा नीचे की बात होती है। गौर करें तो कंठ से नीचे जहां जमीर होता है, आसपास दिल होता है, ईच अदर झनकृत होता है। जातक के कई रिश्ते होते हैं, सबसे पहले माँ का पिता से रिश्ता, फिर भाई बहन का रिश्ता, परिवार में आपस के लोगों से आपस का रिश्ता, इन रिश्तों में एक और रिश्ता, और आगे का रिश्ता, बिल्कुल नया रिश्ता, दो दिलों के मेल का रिश्ता, दो परिवारों के मेल का रिश्ता, एक कुनबा, जाने पहचाने रिश्तों में ऐसा नया रिश्ता, सोचने पर थोड़ा अजीब सा नहीं लगता? ये अनजाने अनजानी होने को एक जिस्मानी, उफ, कहां हाइड्रोजन कहां ऑक्सीजन, और कैसा साफ तैयार पारदर्शी एंटीबैक्टीरियल पानी। या अल्लाह या मौला, हे परमेश्वर, बस आपकी मेहर नवाजिश में कल कल बहता रहे ये पानी, नए रिश्ते की जवानी, नए कुनबों की रवानी। ये कविताएं तो नहीं कह सकते इन्हें, ये वो शब्द हैं

0: जो जमीर से आते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं मरूं और फिर मेरे गुण गाए जाएं। जब जिंदा था तो पूछा नहीं, और मरा तो हार और पुष्प फूल नहीं। ये सब मैं नहीं चाहता, और मैं झूठ भी नहीं चाहता। मेरा परिचय है, जो है तारीफ करूं तो पहले मैं क्यों नहीं, बुराई करूं तो भी पहले मैं क्यों नहीं। जब तक मेरा जमीर मुझे शाबाशी न दे तो क्या, जब तक मेरा जमीर मुझे धिक्कारे नहीं तो क्या। आप कौन हैं, मेरी मर्जी का मालिक, मैं ही नहीं तो। महात्मा गांधी मारे गए, एक नेता थे, राष्ट्रपिता कहलाते हैं, और इसी राष्ट्र की औलाद के हाथों मारे गए। कहावत है, बेटा शेर बाप सवा शेर, पर खोटे सिक्के क्यों होते हैं। मैं ये हूं, लोग दूसरे मेरे बारे में अच्छा कहें तो मैं अच्छा हूं, लोग दूसरे मेरे बारे में बुरा कहें तो मैं बुरा हूं, ऐसा क्यों। क्या मैं कोई अभिनेता हूं जो लोगों की पसंद का अभिनय करता हूं? जी नहीं, मैं ऐसा अभिनेता नहीं हूं। पहले मेरा जमीर कहता है, फिर मेरा हाथ लिखता है, और यह ठीक है। आप समझें, आपकी मर्जी, आप ना समझें, यह भी आपकी मर्जी। मुझे समझने वाले हैं, पर उसके लिए भी प्रयास तो मुझे करना पड़ेगा, कहना बताना तो पड़ेगा कि मैं ये हूं। अब वो चाहे तो बात करे, चाहे तो बात ना करे। इतने सारे विषय होते हैं बात करने पे, इतने सारे विषय होते हैं बात करने के, पर जब पास कुछ नहीं होता तो आदमी पूछता है वो सवाल जो उसको स्वयं से पूछना चाहिए, और वगैरह वगैरह। अरे जागो मानव, जागो। तस्वीर बनकर मत जियो, तस्वीर बनकर मत मरो, होशदार होकर जियो, होशदार होकर मर भी जाओ, ताकि पीछे का गम साथ नहीं ले जाना पड़े। जमीन के गम जमीन पे, फर्श की चीज फर्श पे। याद रखो, मर जाने पर खुली आंखों को भी बंद कर दिया जाता है, इसलिए कि अब यहां का सब खेल खत्म हुआ, देखने को बाकी कुछ नहीं। अब जाओ और बिना किसी दृश्य के सोचे विश्राम करो। आदमी एक जैसे हैं, एक ही जैसे दिखते हैं, पर आदमी ने आदमी को आदमी के रूप में अस्वीकार कर दिया है। वो आदमी को मानना ही नहीं चाहता, उसको भगवान चाहिए, उसको भगवान चमत्कार वाला चाहिए। चमत्कार को नमस्कार, सीधा साधा सब बेकार। ज्ञान वह है जो आपकी आंखें खोलकर आपको सीधा रास्ता दिखाए। ज्ञान वह नहीं जो तंत्र मंत्र यंत्र से आपको भटकाए। हर तरफ देख लीजिए, वही चेहरे हैं, वही हाथ पांव हैं। यथार्थ है, केवल स्वीकारना है। सीधी सी समझ को समझा जाता है, समझना चाहिए। प्रश्न पूछ रहे हैं तो उत्तर को सुनिए, अपने ही गणित को मत डालिए। कोरे कागज पर केवल प्रश्न डालिए और उत्तर को आने दीजिए शेष स्थान पर। अगर कागज को भरा हुआ रखेंगे तो उत्तर नहीं जगह पाएगा, आप नहीं जान पाएंगे ईश्वर है। ईश्वर के दिए उपहार भी विभिन्न प्रकार के उपलब्ध हैं। बस सीधे साधे होकर हाथ खोल लीजिए, मस्तिष्क में उस असीम का प्रकाश आ सकता है। केवल प्रश्न हो, कोरे कागज पर आपके द्वारा भर दिया हुआ उत्तर नहीं। फकीर कपड़ों से नहीं पहचाने जाते और विद्वान किताबों से। प्रेम गली अति साकरी, जिसमें दो न समाए, एक अकेला ही चले, चलत चलत दुलराए। को न जाने मार्ग को, मार्ग मिले भटकाए, ऐसी ही है प्रेम गली, बिना खोज का मार्ग, आदि है न अंत है, हे मानव सुंदर मार्ग। हां मैं जवाहिरात बेचता हूं, मगर मैं जवाहिरात सोचता हूं, जवाहिरात लिखता हूं, जवाहिरात गाता हूं, सिर्फ जवाहिरात बेचता ही नहीं हूं।
1: यशवंत सिंह राठौर के कविता पाठ के साथ ही आज का साहित्यिकी का ये अंक यहीं संपन्न होता है।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साहित्यिकी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल।

मन भी खिल उठता है। यही मौसम है इस सावन का, हरियाली का, प्रेम का, उल्लास का और लोक परंपराओं का। भारतीय संस्कृति में सावन का महीना अनेक रंगों को अपने साथ लेकर आता है। पेड़ों पर झूलों की पींगे, हथेलियों पर रची मेहंदी, कलाई में छनकती हरी चूड़ियां, तीज के गीत, कजरियां और पिया मिलन की आस, ये सब मिलकर सावन को उत्सव बना देते हैं। इस मौसम में सुहागिनों की कलाइयों में हरी चूड़ियां सजती हैं। भारतीय मान्यता में हरी चूड़ियां सुख, सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक मानी जाती हैं। उनकी मधुर खनक मानो दिल की धड़कनों का संगीत बन जाती हैं।

आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरे पल और आज आपके साथ हूं मैं रूपाली। श्रोताओं, सावन का महीना केवल बरसात का मौसम नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की सबसे रंगीन और भावनाओं से भरी हुई ऋतु है। धरती हरी चुनरिया ओढ़ लेती है, पेड़ों की डालियों पर झूले सज जाते हैं, हथेलियों पर मेहंदी खिल उठती है और कलाई में छनकती हरी चूड़ियां मन की उमंग को सुर दे देती हैं। कहते हैं सावन में हरी चूड़ियां पहनना सौभाग्य, प्रेम और नई उम्मीदों का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि हिंदी सिनेमा ने भी इन चूड़ियों की खनक को प्रेम और उत्सव के संगीत में बड़ी खूबसूरती के साथ पिरोया है।

सावन आते ही गांव-गांव में झूले पड़ जाते हैं। आम और नीम की डालियों पर झूलती युवतियां, कजरी की धुनें और बारिश की फुहारें, ये दृश्य भारतीय लोक संस्कृति की सबसे सुंदर पहचान है।

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: किसे?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
1: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दोस्तों जब बादल बरसते हैं तो दिल भी भीग उठता है, कभी किसी की याद, कभी किसी का इंतजार और कभी मिलन की चाह। सावन इन सभी भावों को और भी गहरा कर देता है।

सावन केवल प्रेम का नहीं, विरह का भी मौसम है। बरसती बूंदें कई बार अपनों की यादें भी ताजा कर देती हैं। हिंदी सिनेमा ने इस भावना को भी

हरी भरी वादियाँ, झूलों की मस्ती, चूड़ियों की खनक, मेहंदी की महक और रिमझिम फुहार, यही है सावन की आत्मा। ये ऋतु हमें प्रकृति के साथ साथ रिश्तों को भी हरा भरा रखने का संदेश देती है। इसी सुंदर संदेश के साथ अब दीजिए इजाजत रूपाली को। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार प्रभात। इसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है जिसका उपयोग देश को वैश्विक स्तर पर सामग्री सृजन के केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सेरेंडोस के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं।
6: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते।
5: नेटफ्लिक्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा हुई। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की भी घोषणा की है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव डॉ टीवी सोमनाथन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने कल इसकी मंजूरी दी। डॉ सोमनाथन का कार्यकाल इस महीने की 30 तारीख को समाप्त हो रहा था। समिति ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल भी एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।
7: इंडिया इज प्राउड टू बी वन ऑफ अफ्रीका।
8: भारत अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापार और निवेश साझेदार होने पर गर्व महसूस करता है। पिछले साल हमारा द्विपक्षीय व्यापार 93 अरब अमरीकी डॉलर रहा। भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। ये निवेश दूरसंचार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचे, कृषि और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।
5: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध 10 सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में युगांडा की संसद में की थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का रहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। संसद में आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर चर्चा निर्धारित है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। ये विनियोजन उस वर्ष सेवाओं के लिए निर्धारित से अधिक राशि के भुगतान के लिए किया जा रहा है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई थी जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉ. वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रूपये की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। राज्य में विधानसभा का वर्षाकालीन सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। पिछले चार दिनों से भूख हड़ताल कर रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा नेता देवेंद्रनाथ महतो के साथ 5 प्रदर्शनकारी शामिल हो गए हैं। इनमें 2 महिलाएं भी हैं। ब्लड शुगर और रक्तचाप कम हो जाने के कारण श्री महतो के स्वास्थ्य को लेकर चिंता पैदा हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल कहा है कि उनकी सरकार विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए संकल्पित है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर राजधानी रांची में 25 जुलाई से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारी विद्यार्थी 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटेजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत एट 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देशभर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा।

0: इस मंजूरी के साथ ही अलग अलग मार्गों के लिए अलग अलग पंजीकरण कराने की व्यवस्था बंद हो गई है। नई व्यवस्था के तहत ऑपरेटरों को 20 वर्ष तक के लिए अनुमति दी जा सकेगी। मंत्रालय के अनुसार कंटेनरों की रेल ढुलाई से सड़क यातायात की भीड़ कम होगी, ईंधन की खपत में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में गंभीर सुरक्षा स्थिति के बावजूद हुर्मुज जलडमरू मध्य से होकर 60 व्यापारिक जहाज सुरक्षित निकाल आए हैं। संसद में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह भी बताया कि खाड़ी क्षेत्र से 3972 भारतीय नाविकों को स्वदेश भेजा गया है और 2400 घंटे काम कर रही आपदा प्रबंधन प्रणाली के पास हजारों फोन और ईमेल प्राप्त हो रहे हैं। हुर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ऊर्जा आपूर्ति के लिए यह दुनिया का एक प्रमुख जलमार्ग है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। विक्रम मिश्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या, विदेश मंत्री विजेता हेरात और विदेश सचिव अरुणी रणराजा से मुलाकात की। ईरान ने कहा है कि हुर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसी सप्ताह ये समझौता हो सकता है। एक रिपोर्ट।
1: इस संभावित समझौते से हुर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुल जाएगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा और युद्ध समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि समझौता इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाता है या नहीं। ईरान ने कहा कि वह हुर्मुज जलडमरू मध्य पर एक हद तक नियंत्रण चाहता है और इस मार्ग से आवाजाही वैसी नहीं रहेगी जैसी युद्ध से पहले थी। ईरान हुर्मुज जलडमरू मध्य के उत्तरी हिस्से को जबकि ओमान दक्षिणी हिस्से को नियंत्रण करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ईरान युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हुर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण चाहता है। ईरान ने आगाह किया कि अमेरिका के किसी और हमले की स्थिति में वह खाड़ी देशों को निशाना बनाएगा। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: जापान के हिरोशिमा में आज परमाणु बम गिराए जाने की बरसी है। सन 1945 में हुई इस घटना में 140,000 लोग मारे गए थे। आज सुबह घटनास्थल पर पीस मेमोरियल पार्क में मौन रखा गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नेताओं ने परमाणु हथियारों को खत्म किए जाने की अपील की। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए जाने के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों को घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव अभियान सुनिश्चित करने को कहा है। उत्तराखंड आपदा विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया गया है।
2: उत्तराखंड के लिए अभी जो अलर्ट आया है वो देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के शेष जनपदों के लिए येलो अलर्ट है। तीन जनपद जहां पे ऑरेंज अलर्ट है वहां पर ज्यादा बरसात की संभावना है और बाकी जनपदों में नॉर्मल बरसात होगी। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जनपदों को निर्देश जारी किए गए हैं विभिन्न माध्यमों से और SMS के माध्यम से हम लोगों को अलर्ट करते हैं।
0: राज्य में मौसम के बारे में और जानकारी दे रही है हमारे संवाददाता।
3: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभावित आपदा की किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य की सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों और नदी नालों की निगरानी रखने पर भी जोर दिया है। उन्होंने आपातकालीन परिचालन केंद्रों को 2400 घंटे सक्रिय रखने और प्रत्येक घटने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में जनहानि को रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: मौसम विभाग ने आज झारखंड, गांगेय, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार आज दोपहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि अपनी तीक्ष्ण वाक्पटुता, संवेदनशील नेतृत्व और राष्ट्रीय हित के प्रति अटूट समर्पण के बल पर सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया। खेलों में जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु

0: के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कोयम्बटूर में आज सेमीफाइनल में ओडिशा का मुकाबला पंजाब से जबकि झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: संसद में जारी गतिरोध समाप्त करने के प्रयास के तहत संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है संसद गतिरोध, राहुल गांधी से मिले रिजिजू, परिसीमन और एफसीआरए पर राहत तलाशने की कोशिश, जकरबर्ग ने भारत से मांगी माफी, फेसबुक से पीएम मोदी की पोस्ट हटाने पर आखिर झुके मेटा प्रमुख, अमर उजाला सहित कई अखबारों की सुर्खी है। पत्र लिखता है मेटा ने माना, खास तरह का कंटेंट बढ़ाने के लिए मिली थी मोटी रकम। दैनिक जागरण ने अपने आर्थिक पन्ने पर आरबीआई गवर्नर के शब्द प्रकाशित किए हैं, लगातार चौथी बार रेपो रेट 5.25% पर स्थिर, गवर्नर ने कहा पश्चिम एशिया में संघर्ष जारी रहा तो ईंधन और खाने पीने की चीजें हो सकती हैं महंगी। नीट होगी फुल प्रूफ, जेईई तर्ज पर परीक्षा की तैयारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिया हलफनामा। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर युवाओं के नशे में गिरफ्त होने का लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है ताकि नशे की गिरफ्त में ना आए युवा। पत्र लिखता है भारत में करीब 75% युवा 21 साल की उम्र तक किसी न किसी नशे का शिकार हो चुके हैं। परिवार और शिक्षक संजीदगी से संवाद करें तो उन्हें नशे से बचाया जा सकता है। ईरान और ओमान होर्मुज खोलने पर हुए सहमत, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है ईरान को होर्मुज पर मिल सकता है कंट्रोल। दैनिक भास्कर ने कोटा में नोनेरा एब्रा डैम के बंद होने के बाद काली सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से चारों तरफ छाई हरियाली का चित्र प्रकाशित किया है, जिसमें पानी के ठहराव से नदी किनारे बसी कराइयों और हरी भरी वादियों का सौंदर्य चरम पर है।
0: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज इंडियाज एक्स्ट्रॉर्डिनरी पूल ऑफ क्रिएटिव टैलेंट कैन बी लीवरेज टू स्ट्रेंथन नेशंस पोजीशन एज ग्लोबल हब फॉर कंटेंट क्रिएशन। Government extends 10 years of Cabinet Secretary T.V. Somnathan and Union Home Secretary Govind Mohan by 1 year. Students intensify their protest over irregularities in recruitment exams in Jharkhand. Uttarakhand government puts agencies on high alert following warning of heavy rain in the state. New Delhi urges Colombo to cooperate in early release of Indian fishermen detained by Sri Lankan authorities. And India safely moves 60 ships through Strait of Hormuz during Gulf crisis. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has underscored that India has a rich tradition of storytelling and an extraordinary pool of creative talent which can be leveraged to strengthen the nation's position as a global hub for content creation. In a social media post, Mr. Modi informed that he met the co-CEO of Netflix, Ted Sarandos, in New Delhi. The Prime Minister also noted that during the meeting, they discussed the immense potential of India's media and entertainment sector. Addressing a conference of content creators in New Delhi last year, Mr. Modi called upon them to share India's stories to the world.
1: हमें एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। हम भारत की अपनी स्टोरी सबको सुनाएं। लेट अस क्रिएट ऑन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही, आपके देश, हम सबका देश।

0: National Championship Division A after winning their quarter-final matches in Coimbatore, Tamil Nadu yesterday. Punjab defeated Karnataka 5-2, Odisha beat Haryana 5-1, Jharkhand edged past Uttar Pradesh in a shootout after a 3-3 draw, and Madhya Pradesh overcame Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 7-3. In today's semi-finals, Odisha will face Punjab while Jharkhand will take on Madhya Pradesh in Coimbatore. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
1: Thank you, Shagun. The Statesman headlines, Prime Minister Modi marks 7 years of Article 370 abrogation, asserts the region has witnessed transformative changes since the constitutional provisions were revoked in 2019. Government secures Meta apology after Prime Minister video removal row, reads a headline in the Pioneer. Government reaches out to opposition ready to soften FCRA bill, allay concerns, writes the Indian Express. The Hindustan Times in its editorial title, Monetary policy shows the economy's resilience, writes, despite a grim environment due to war in West Asia, India is expected to clock a 7% growth rate in the first quarter of financial year 2027, RBI's Monetary Policy Committee said in its resolution. What it underscores is the inherent strength of the Indian economy. It is resilient enough to weather even large cyclical disruptions. Air India appoints former Ethiopian Airlines boss Tewolde Gebremariam as CEO and MD, informs the Hindu Business Line. And finally, investors on a new mission funding space tech startups. India's fledgling private space industry has proven its expertise in building rockets and satellites, overcoming the single hardest capability hurdle in the new space economy, writes the Economic Times. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India's extraordinary pool of creative talent can be leveraged to strengthen nation's position as global hub for content creation. Government extends 10 years of Cabinet Secretary T.V. Somanathan and Union Home Secretary Govind Mohan by 1 year. Students intensify their protest over irregularities in recruitment exams in Jharkhand. Uttarakhand government puts agencies on high alert following warning of heavy rain in the state. New Delhi urges Colombo to cooperate in early release of Indian fishermen detained by Sri Lankan authorities. And India safely moves 60 ships through Strait of Hormuz during Gulf crisis. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। वतन का राग, आइए सुने ये प्रायोजित कार्यक्रम। इसे हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
3: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि डीके पट्टम्माल का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 19 मार्च। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, दिल्ली से अमित कुमार और मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हरस्वरूप। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
4: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
5: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
4: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
5: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
4: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

राष्ट्रध्वज तिरंगा हमारी पहचान है। ये केवल तीन रंगों का संगम नहीं, ये भारत की आत्मा का उजास है। ये केवल ध्वज नहीं, हम भारतीयों की भावनाओं का स्पंदन है। इसके हर रंग में युग बोलता है।

हर लहर में इतिहास डोलता है। हमारा तिरंगा हमारी आन बान और शान है, जिसकी छाया में विभिन्न जाति धर्म और भाषा के बावजूद हम सब भारतीय हो जाते हैं। हमारे इसी राष्ट्रध्वज की कल्पना करने वाले, उसे आकार देने वाले महान देशभक्त थे पिंगली वेंकैया। वो एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी, कृषि विज्ञानी, भू विज्ञानी और अनेक भाषाओं के जानकार भी थे। पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त सन 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के पास स्थित भटला पेनुमारू नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम हनुमंत रायुडू और माताजी का नाम वेंकट रत्नम्मा था। पिंगली वेंकैया की बुद्धि की प्रखरता बचपन से ही अद्वितीय थी। उनकी आरंभिक शिक्षा हिंदू हाई स्कूल मछलीपट्टनम में हुई। इसके बाद शिक्षा के लिए वो कोलंबो चले गए, जहां उन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज की पढ़ाई की तथा परीक्षा उत्तीर्ण की। कोलंबो के सिटी कॉलेज में उन्होंने राजनीति शास्त्र का गहन अध्ययन किया। शिक्षा में उनकी गहरी रुचि थी, यही कारण है कि आगे चलकर उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से भू विज्ञान में भी डिप्लोमा प्राप्त किया तथा एक भू वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसके साथ ही उन्होंने कृषि विज्ञान का भी गहन अध्ययन किया था। प्रकृति, मिट्टी, चट्टानों और फसलों में उनकी गहरी रुचि थी और यही रुचि उनके जीवन के विभिन्न वैज्ञानिक पड़ावों का आधार बनी। उनके भीतर जितनी ज्ञान की प्यास थी, उससे कहीं अधिक देश प्रेम की गहरी भावना थी। यही कारण है कि मात्र 19 वर्ष की आयु में वो भारतीय सेना में शामिल

ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल होने के बाद पिंगली वेंकैया के जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव आया। उन्हें दक्षिण अफ्रीका में चल रहे द्वितीय बोअर युद्ध के मोर्चे पर सेवा के लिए भेजा गया। दक्षिण अफ्रीका की उस तपती रणभूमि में इतिहास ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण संगम रचा। यहीं उनकी भेंट युवा बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से हुई, जो वहां रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। गांधी जी के विचारों ने पिंगली वेंकैया के मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। बोअर युद्ध के मैदान में एक टीस थी जो उनके स्वाभिमानी हृदय को बेचैन कर देती थी। जब भी भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश ध्वज यूनियन जैक को सलामी देने के लिए विवश किया जाता, उनका मन विद्रोह कर उठता। वो स्वयं से प्रश्न करते कि इतने विशाल और गौरवशाली भारत देश का अपना कोई ध्वज क्यों नहीं है, जिसके नीचे पूरा राष्ट्र एकजुट होकर खड़ा हो सके। और उनका यही विचार आगे चलकर राष्ट्रध्वज के निर्माण की अमर गाथा बन गया। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उन्होंने रेलवे में गार्ड के रूप में नौकरी की, लेकिन राष्ट्र जागृति उनके जीवन का लक्ष्य बन चुका था। उन्होंने सरकारी सेवा छोड़कर लाहौर के प्रसिद्ध एंग्लो वैदिक कॉलेज में प्रवेश लिया तथा उर्दू, संस्कृत और जापानी भाषा का गहन अध्ययन किया। जापानी भाषा पर उनकी अद्भुत पकड़ देखने को मिली जब उन्होंने धारा प्रवाह जापानी भाषा में ऐतिहासिक भाषण दिया। सुनने वाले हैरान थे। लोग उनसे इतना अधिक प्रभावित हुए कि आदरपूर्वक उन्हें जापान वेंकैया का नाम दे दिया। आगे चलकर उन्होंने मद्रास में प्लेग इंस्पेक्टर का प्रशिक्षण लिया और वेल्लारी में प्लेग इंस्पेक्टर के रूप में भी काम किया। उन्होंने आंध्र नेशनल कॉलेज मछलीपट्टनम में लंबे समय तक अध्यापन का कार्य भी किया तथा कृषि एवं भू विज्ञान के क्षेत्र में शोध किए। इस तरह कई भूमिकाओं में उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन उनके लिए देश सर्वोपरि था। स्वदेशी आंदोलन हो, वंदे मातरम हो या होम रूल आंदोलन, वो पूरी निष्ठा से इसमें सक्रिय रहे। वो लगातार अधिवेशनों में शामिल होते रहते तथा अपने महत्वपूर्ण विचार रखा करते। वो देखते थे कि अधिवेशनों में भारत का कोई ध्वज नहीं फहराया जाता था। उन्हें लगता कि राष्ट्रध्वज किसी भी देश की साझी राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक होता है। उनके मन में भारत के राष्ट्रध्वज के निर्माण की कल्पना जागने लगी और समय के साथ ये कल्पना एक संकल्प में बदल गई।

पिंगली वेंकैया भारत के राष्ट्र ध्वज को मुक्त गगन में लहराता हुआ देखना चाहते थे। उन्होंने 5 साल तक 30 से भी अधिक स्वतंत्र देशों के राष्ट्र ध्वजों, उनके इतिहास, रंगों और संरचना का अध्ययन किया और एक पुस्तक भी प्रकाशित की, अ नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया, जिसमें भारत के लिए संभावित 30 से भी अधिक ध्वज रूप प्रस्तुत किए गए थे। और तभी आया सन 1921 का साल। विजयवाड़ा में आयोजित अधिवेशन में वो गांधी जी से मिले और उनके समक्ष ध्वज प्रस्तुत किया। पिंगली वेंकैया का मूल ध्वज 2 रंगों का था। इसमें एक रंग लाल था, जो हिंदू समाज का प्रतीक था, और दूसरा रंग था हरा, जो मुस्लिम समाज का प्रतीक था। गांधी जी ने सुझाव दिया कि अन्य सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बीच में सफेद रंग भी जोड़ा जाए तथा इस सफेद रंग पर चरखा अंकित किया जाए, जो स्वावलंबन, श्रम और स्वदेशी का प्रतीक बने। और फिर सन 1931 में हुए कराची सम्मेलन में लाल की जगह केसरिया, सफेद और हरे रंग के तिरंगे को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इस तरह पिंगली वेंकैया की कल्पना और संकल्प ने तिरंगे को आकार दिया और 22 जुलाई सन 1947 को, स्वतंत्रता से ठीक पहले, हमारा वर्तमान राष्ट्र ध्वज अंगीकार किया गया, जिसमें ध्वज के 3 रंग केसरिया, सफेद और हरा यथावत रहे। चरखे के स्थान पर अशोक चक्र रखा गया, जो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इस तरह करोड़ों भारतीयों की आत्मा, संप्रभुता और गौरव की भावना को पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्र ध्वज में पिरो दिया। पिंगली वेंकैया एक समर्पित वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने कंबोडियाई कपास पर गहन शोध किया तथा उसकी एक उत्कृष्ट संकर नस्ल भारत में विकसित की थी। इस वैज्ञानिक अवदान के लिए उन्हें संपूर्ण भारत में पट्टी वेंकैया यानी कपास वेंकैया के नाम से पुकारा गया। जनसेवा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने महामारी प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया था तथा प्लेग के प्रकोप से लोगों को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पिंगली वेंकैया एक भूविज्ञानी भी थे। अपने भूविज्ञान अध्ययन का उपयोग करते हुए उन्होंने हीरे के खनन पर भी शोध किया। वो हीरा खनन और रत्नों के मूल्यांकन के अद्वितीय विशेषज्ञ थे, इसीलिए उन्हें डायमंड वेंकैया भी कहा जाने लगा। भारत की आजादी के बाद उन्होंने भारत सरकार के खनिज अनुसंधान विभाग में सलाहकार के रूप में कार्य किया और सन 1955 में हीरों पर लिखी उनकी पुस्तक द मदर ऑफ डायमंड्स प्रकाशित हुई। आजीवन राष्ट्र सेवा करते हुए 4 जुलाई सन 1963 को उन्होंने अंतिम सांस ली। पिंगली वेंकैया द्वारा परिकल्पित राष्ट्र ध्वज में लाल की जगह केसरिया रंग स्वीकारा गया, सफेद रंग और अशोक चक्र जोड़ा गया और ये रंग समुदाय नहीं, गुणों के प्रतीक बने। लेकिन आज भी हमारे तिरंगे में समाहित साहस, बलिदान, सत्य, शांति, समृद्धि, शक्ति और विश्वास के प्रतीकों में पिंगली वेंकैया की भावनाएं, उनका राष्ट्र प्रेम मुस्कुराता है। राष्ट्र अस्मिता के इस महाशिल्पी को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि पिंगली वेंकैया का जन्म कब हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन ले, पिंगली वेंकैया का जन्म कब हुआ था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है

WATANKARAAG@gmail.com और RADIOAZADHIND@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुने लोक संगीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं दयाराम सरोलिया और साथियों की आवाजों में कुछ मालवी लोकगीत। तो लीजिए सबसे पहले सुनिए ये पारंपरिक लोकगीत।

आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं लोक संगीत। अगला पारंपरिक लोकगीत दयाराम सरोलिया और साथियों के स्वर में।

लोक संगीत में अब सुनिए दयाराम सरोलिया और साथियों की आवाज़ में ये कार्यक्रम का अंतिम लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे दयाराम सरोलिया और साथियों के गाए मालवी लोकगीत। लोक संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज आप सुनेंगे गुरुशा दुबे की प्रस्तुत पेश की गई कुछ गजलें।

सुगम संगीत में आज आपने सुनी गुरुशा दुबे की पेश की गई कुछ गजलें। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत। आज आप सुनेंगे वैशाली फड़के का शास्त्रीय गायन। राग है अहिर भैरव।

शास्त्रीय संगीत में अभी आपने सुना वैशाली फड़के का शास्त्रीय गायन राग अहिर भैरव में। लीजिए अब सुनिए उन्हीं का गाया राग भटियार।

शास्त्रीय संगीत में आज आपने सुने वैशाली फड़के के शास्त्रीय गायन में राग अहिर भैरव और राग भटियार। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रातः के 10 बजे हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है शहडोल जिले की चिट्ठी। आलेख अरविंद पांडे का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। शहडोल जिले में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली मिलने के साथ पर्यावरण संरक्षण में मदद मिल रही है। आवासीय घरों में सोलर पैनल लगवाने से बिजली बिल में 30-70% तक की कमी आ रही है। सूर्यघर योजना के तहत 2 किलोवाट तक की क्षमता वाले सोलर पैनल लगाने से 30,000 रुपए प्रति किलोवाट वित्तीय सहायता दी जाती है। इसी तरह 3 किलोवाट या उससे अधिक की क्षमता के सोलर पैनल लगवाने पर 78,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। छत पर सोलर पैनल लगाने से प्रति किलोवाट 1300 यूनिट बिजली का साल भर में उत्पादन होता है। इस बिजली को नेट मीटरिंग वाली बिजली यानी ग्रिड से जोड़ने पर मासिक बिजली बिल में काफी कमी आती है। शहडोल जिले में 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। CMHO डॉ. राजेश मिश्रा ने जानकारी दी है कि इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो ऑनलाइन FIR के बाद अब जिले में अपराधों की जाँच पूरी तरह से डिजिटल होगी। SSP अभिषेक दीवान ने जानकारी दी है कि इसके लिए शहडोल जिले के 300 से अधिक विवेचकों को टैब वितरित किए गए हैं। विवेचक घटनास्थल पर ही पंचनामा तैयार कर रहे हैं, इसके साथ ही साक्षियों के बयान दर्ज कर रहे हैं। मौके की फोटो और वीडियो को तुरंत अपलोड करना, घटनास्थल से मिले भौतिक साक्ष्यों और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों को भी सीधे सर्वर पर दर्ज किया जा रहा है। पहले यह काम पेपर पर होता था और बाद में कंप्यूटर में फीड किया जाता था। नई व्यवस्था से समय की बचत के साथ मामलों की जांच में तेजी आ रही है, इसके साथ ही मामलों में पारदर्शिता भी बढ़ रही है। दस्तावेज सुरक्षित रहेंगे और छेड़छाड़ की संभावना भी नहीं होगी। शहडोल जिले के कमजोर जनजाति समूह के लिए शुरू की गई PM जनमन योजना के तहत लगातार काम चल रहे हैं। जिले की 463 चिन्हित बैगा बसाहटों में सड़क, बिजली, पानी, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और मोबाइल नेटवर्क के अलावा रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जिले में अब तक PM आवास योजना के तहत 15,753 बैगा हितग्राहियों को आवास दिए जा चुके हैं। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अखिलेश मिश्रा ने बताया कि मिशन शक्ति योजना के तहत बाल विवाह रोकने के लिए विशेष जागरूकता अभियान शहडोल जिले में चलाया जा रहा है। वन स्टॉप सेंटर के सहयोग से आयोजित किए गए जागरूकता कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक भानुप्रिया ने जानकारी दी कि कम उम्र में विवाह होने से बच्चों का शारीरिक और बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है। शहडोल जिले में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट का नया शैक्षणिक सत्र 3 अगस्त से शुरू किया गया है। इसके पहले चरण में 60 युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। संस्थान में 12वीं पास युवाओं के लिए 1.5 वर्ष का डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसमें 30 सीटें हैं और कुल प्रशिक्षण शुल्क 29,250 रुपये है। वहीं 10वीं पास युवाओं के लिए 6 महीने का क्राफ्टमैनशिप सर्टिफिकेट कोर्स इन फूड एंड बेवरेज सर्विस संचालित होगा, जिसमें 30 सीटें हैं और शुल्क 15,000 रुपये रखा गया है। पशुपालन के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो जिले में मवेशियों को जानलेवा बीमारियों से बचाने, लावारिस गौवंश के बेहतर प्रबंधन और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए विशेष टीकाकरण अभियान जिले में चलाया जा रहा है। ये अभियान 15 सितंबर तक जारी रहेगा। वहीं 4,18,000 से अधिक मवेशियों को खुरपका और मुंहपका की बीमारी से बचाने के लिए टीके भी लगाए जा रहे हैं। वहीं स्कूली शिक्षा की गतिविधियों की अगर बात की जाए तो शहडोल जिले में नर्सरी से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य की गई अपार ID बनाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। जिले में अध्ययनरत 1,94,000 विद्यार्थियों की अपार ID बनाई जानी है और अब तक 1,35,000 से अधिक बच्चों की अपार ID बन चुकी है। जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों में स्वसहायता समूह अब सभी बच्चों के लिए गर्म भोजन और नाश्ता सप्लाई करेंगे। टेक होम राशन व्यवस्था अप्रैल महीने से बंद थी, लिहाजा महिला बाल विकास विभाग ने नई व्यवस्था को अपनाने का फैसला किया है। वहीं खेती किसानी की अगर बात करें तो शहडोल जिले में कृषि एवं आजीविका संवर्धन के तहत किसानों को लाभकारी फसल अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आजीविका हल्दी प्रसंस्करण इकाई सरहट से जुड़े 12 गांवों के लगभग 135 किसानों ने 32 एकड़ भूमि पर हल्दी की खेती कर लगभग 130 मीट्रिक टन हल्दी का उत्पादन किया है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत किसानों की आय बढ़ाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन पर विशेष फोकस किया जा रहा है। अगले वर्ष हल्दी की खेती का क्षेत्रफल 20-25% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। शहडोल जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे शहडोल जिले की चिट्ठी। आलेख अरविंद पांडे का था और वाचन स्वर अभिषेक कटियार का।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मन भावन।

मन भवन के सभी श्रोताओं को रूपाली का नमस्कार। मैं हाजिर हूँ आपके ढेर सारे खतों को लेकर और आपकी फरमाइश के गीतों को लेकर। तो आइए शुरुआत करते हैं स्वीकार किया मैंने इस फिल्म के गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं खंडवा से प्रकाश, उर्मिला, दीपक, दीपिका, नंदिनी, निखिल और गौरांज, खरगोन से कैलाश पगारे, दुर्गा देवी, राहुल और मनीषा, नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश, उषा और अमित, गाजीपुर से अवधेश, प्रीति और नवनीत रॉय, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभय, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, ग्राम मोहत से भैया तड़वी, रीना, सनी, रोजूबाई, परु, मुबारक, विलास, मनोहर और तैमूर, रावेर से अरशद, आरिश, अरसलान और यूनुस, मोहत से मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना, मुबारक, परवेज़, रोजमीन और उनके परिवार के सभी सदस्य। छत्रपति संभाजी नगर से हमें ख़त लिखा है राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि और शीतल पाटिल ने। यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता, मुस्कान, जितेंद्र, धर्मेंद्र और उनके सभी साथियों ने। लाबरिया भैरू इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमीला, नंदिनी, मुस्कान, नीलम, सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कुणाल, केतन और समस्त बामनिया परिवार ने। मक्सी से हमारे श्रोता हैं दयाराम जाटव, चैन सिंह आरोल, नानूराम, नंदकिशोर और दीपक कांसोटिया। तो आप सभी की फरमाइश पर सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में निदा फाजली की ये रचना, जिसकी धुन बनाई है उषा खन्ना ने।

श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। ये रचना है हसरत जयपुरी की और संगीत है शंकर जयकिशन का। फिल्म का नाम है आई मिलन की बेला। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं बजरंग नगर देवास से मनु ठाकुर, योगेंद्र सिसोदिया, नेता रायकवार, नेता रावणकर, जाकिर हुसैन नजमी और उनके सभी साथी, पुणे से पंकज वाड़ोदे, प्रियंका, बीटी वाड़ोदे और चंद्रप्रभा, सहारनपुर से एस के नारंग, आशु पथिक और सोनाली, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन, राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमीन और प्रयागराज, कोल्हापुर से हमें ख़त लिखने वाले श्रोता हैं तुषार कुरणे, प्रसिक कांबले, एकता, मेघना, उत्कर्षा और अरुण। आप सभी की फरमाइश पर आई मिलन की बेला फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत।

और अब सुनिए, प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में शकील बदायूनी की ये रचना जिसकी धुन बनाई है रवि ने। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं शाहूनगर यवतमाल से राहुल, मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी और प्रियांशी, कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज, उबेद, रजिया, जुनेद, अलीना, आयत और मुआज मंसूरी, शाजापुर से एमएम राजावत, राज, मधु, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ और समस्त राजावत परिवार। स्कीम नंबर 71 इंदौर से अनिल कौचाले, सबीहा, सुषमा, सीमा, स्मिता, श्वेता, राखी, पूजा और मीनू। छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा, शारदा और दामिनी वर्मा। छत्तीसगढ़ बेमेत्रा से सुरेश सारथी और पूर्णिमा सारथी। आप सभी की फरमाइश पर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में स्वामी फिल्म से ये गीत, जिसे लिखा है अमित खन्ना ने, संगीत है राजेश रोशन का। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं धर्मपुरी जिलाधार से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर अयान फैजान, सुमेरा कशिश, साइमा हसनैन और खुशी। गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार, डेनी और मास्टर मनीष। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। छत्तीसगढ़ से ही रोशन देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिंपल। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। एरोड्रम थाना वंदना नगर इंदौर से राम लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, संजना, परी, मालती, स्वाति, देविका और प्रयाग। पालदाना का इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी। भानपुरा ज़िला मंदसौर से परवीन, बिल्किश, समीर, खुशी और राजू भाई। तो लीजिए, आप सभी की फरमाइश पर स्वामी फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत सुनिए।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं गाइड फिल्म से। इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, गीत को लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत है एसडी परमन का। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं राजपुर से घीसू दिलवारे, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ और कुणाल दिलवारे। छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, राधिका, तुषार, डॉली, अल कबीर, पूजा, प्रभा देवी। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा, नीरज, नीलेश और अंजलि। वारणा शाहपुर कोल्हापुर से तेजस्विनी चौहान, विजय, अंकिता, अनिकेत और माय चौहान। चंदन नगर सातारा से सतीश वाघमारे, अतीश, स्वाति, वर्षा, श्रमण और श्रीमेण। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। छबड़ा राजस्थान से हमारे श्रोता हैं आसिफ अली सिद्दीकी।

की वाहिद अली और शमीम बानो। कंवर कॉलोनी बड़वा से हमें ख़त लिखने वाले हमारे श्रोता हैं प्रवीण श्रीमाली, मीना, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। आप सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गाइड फिल्म से ये गीत।

श्रोताओं, मन भवन कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, चिराग फिल्म से। इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत है मदन मोहन का। गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप, अमूल्य और वैश्य।

शाहजहाँपुर से मोहम्मद यूनुस मंसूरी, मॉरिस, मुकेश, अकबर, मोहम्मद याज, हसन भाई, गजानंद नागर, जानकी लाल वर्मा, रानीमा, आवेश और दिनेश नागर। सुराना ज़िला रतलाम से शेख हैदर ख़ान, शकीला बानो, रुखसार और मोहम्मद आरिश। खरगोन से हमारे श्रोता हैं डॉक्टर तिलुक चंद वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक, अमित, सचिन, समर, राज, आर्यन, बेबी आरोही, इशिका, अंजलि और श्वेता। मानपुर से विजय वैद, रानी, महिमा और नीतू। ग्राम लोहारी जिला खंडवा से राजेश कुमार धनजे, राहुल, विशाल, शीला और गायत्री। हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी, जे एस नायक, शोभा और समस्त डागला परिवार। गंजी कंपाउंड इंदौर से ईश्वर जय सिंघानी, उमेश कश्यप, दीपक राठौर, धर्मेंद्र पटेल, सक्षम शर्मा और पीयूष शर्मा। आप सभी की फरमाइश पर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत सुनिए।

श्रोताओं, अगले गीत के लिए हमें फरमाइशी खत लिखने वाले हमारे श्रोता हैं उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाणकर, सरिता, प्रणीता, सिद्धांत, एकांश, शैलेश, वैशाली, श्वेता, सुमित, ध्वनि और प्रणीता गवहाणकर। महाराष्ट्र से ही गजानन येले, नवदीप, अकोला से बलदेव दामोदर और अरुणा, अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब, मुस्ताबा, राउफ भाई और शाहिद भाई, इसी के साथ रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। ग्राम कड़िया जिला आगर से ईश्वर सिंह गुर्जर, सिंधुलाल मालवीय और उनके सभी साथी। नांदखेड़ जिला वाशिम से अशोक चुंबले, दिनेश, रूपेश, लीलाबाई, चैताली और प्रीति। लाबरिया फिरू इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला, नंदिनी, मुस्कान, नीलम, सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कुणाल, केतन और समस्त बामनिया परिवार। देवास से हमारे श्रोता हैं मुरारी लाल वर्मा, मनीष, शिवम, सुभाष गोडिया, नवीन वर्मा, मीनू, राजेश अग्रवाल, शांति महाजन, कैलाश, नागपाल और जमील खान। आप सभी की फरमाइश पर संगम फिल्म से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में शैलेंद्र की ये शब्द रचना।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत, जिसे पसंद किया है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने, मुर्तिजापुर विराहित से हारून शाह और शाजिया बानो ने, सुदामा नगर इंदौर से अनिल भंडारे, उषा, समता, चित्रा और निशा ने, तेलंगाना से गोपाल कानुगुला, माहेश्वरी, प्रवालिका, विष्णुवर्धन और विग्नेश ने, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने, इसी गीत के लिए हमें खत लिखा है पलसीकर कॉलोनी इंदौर से धनेश मटाई, राकेश, उमेश सहजवानी, हनी, जिम्मी, अमिता, दियाना और जियांश मटाई ने, जामभ्रून से दुर्गा दास जोशी, गंगाधर, गजानन, संजय, आशीष, पृथ्वीराज, कुमारी साध्वी और गणेश ने, पंजाब से हमें खत लिखा है हरदेव, मीका, बलविंदर, बिरक, जयतेग और उनके साथियों ने, पांढर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा, प्राची, अनुश्री और धनश्री बुरांडे ने, गांव रतनपुर तहसील

झिरन्या से भागीरथ नायक, जितेंद्र, सुभाष, रविंद्र, शिवानी, अश्विनी, हर्षराज, अरविंद, आदित्य, गुनगुन और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने, मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीक, नीनाजी, स्वप्निल और अजय खिरोड़कर, तो आप सभी की फरमाइश पर मेरा गांव मेरा देश फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं ठाकुर जरनेल सिंह से। इसे गाया है आशा भोसले ने, गीत को लिखा है असद भोपाली ने और संगीत है गणेश का। इसे सुनना चाहा है प्रमीलागंज आलोट जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजू बाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने। राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमीन और प्रयागराज ने। मालवा मिल इंदौर से प्रमेंद्र कुशवाहा, कैलाश, रमेश, कामिनी, मंजू, रामकुमार और उनके सभी साथियों ने। सोमानी नगर इंदौर से बी आर नामदेव, राजश्री, रौनक, दिव्यांशी, रोशनी, धीरज, सुवती, टोनी और निधि ने। दुबे की बागीचे इंदौर से महेश रायकवार, अमृता, कृष्णवी, नितिन, सरिता, अहिल्याबाई, रितेश और उनके सभी साथियों ने। छत्तीसगढ़ से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश, चंद्रकांता और लक्ष्मीकांत प्रजापति ने। खंडवा से राधेश्याम यादव, प्रभा, भारती, शालिनी और कामेश यादव ने। बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता, छोटू, रोशनी, अजय और कृष्णा देवी गंगराड़े ने। खंडवा से ही मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार और मोइन छोटू पवार ने। इसी गीत को पसंद किया है आड़ा बाजार इंदौर से नेहा, मनीष, भावना, आशीष, बल्लू, जिया और राशि ने। तो आप सभी की फरमाइश पर आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत।

श्रोताओं, ये थी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। अब मुझे यानी रूपाली को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि आप हमें यूं ही खत लिखते रहेंगे। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे भोपाल केंद्र से हमारे कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
2: श्रोताओ नमस्कार, आज के कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज हम बात करेंगे जिंदगी में दोस्त का होना क्यों जरूरी है। आपसे करेंगे ढेर सारी बातें और सुनवाएंगे हमारी पसंद के कुछ गीत। तो चलिए कॉल कीजिए 2660902 पे और एसटीडी कोड आप जानते ही हैं 0755। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी हेलो, हाँ जी नमस्ते, हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में। देखिए कोशिश तो हमारी पूरी है, अब आ रही है। कौन साहब बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? लोकेंद्र गुर्जर। लोकेंद्र गुर्जर जी, आपने कॉल कब किया था इसके पहले? चलिए कोई बात नहीं, फिर तो बहुत अच्छी बात है आपका कॉल हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकेगा, है ना। हमारे यहाँ का रूल है कि एक हफ्ते के अंदर अगर कोई कॉलर दोबारा कॉल करता है तो उसका कॉल हम नहीं लेते, तो इसलिए हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, तो एक महीने बाद नहीं, एक हफ्ते बाद भी करेंगे अगर आप, आठवें दिन तो हम आपका कॉल लेंगे प्रोग्राम में। चलिए ये तो और भी अच्छी बात है। अच्छा लोकेंद्र जी, आज का हमारा कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे। अच्छा मेरी आवाज रिपीट हो रही है, आपका जो रेडियो सेट है क्या पास में रखा हुआ है? हाँ, क्योंकि रिपीट आ रही है आवाज। अब बताइए। हेलो, अब बंद हो गया ना? आप देखिए वॉइस अच्छी आ रही है, हमारी बात क्लियरली हो पाएगी, है ना। तो लोकेंद्र जी, आज जो हमारा विषय हमने रखा है वो ये है कि जिंदगी में दोस्त का होना क्यों जरूरी है। जिंदगी में दोस्त का होना क्यों जरूरी है, इस विषय पर आप अपनी राय दीजिए। कोई बात नहीं, जिंदगी में दोस्त का होना क्यों जरूरी है? बिल्कुल सही कहा आपने, दोस्त होना वाकई बहुत ज़रूरी है। तो लोकेंद्र जी आपसे बातचीत करके

0: हेलो। हाँ जी नमस्ते। हाँ जी स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। पहले आप अपना शुभ नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं जी? हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने। अरे वाह, थैंक यू वेरी मच इतना सम्मान देने के लिए। जी तो तिवारी जी, क्या हाल है आपके? बिल्कुल। जी धन्यवाद। और तिवारी जी, आपने हमें कॉल किया उसके लिए भी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आप जानते ही हैं कि आज का हमारा विषय है बात आपकी गीत हमारे,
1: मैं बिल्कुल मैम
0: है ना? तो आज का हमारा विषय यही है कि जिंदगी में दोस्त का होना क्यों जरूरी है।
1: बहुत ही आपने अच्छा विषय, और ऐसी बात नहीं, जब आप कुछ ना कुछ पिटारा लेकर ही आते हैं, जो मतलब जिसको होते हैं, जिसको बोलते हैं कुछ ना कुछ एक टॉनिक, जो हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी होती है। इसी तरह से आज ही आप बहुत अच्छा विषय लेकर के आए हैं कि दोस्त का हमारी जिंदगी में होना। ये मान के चलिए कि मैम, दोस्त अगर आजकल की जो दोस्ती है वो सिर्फ स्वार्थमय दोस्ती रह गई है, कि अगर हमारे पास पैसा है तो व्यक्ति हमसे जुड़ाव रखेगा, वो हमारे पास अगर आज हम परेशान हैं तो हमसे दोस्त फिर वो मुंह मोड़ लेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण और सुदामा जैसी दोस्ती होना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, दोस्ती हो तो कृष्ण और सुदामा जैसी, जो
1: बिल्कुल
0: ना
1: बिल्कुल
0: गरीबी अमीरी का फर्क देखे, ना
1: बिल्कुल
0: पढ़ा लिखा या थोड़ा अनपढ़ हो, उसका
1: बिल्कुल
0: कोई फर्क
1: बिल्कुल
0: नहीं होना चाहिए, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल दोस्ती दोस्ती के इतिहास में जो वर्णन आया है कि कृष्ण सुदामा जैसी दोस्ती होना चाहिए, और दोस्ती दूध और पानी जैसी होना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: अगर पानी दूध पानी से दोस्ती कर लेता है तो बाजार में ये कि पानी मतलब दूध अपनी कीमत में पानी को भी साथ में बिकवा देता है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए तिवारी जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और
1: जी
0: कल अपना
1: बहुत ही मुझे
0: प्रोग्राम।
1: भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी
1: नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: हेलो हेलो, हेलो
1: आकाशवाणी भोपाल।
0: जी हाँ, आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं।
1: हाँ,
0: आप सागर से बोल रहे हैं?
1: नहीं,
0: तो
1: अशोक नगर चंदेरी से जितेंद्र
0: अशोक नगर चंदेरी से कौन सा हब बोल रहे हैं?
1: झा बोल रहे हैं।
0: जी जितेंद्र जी, आपने कॉल कब किया था? अरे
1: कॉल पहली बार लगा है।
0: क्या बात है,
1: हाँ मैम, पहली बार कॉल लगा, बहुत खुशी हो रही है।
0: अरे वाह। तो अभी तक कितने टाइम से आपका कॉल एक बार भी नहीं लगा?
1: नहीं, काफी दिनों से परेशान हो रहा हूँ मैं, आपका कॉल लगता ही नहीं है।
0: चलिए, फिर तो आज आपका दिन बहुत अच्छा है। ईश्वर से आपको
1: हम
0: जो जो मन में इच्छा है ना, सब मांग लीजिए, आज सब पूरी होंगी।
1: मैम, ये कौन से कार्यक्रम में कॉल लगा है?
0: ये आपका बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम जो है ना, फोन इन प्रोग्राम, उसमें लगा है। और ये प्रोग्राम कल 11 बजे से आएगा, आप सुन सकते हैं अपना प्रोग्राम। ठीक है। अच्छा जितेंद्र जी, जो ये हमारा कार्यक्रम है आज का बात आपकी गीत हमारे, इसमें हमारा एक विषय होता है जिस विषय पे हम अपने श्रोताओं से बात करते हैं। तो आज का हमारा विषय है कि जिंदगी में दोस्त या मित्र का होना क्यों जरूरी है। इस विषय पे आप हम अपने अपना मत दीजिए।
1: अब दोस्त मित्र से जो अपनी बातें होती हैं वो अपन शेयर कर लेते हैं, जो भी कोई सुख दुख की बात होती है, कोई सहायता की बात होती है। हाँ
0: चलिए, तो आप ये मानते हैं कि जिंदगी में दोस्त होने के कारण हम अपने आप को रिफ्रेश कर लेते हैं, है ना?
1: हाँ
0: कुछ भी तनाव हो, कुछ हम उनसे अपने मन की बातें कह के अपना जी हल्का कर लेते हैं, ऐसा ही कुछ कहना है ना आपका?
1: हाँ
0: चलिए।
1: वो साथ में रहते हैं दोस्त तो अच्छा लगता है, दिन ठीक से निकल जाता है।
0: बिल्कुल, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके विचार जान के। अब एक हफ्ते बाद आप दोबारा कॉल कीजिएगा जितेंद्र जी, ठीक है?
1: हाँ
0: फिर बात होगी आपसे। धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैम।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी
1: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश, आकाशवाणी भोपाल।
0: जी नमस्ते। बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी धन्यवाद। आप कौन बोल रहे हैं?
0: मैं कविता रावत बोल रही हूँ, आप कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं विनोद कुमार, रॉक स्टार अजनर महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। जी
0: विनोद कुमार।
1: रॉक स्टार
0: अच्छा, कहाँ से?
1: अजनर महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश।
0: अच्छा, अजनल महोवा।
1: जी,
0: कब कॉल किया था इसके पहले आपने?
1: इसके पहले मेरी बात करीब करीब 6-7 महीने हो गई जब हुई।
0: चलिए फिर कोई बात नहीं, हमने सोचा कहीं ऐसा ना हो 1 हफ्ते के अंदर आपने कॉल किया हो और हम
1: नहीं
0: बातें
1: नहीं
0: कर लें और वो कॉल हम ले भी नहीं पाएंगे।
1: नहीं ऐसा नहीं, हम ये आपकी शर्तों को जानते हैं। हम पहली बार
0: जी
1: नहीं, काफी दिनों से सुन रहे हैं, जानते हैं इस बात को।
0: बिल्कुल, चलिए धन्यवाद। तो विनोद जी बताइए, कैसा मौसम है आपके यहाँ का?
1: मौसम इस समय तो बरखा रानी बहुत जम के बरस रही है, सुबह से करीब रात 11:30-12 बजे से बड़ी जोर से बारिश हो रही है।
0: चलिए, तो कल से ही स्टार्ट हुई है या इसके पहले भी थोड़ी बारिश हो चुकी है?
1: नहीं, इससे पहले अगले दिन हुई थी रात में, लेकिन आज तो बराबर हो रही है।
0: चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा विनोद जी, ये बताइए कि आपका कोई दोस्त है या नहीं?
1: हाँ जी है, उन्हीं ने जुड़वाया था मुझे, सुरेश सैनी जी हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ उन्हीं ने जुड़वाया था, अभी साथ में भी हैं वो।
0: अच्छा, तो आप जान
1: हाँ
0: मतलब ये इस बात को मानते हैं कि जिंदगी में दोस्त का होना जरूरी है?
1: बिल्कुल है, दोस्त का होना जरूरी है। दोस्त एक ऐसे कि कहते नहीं है, जो बात भाई से नहीं कर सकते वो दोस्त से बात कर सकते हैं आप, और दोस्ती का होना बहुत ही लाजमी है। हर जगह दुख सुख में भी सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही दोस्त हो तो अच्छा है, बाकी मिलावटी दोस्त तो किस काम की होती है फिर।
0: वो तो सही है, वो परख तो हमें ही करनी है ना। चलिए, आपसे
1: जी
0: बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। हमारे अगले कॉलर भी लाइन में लगे होंगे, कॉल कर रहे होंगे। ठीक है, 1 हफ्ते बाद दोबारा कॉल कीजिएगा। नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में।
1: नमस्ते हमारी बेना, आप कैसे हो?
0: हम
1: आप
0: बहुत
1: कैसे
0: अच्छे
1: हो?
0: हैं,
1: बस
0: आप
1: आप
0: कैसे
1: कैसे?
0: हैं?
1: मैं तो आपसे भी अच्छा हूँ।
0: ये कैसे हो सकता
1: बिल्कुल हो सकता है कि नहीं, मैं आपसे भी अच्छा हूँ।
0: है? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, इतना पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है इंसान को।
1: मेरा जन्म 1945 का है,
0: ओ, 45 का है?
1: 1945 का जन्म है,
0: ओहो।
1: और मैं अभी फिलहाल रिटायर मास्टर था, रिटायर होकर अब मैं मंदिर में पुजारी बना हूँ।
0: अरे वाह, बहुत नेक
1: मंदिर
0: काम।
1: में नेक काम क्या है कि अब इस उम्र में कुछ ना कुछ तो करना पड़े ना,
0: बिल्कुल। और जब है ना,
1: क्या
0: जीवन चलता रहता है ना, तो जीना आसान हो जाता
1: बिल्कुल सत्य बात बोली
0: है ना?
1: तुमने।
0: अगर आप बैठ गए हाथ पे हाथ रख के, तो समझ लो बेकार हो गए।
1: नहीं, आंखों के सामने भगवान की है,
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता होगा आपको, मैं
1: आंखों
0: समझ
1: के
0: सकती
1: सामने
0: हूँ।
1: सुबह शाम भगवान की है तो सारी दिक्कतें खत्म हो जाती है इंसान की, अगर वो 90 साल का भी अगर हो
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपकी, सच बताऊं, नजर ना लगे, आपकी बातों से लग भी नहीं रहा
1: जाए
0: कि आप 90 साल के हैं।
1: बिल्कुल। मैं तो ईश्वर से यही बोलता हूँ कि ये जो आयु आपने दी है, ये आपने दी है, हमारा कोई बस नहीं चलता इस आयु पर।
0: बिल्कुल।
1: जो आपने दी है आयु, ये हमारे लिए बहुत शुभचिंतक है। और मैं तो मेरी आंखों को ये बोलता है कि सुबह शाम आपके ही चेहरे देखूं मैं,
0: बिल्कुल सही कह रहा है।
1: आपका शुभ नाम।
0: मेरा नाम कविता रावत है, और आपका शुभ नाम?
1: मेरा नाम पूछोगे आप?
0: मुझे तो यहाँ पर आपके प्रोग्राम में तभी तो लोग जानेंगे कि किनसे बात हो रही है, तो आप कहाँ से बोल रहे हैं और कौन साहब बोल रहे हैं?
1: मैं मालेगांव से बोल रहा हूँ, तुलसीराम व्यास।
0: तुलसीराम व्यास,
1: व्यास
0: क्या बात है।
1: आपसे पहले भी बात हो चुकी है एक बार, नहीं
0: मुझे

0: बचपन से कॉलेज में स्कूलों में साथ रहता है, स्कूल में साथ रहता है, मित्र का बहुत जरूरी आवश्यक है, और मित्र का ऐसा मित्र चाहिए जो संकट के समय अपने को काम आता है।
1: बिल्कुल,
0: और मित्र अवश्य संकट के समय काम आता है।
1: ये बात सही है।
0: आज मेरा एक मित्र है, मेरी उम्र का ही है, वो आज भी मेरे साथ में बैठता है, उठता है।
1: और जब आप पुरानी बातें याद करते होंगे एक दूसरे के साथ, तो वापस उसी टाइम में पहुंच जाते होंगे, है ना?
0: और पुरानी बातें याद करने से मन को बहुत खुशहाली मिलती है,
1: खुश होता है मन। सच कह रहे हैं, और हमारे मन में उत्साह बना रहता है।
0: बिल्कुल सही बात बोली।
1: चलिए तुलसीराम जी, आपसे बहुत सारी बातें हो गई और बहुत अच्छी और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी बहन हो
1: जी। धन्यवाद।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते मैडम।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: खैरदा जिला खरगोन से बाबूलाल जाकर बात कर रहा हूँ मैं।
0: बाबूलाल
1: जाकर
0: जाखड़? तो कहाँ से?
1: खैरदा। हाँ
0: खैरदा?
1: जी, ये
0: ठीक है, ये कहाँ पर है?
1: खरगोन जिले में।
0: अच्छा, खरगोन जिले में।
1: जी मैम।
0: बाबूलाल जी, आपने इसके पहले कब कॉल किया था?
1: मैम मेरा पहली बार कॉल लगा है,
0: ओहो, अभी तक पहली बार ही लग रहा है।
1: पहली बार ही लगा है। और मैम मैंने आज ही ट्राई करा और आपका कॉल लग गया।
0: अरे वाह, क्या बात है। कैसे हैं आप?
1: मैम मैं बहुत बढ़िया हूँ, खेती किसानी में लगा हुआ हूँ, दवाई स्प्रे कर रहा हूँ फिलहाल तो।
0: अच्छा,
1: और काम
0: तो
1: करते करते आपसे कांटेक्ट करा और कॉल लग गया।
0: बहुत अच्छी बात है। अच्छा बाबूलाल जी, बताइए कि जिंदगी में मित्र का होना क्यों जरूरी है?
1: मैडम मित्रता तो मित्र होना जरूरी है, और मित्र भी सच्चा मित्र होना तो वो सही राय देता है अपन को और सही रास्ते पे ले जाता है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपके कोई है दोस्त या मित्र?
1: जी, मैं मेरे तो मित्र है ना। जी
0: तो
1: मैम,
0: आपका क्या रूटीन रहता है? आप उनसे रोज मिलते हैं या कभी-कभार मुलाकात होती है?
1: ज्यादा दिनों में मिलन होता है तो उसकी खुशी बहुत ज्यादा होती है, और यदि अपन कम दिनों में मित्रता से मिलन होता है, मित्रत से तो मिलना तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन जैसे अपन ज्यादा दिन में मिले ना तो उसकी खुशी बहुत अच्छी होती है
0: बिल्कुल
1: मिलन।
0: सही कहा आपने। चलिए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए
1: धन्यवाद मैम।
0: जी।

0: हेलो,
1: नमस्कार निपुण जी।
0: नमस्ते। कौन बोल रहे हैं?
1: मेथीपुरा से बोल रहा हूँ।
0: मैथीपुरा से?
1: हाँ जी, त्रिपुरा
0: ये कहाँ पर है?
1: पे मैं बोल रहा हूँ। मेरा नाम है बोरुनिशित सोदर।
0: क्या नाम है?
1: बोरुनिशित सोदर।
0: सुनाई नहीं दे रहा मुझे एकदम क्लियर।
1: मैं त्रिपुरा से बोल रहा हूँ।
0: हाँ,
1: मेरा नाम है वरुण सदर।
0: वरुण।
1: हाँ जी,
0: ठीक है, तो वरुण जी आपने पहले कभी कॉल नहीं किया शायद?
1: क्या है ना मैम, क्या
0: किया है?
1: है वो तो काफी दिन की बात किया है मैंने।
0: अच्छा, कितने दिन पहले किया था आपने?
1: लगभग 3 महीना तो होगा ही।
0: अच्छा, और वरुण जी करते क्या हैं आप?
1: मैं कारपेंटर हूँ।
0: कारपेंटर हैं?
1: हाँ
0: अच्छा
1: जी, हाँ
0: अच्छा
1: जी।
0: चलिए अच्छा बताइए, मौसम कैसा है आपके यहाँ का?
1: अभी तो मौसम बहुत बढ़िया है, धूप भी नहीं है, बारिश भी नहीं है।
0: अच्छा। वरुण जी बताइए, आपका कोई दोस्त या मित्र है कि नहीं है?
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: तो
1: मेरा
0: आप क्या
1: तो
0: समझते हैं कि ये दोस्त या मित्र होना जरूरी है या नहीं?
1: हाँ जी, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए, कुछ दोस्त होता है मतलब के लिए, कुछ कुछ दोस्त होता है जब आपका कोई तकलीफ आने से वो भी सामने आ जाता है। कुछ कुछ पैसा है तो दोस्त है, पैसा नहीं है तो दोस्त नहीं है।
0: नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना।
1: नहीं,
0: दोस्त तो
1: ऐसा
0: वो जो है ना, हर हाल में आपके साथ खड़ा हो, कदम से कदम मिला के, है
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: ना?
1: हाँ जी।
0: तो ऐसा दोस्त आपके पास है?
1: था लेकिन अभी तो नहीं है। अभी तो दो चार दोस्त हैं, वो तो सुख में भी है, दुख में भी है।
0: अच्छा। चलिए वरुण जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और एक हफ्ते बाद दोबारा कॉल कीजिएगा तो आपका कॉल फिर से लिया जाएगा, और कल 11 बजे से आप हमारा प्रोग्राम सुन सकते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: ठीक है, जो हमारे बीच बातचीत हो रही है कल आप सुनेंगे।
1: हाँ जी।
0: ठीक, नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी।
1: नमस्ते मैम। मैं राधिका मीना बोल रही हूँ।
0: राधिका, आपकी आवाज़ तो बड़ी प्यारी है।
1: धन्यवाद मैम, आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है।
0: कहाँ से बोल रही हैं राधिका?
1: मैम मैं इछावर से बोल रही हूँ।

0: ठीक है। अच्छा राधिका, आपने एक हफ्ते बाद ही कॉल किया होगा ना।
1: नहीं मैम, मेरे को 15 दिन हो गए हैं कॉल
0: चलो
1: कर रही
0: फिर तो कोई
1: हूँ।
0: बात नहीं, बस एक हफ्ते के अंदर अगर कोई कॉलर कॉल करता है ना तो वो कॉल हम फिर नहीं ले पाते।
1: नहीं मैम, 15 दिन हो चुके हैं मुझे लगाए हुए।
0: चलिए फिर तो कोई नहीं। और बताइए क्या करती हैं।
1: बस मैम, मैं हाउस वाइफ हूँ, अभी खाना बना के फ्री हुई थी। मैं ट्राई करती हूँ, लगता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, पर लग गया इत्तेफाक से।
0: अच्छा बताइए राधिका कि आपके कोई दोस्त या मित्र हैं।
1: हाँ मैम, मेरे दोस्त हैं, अब तो सब स्कूल की थी, सबकी शादियां हो चुकी हैं, सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो चुकी हैं। एक बैतूल में है रेनू उइके, एक शर्मिला मीना है वो सुजालपुर में है, ऐसे काफी और फ्रेंड हैं, पर सब अलग अलग अब जीवन में व्यस्त हो चुकी हैं।
0: हाँ वो तो सही है, लेकिन है ना फिर भी कभी कभी बातचीत होती है कि नहीं। आपको मतलब ऐसा लगता तो नहीं है, कमी तो नहीं लगती कि है ना दोस्त होना चाहिए।
1: नहीं, होना तो चाहिए मैम, बट ये है कि उनसे बातचीत हो जाती, किसी का नंबर नहीं है, किसी काफी दूर पहुंच चुके, ऐसे है, किसी किसी का नंबर है तो उनसे बात हो जाती है।
0: तो आप ये मानती हैं कि जिंदगी में दोस्त का होना जरूरी है या
1: नहीं
0: नहीं,
1: मैम, होना चाहिए, बहुत जरूरी होता है वो भी।
0: है ना।
1: अभी आपने जो कार्यक्रम करा था पंखुड़िया, उसमें जो आपने चिट्ठियों के ऊपर कार्यक्रम करा था,
0: जी जी
1: बहुत बढ़िया लगा था मैम वो भी।
0: चलिए, मतलब रेडियो भी आपका एक दोस्त की ही भूमिका निभाता
1: नहीं मैम, हम 9वीं क्लास में थी तब से
0: हाँ।
1: विविध भारती सुनती आ रही थी, बीच में किसी कारणवश नहीं सुन पाई, एफएम खराब हो गया, सब उलझ रही थी, फिर ठीक है, फिर मैंने वापस से मंगवाया, अब मैं वापस से सुनना चालू कराया मैंने।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए राधिका जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। कॉल
1: जी
0: करने
1: मैम,
0: के लिए धन्यवाद।
1: जी मैम।

0: श्रोताओ, इसी के साथ हमारा कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे यही संपन्न हुआ। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। अब अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम से अपनी रेडियो सखी कविता रावत को नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 कल से प्रारंभ होगा, जो अगले साल 8 जनवरी तक चलेगा। प्रत्येक सप्ताह के पांचवें दिन यानी शुक्रवार को अभियान संचालित होगा। आम जनता की शिकायतों के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से ये अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति राजधानी भोपाल में आयोजित 4 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक में आज दूसरे दिन अधिकारी स्तर पर नीतिगत प्रारूपों और विभिन्न विषयों पर चर्चा हो रही है। ब्रिक्स बैठक के साथ ही यहां भारत की समुद्री विरासत, ज्ञान परंपरा और वैश्विक सांस्कृतिक सहयोग को प्रदर्शित करने वाली 3 प्रदर्शनियां प्रोजेक्ट मौसम, वृहत्तर भारत और ज्ञान भारत लगाई गई हैं, जो 7 और 9 अगस्त को नागरिकों के लिए भी खुली रहेंगी। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। प्रदेशवासियों से तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर पोर्टल पर अपलोड करने और अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को अब भारतीय रिजर्व बैंक की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के माध्यम से राशन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के भोपाल और इंदौर जिले का चयन किया गया है। दिसंबर 2026 तक सभी उचित मूल्य दुकानों पर इसे लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार प्रदेश में नया सिस्टम बनने से अधिकांश जिलों में कल बारिश होगी, कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की भी संभावना है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है आपकी पसंद के गीतों से सजा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत, जो है फिल्म बालिका वधू से। आवाज अमित कुमार की है, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया है आरडी बर्मन ने। पसंद आप सभी श्रोताओं की। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप और अनिल शर्मा की। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज की। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म बालिका वधू का ये गीत।

रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी, आप सभी ने सुनना चाहा है अमित कुमार की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा गीत, जिसे संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने। फिल्म का नाम है तेरी कसम। लीजिए सुनिए।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये वादा रहा, इस फिल्म का गीत सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। गुलशन बावरा के बोल हैं, संगीत है आरडी बर्मन का और पसंद आप सभी श्रोताओं की। यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से, दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान, जितेंद्र और धर्मेंद्र मालाकार की। कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली की।

साहिर का लिखा, खयाम का संगीत से सजाया हुआ गीत सुनिए, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है त्रिशूल। पसंद आप सभी की है। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, किरण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता की। सनावत से राजकुमार बोडाना, रानू लक्ष्मी और यश कुमार बोडाना की।

0: अरे ओ सनम हम दोनों साथ रहे।
1: कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए फिल्म सागर का गीत किशोर कुमार की आवाज में। बोल जावेद अख्तर के हैं, संगीत है आरडी बर्मन का। पसंद आप सभी श्रोताओं की। छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री की। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और बेबी आरजू जाजौरिया की।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
3: काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे,
7: RBI कहता है।
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: चलो दीदी झूला झूलते हैं।
10: हाँ हाँ क्यों नहीं,
9: और झूलते झूलते सुनते हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर। अरे दीदी धीरे धीरे।
11: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
12: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
13: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
12: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
14: आकाशवाणी इंदौर।
13: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
15: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
16: क्या?
15: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
16: वो कैसे?
15: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
16: और सुनेंगे कैसे?
15: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
3: सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दिन के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक कामिनी काय कांतारे की 22वीं कड़ी।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 22वां भाग। अब तक आपने सुना कि इंद्रजालिक अपने जादू का प्रदर्शन करता है, जिसमें वो राजा भर्तृहरि को औघड़ द्वारा गुरु की शरण में जाने की शिक्षा देता है। राजा भर्तृहरि की बहन रानी मैनावती पंजरा को समूल नष्ट करने की चेतावनी देती है। अब आगे

0: राजा भर्थरी फिर निकल गए हैं बिना किसी को कुछ कहे बताए। कहां किस ओर ज्ञात नहीं। उस रात वो रानी पिंगला के शयन कक्ष में थे। रानी पिंगला केवल ये बता पा रही हैं कि वो नींद में बीच बीच में बुदबुदा उठते थे। अस्पष्ट से स्वर रावण पाणिनि त्रिकुट चंद्राचार्य परंपरा शब्द गुरु वो चौंक कर अलग अलग कहते हुए जाग भी जाते थे। चतुर्मास के कारण मैनावती बंगाल लौटकर नहीं जा सकी थी। अवंती से बंग तक जाना यूं भी सरल नहीं है। मार्ग में इतने नदी नद वन पर्वत कि कोई साधु सन्यासी रमते रमाते लंबा पथ पार कर पाता है या कोई समर्थ सुसज्जित सार्थवाही ही। फिर अवंती में ये नई समस्याएं, राजा का अज्ञातवास पर अचानक निकल जाना, भैरव की चेतावनी, प्रेतनी पंजरा का प्रतिशोध। मैनावती कुमार विक्रम की उद्दंडता को लेकर भी चिंतित थी, लेकिन सबसे पहले पंजरा और उसका आसन्न संकट।
1: नखला मेखला।
2: हाँ माँ आई। किसी चिंता में है माँ?
3: हमें शीघ्र ही भैरव शमशान पहुंचना है। आज पंजरा को मुक्ति देने की रात है। कृष्ण चतुर्दशी की रात, तुम सन्नत हो ना?
2: हाँ माँ।
3: हमने उसका भ्रम जाल प्रेतपुरी में छिन्न भिन्न कर दिया था, लेकिन वो बचकर निकल गई और फिर हमें चुनौती दे रही है, हमें।
4: ठीक है दीदी माँ, हम तैयार हैं, हमें क्या करना होगा?
3: अपना सामान तैयार रखो। मेखला, तुम एक सती होने वाली स्त्री का रूप धर लो। सरसों सिंदूर जौ उड़द ये सब सामग्री साथ में होनी चाहिए, पंजरा के हरेक जादू की काट के लिए।
4: अरे महामात भी पधार रहे हैं, प्रणाम देव।
3: पित्री, ये युवक?
5: ये उससे भी अधिक हैं जिन्हें तुमने चाहा था राजपुत्री। मेरे उतने ही विश्वस्त जितने मेरे शरीर के अंग, बलिष्ठ निर्भय और साहसी। ये जीवक हैं और ये हैं अनिरुद्ध।
6: आदेश पालन में तत्पर हूं देवी।
7: आज्ञा की प्रतीक्षा है देवी।
3: ठीक है।

0: धरित्री, अब ये मेरे साथ ही रहेंगे।
1: महाकाल मंगल करें।
0: तुम दोनों में से कौन दूसरे को अपनी पीठ पर आधा कोस लाद सकता है?
2: जिसे आप आज्ञा दें।
0: अच्छा मेखला, तुम अपना मृत पति चुन लो इनमें से, जीवक या अनिरुद्ध।
3: दीदी माँ, मैं समझी नहीं।
0: यह अनिरुद्ध एक शव के रूप में होगा और जीवक उसे शमशान तक कंधे पर पहुंचाएगा। हमारा मार्ग बीहड़ों से होकर निर्जन, भयावह और कठिन है। इकला दुकला आदमी यहाँ से होकर नहीं गुजरता। व्याघ्रादि हिंसक पशु तो हैं ही, आघोरी, कापालिक, योगी, भैरवियों को भी ये जन शून्य एकांत प्रिय है। जीवक और अनिरुद्ध
4: जी, जी देवी,
0: हमें महाभैरव क्षेत्र तक सूर्य अस्त से 2 घड़ी पहले तक पहुंच जाना है। शीघ्रता पूर्वक चलने में तुम्हें कष्ट तो होगा, तुम अपनी गति बढ़ा सकते हो?
4: अवश्य ही आर्य, जन से ही सेवा कार्य में रहा हूं, एक धावन में योजन भर जा सकता हूं। अनिरुद्ध वनवासी कृषक है, निरंतर भागते रहने का अभ्यस्त। हाँ, इन देवियों को अवश्य कठिनाई होगी।
0: इनकी चिंता मत करो जीवक, इन्हें आकाश में उड़ने की सिद्धि प्राप्त है, पल भर में जा पहुंचेंगी। कुछ दूर जाकर तुम अनिरुद्ध को पीठ पर या कंधे पर ले लोगे, जैसे कि वो एक शव हो। मेखला ऐसा अभिनय करेगी कि वो सती होने जा रही है। हमें किसी जलती हुई चिता के पास रुकना है, मेखला तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। यहां से हमें सतर्क सावधान रहना है, संभवतः पंजरा के मायावी श्वान घूम रहे हों।

0: शमशान के निकट पहुंचकर मैनावती ने एक पेड़ पर चढ़कर आसपास का निरीक्षण किया। करील, करौंदा, बेर की झाड़ियों में फंसे श्वेत नील रक्त पीत प्रेत पटों के टुकड़े फरफराकर विचित्र सी ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। एक ओर अर्थी के बांसों का ढेर पड़ा था, अस्थियां, टूटे फूटे मृदभांड, सिंदूर, रोली, कपाल पात्र यत्र तत्र बिखरे हुए हैं। ये एक संयोग है कि निकटवर्ती गांव से अभी अभी एक शव दाह के लिए यहाँ पहुंचा है। लोक विश्रति है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को कोई मृत देह चिता पर सजने के लिए यहाँ अवश्य आती है। शव के साथ आए हुए ग्रामीण दाह संस्कार की तैयारियों में जुट गए। उनके साथ पीछे पीछे चले आए ग्राम श्वान यहाँ वहाँ बैठ गए। सूर्यास्त के साथ ही मेखला एक ऊंचे बरगद की जटाओं पर चढ़कर जा बैठी। अब वो चिता के बहुत पास थी। नखला एक झुरमुट में छिपी हुई थी। अनिरुद्ध और जीवक भी वहीं थे। शवदाह के पश्चात ग्रामीण जन शमशान से लौट गए। शमशान पाल भी मृतक के वस्त्र अन्न पात्र आदि लेकर वहां से निकल गया। पीछे छूट गई जलती हुई चिता, उसकी चटकती हुई ज्वालाएं, टूटती हुई हड्डियां और हवा की साए साए, बियावान में गूंजते श्रृंगालों के रुदन करते स्वर।
1: जीवक और अनिरुद्ध, घड़ी आ पहुंची है, सावधान होकर देखना, पंजरा दक्षिण दिशा से अभी यहां पहुंचेगी।
2: मैं उसका आह्वान करती हूं।
3: लगता है वो आ रही है।
4: वही है अतीव सुंदरी।

0: सुंदरी के स्थान पर हड्डियों का एक पिंजर मात्र? अविश्वसनीय दृश्य। एक पिंजर चिता पर जल रहे शव की परिक्रमा कर रहा है। अरे ये क्या, चिता पर लेटा हुआ शव भी जैसे उठने का प्रयास कर रहा हो? जीवक बंधु, चिता में हलचल हो रही है। लहराती हुई लपटे, टूट टूट कर गिरती हुई लकड़ियां और
1: वो देखो, एक हाथ बाहर और पंजर कुछ चिता में फेंक रहा है
0: और शव उठकर बैठ गया है।
1: धीरे बोलो।
2: बता बता, राजा भर्तृहरि कहाँ है?
3: शव कहता है कि इस समय राजा महिष्मति के मार्ग पर सूनी झोपड़ी में विश्राम कर रहा है।
2: अकेला है क्या?
3: शव कहता है कि एक भैरव उसके पीछे दिखाई दे रहा है।
2: वज्र भैरव, तुझे भी देख लूंगी, एक भी बाधा रहने नहीं दूंगी अपने मार्ग की। दुर्घट, निकट ही कहीं से जीवित मनुष्य की गंध मिल रही है। कौन है यह भागा? दुर्घट, अपना आवरण अलग करो, देखो देखो कौन वहां है।
1: मायावी मोर अब मनुष्य बन गया है।
0: मनुष्य नहीं, मनुष्य की काया में प्रेत।
2: दुर्घट, जरा जाकर देखो, आज प्रेत राज हम पर प्रसन्न प्रतीत होते हैं। हमें स्वतः ही महामास का भोग मिलने वाला है। उधर झोपड़ी में कुछ शव आच्छादन पड़े होंगे, उनमें से एक को ले आओ ताकि मैं अपने पंजर को छुपा लूं।
4: उधर एक भैरवी बैठी है पंजरा, कहीं उलझ गई तो? आओ,
2: कुछ नहीं होगा रे। भैरवी अपनी साधना में लीन है। जब तक ये भैरवियां साधना में होती है ना, इन्हें न तो कुछ दिखाई देता है न ही ये कुछ सुनती हैं। इनका निराला संसार होता है दुर्गत। तो है कोई आ रहा है।
4: आगे शिथिल पाओ और उदास गति से चलती हुई एक स्त्री है और उसके पीछे कंधे पर कुछ लादे आओ एक पुरुष, भूखते कुर्राते दो श्वान भी है, वो निकट आ पहुंचे हैं। आओ,
5: धीरे से देखो, इन्हें कोई हचका ना लगे, कष्ट ना हो।
6: देवी, अब ये संस्कार प्रातः ही हो सकेगा। झोपड़ी में अंधियारा है, वो वहां नहीं है। वो होता तो काष्ठ और उपलों के जलावन की व्यवस्था कर देता। विवशता है, हमें प्रतीक्षा करनी होगी। आप चाहें तो अपने पति के पास बैठे, मैं इधर बैठकर इस तुम्बी के सहारे रात काटता हूँ, बहुत थक गया।
2: पुरुष, तुम कौन हो? ये स्त्री कौन है? और इस कुबेला में, इस बियावान शमशान में आने का कारण क्या है?
6: नहीं जानता कि ये स्त्री कौन है। मैं पूछ चुका हूँ, हिचकियों और विलाप के बीच इतना ही जान सका कि ये स्त्री अपने पति के साथ सती होने के लिए शमशान आना चाहती थी। उसने मुझे दो स्वर्ण मुद्राएं दी और मैं उसके साथ यहां तक चला आया। यहां का शमशान पालक मेरा स्यालक है, वो भोर में आएगा। तब तक मैं इस मत को पीता रहकर उसकी प्रतीक्षा करूंगा। आपको कोई असुविधा तो नहीं होगी?

0: मत को साझा नहीं करेगा रे मुझसे।
1: संकोच में हूँ देवी, ये मदिरा झूठी है।
0: दुर्घट, दो मानव कपाल ला और भर ले। दुर्घट, क्यों न हम आज माया की अर्चना और अभ्यास को स्थगित कर दें? अरे कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तो हर महीने आती है, आज नहीं तो अगले महीने। महामांस और मदिरा का संयोग तो यदा कदा ही सुलभ होता है। इस स्त्री को सती होना ही है, क्यों न तू इसका उपभोग कर ले। और मेरे लिए ये स्वस्थ और बलिष्ठ मैं इसका उपभोग करूंगी। ला रे इन पात्रों को भर दे।
2: दुर्घट ने खोपड़ियों में एक बार फिर से मद्य भरा और पंजरा ने वो खाली कर दी। उन्मत्त होकर वो उठ खड़ी हुई और खड़ताल बजाते हुए नाचने लगी। खट खट कंकाल की हड्डियों की खड़खड़ाहट के साथ पंजरा की क्रूर हंसी वातावरण में गूंजने लगी। पंजरा खड़ताल बजाते हुए चिता की परिक्रमा कर रही थी। जीवक ने कौतुक से देखा कि जहां पहले एक सुंदरी थी उसकी जगह एक कंकाल दिखाई दे रहा था, लेकिन वो किसी भी आश्चर्य के लिए तैयार था। मैनावती ने उसे पहले ही चेता दिया था।
0: दुर्घट, मत दे, दे मत, मत।
2: नाचती हुई पंजरा को माया सर्प फन उठाकर अपलक देख रहा था। परिक्रमा कर रही पंजरा की दृष्टि अचानक उस शव पर टिक गई जिसे चिता के पास उतार दिया था। पंजरा को भान हुआ कि शव का वक्ष ऊपर नीचे हो रहा है। वो गौर से उसे देखने को झुकी। मैनावती ने बाज की भांति झपटते हुए पंजरा के खड़ताल वाले हाथ पर पूरी शक्ति से चिमटे से प्रहार किया। पंजरा की खड़ताल छूटकर दूर जा गिरी और साथ में कलाई से टूटकर पंजा भी।
0: मैना, मेरी खड़ताल दिलवा दे, नहीं तो मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगी। तू अब किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तेरा माया खड़ताल अब नखला के पास है। चिता में जलते हुए दुर्घट और पिछल तेरी शक्ति का अवशेष है जो अभी समाप्त हो जाएगा और सर्प का संस्कार भी यही होना है।
2: असाहे पंजरा ने चारों तरफ देखा और कटकटाकर अपनी झोली अपने ऊपर उलट ली। कुछ क्षणों में उसका कंकाल जलने लगा। पंजरा को जलते हुए देख दुर्घट ने भागने का प्रयत्न किया तो अनिरुद्ध ने कहा,
3: ठहर, भागता कहाँ है? ले, मैं तेरा सिर तलवार की एक वार से काट देता हूँ।
2: मैनावती तब तक अपना चिमटा उठाए सतर्कता पूर्वक चिता के पास ही खड़ी रही जब तक कंकाल राख में नहीं बदल गया। मेखला ने सर्प को एक खट में रखकर एक खप्पर से बंद कर रखा था।
4: मृतक को समर्पित आटे के उस पिंड से घड़े का मुंह बंद करके इसे इसी चिता में डाल दे।
3: बस अब वो दो श्वान ही बचे हैं।
4: बीहड़ के वृक और श्वान उन्हें संभाल लेंगे। आज भैरव यंत्र साधने का अवसर कदाचित महाभैरव ने ही मुझे उपलब्ध करवाया है। तुम लोग बारी बारी से निद्रा लेते रहना और इस अग्नि को सतत प्रज्वलित रखना।
2: पौ फटते ही मैनावती अपने आसन से खड़ी हुई और अपनी टोली को लेकर राजमहल पहुंची। उनके आने तक राजभवन में ये समाचार फैल गया।

0: था कि राजा भर्तृहरि फिर से किसी अज्ञातवास पर चले गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त की घंटा ध्वनि के साथ महाकाल को प्रणाम करके भर्तृहरि गैरिक वस्त्रों में सन्यासियों के एक दल के साथ हो लिए जो दक्षिण की ओर जा रहा था। इस दल में उन्हें कोई नहीं पहचानता था।
1: महात्मा, किस अखाड़े से हो?
2: अभी विधिवत दीक्षा नहीं हुई है महात्मन, अभ्यास में हूँ।
1: तब तो और भी अच्छा है, हमारे गुरु महाराज की शरण में आ जाओ।
2: महात्मन, आपके गुरुदेव के दर्शन सुखद होंगे मेरे लिए, कदाचित उनसे कुछ प्रश्नों के उत्तर मिल सके।
1: महात्मा, संसार के आवागमन से मुक्ति चाहते हो या अपने प्रश्नों के उत्तर?
2: संसार को जाने बिना इससे मुक्ति कैसे संभव है महात्मन?
1: तुम्हारा तर्क समझ से परे है।
2: सीधी सी बात है, गांठ को खोलने से पहले उसकी ग्रह को तो समझना ही पड़ता है ना महात्मन।
1: सत्य कहा तुमने साधक, पाने या त्यागने के लिए उस वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। अज्ञानी किसी ढोंगी को गुरु और प्रेत को भगवान समझ लेता है।
2: खोज, जिज्ञासा, प्रश्न, अलिखित अदृश्य को पाने की पिपासा, भर्तृहरि ये अनसुलझे सवाल, ये स्मृतियां कुहासे के बीच से उभरते हुए धूसर से चित्र, जाने क्यों आज भी पिंगला का रूप बार बार सबको पीछे धकेल कर सामने आ जाता है। अमर फल देखकर मैं उसके रूप को चिर बनाना चाहता था, क्या मैं अभी भी निर्ग्रंथी नहीं हो पाया? तुम्हें चिर यौवन बनाने की कामना, सदा तुम्हारे निकट बने रहने की चाहत थी मेरे पास, ये अब तक शेष है। बहुत दूर जाना चाहता था मैं पिंगला, तुमसे, तुम्हारे अस्तित्व से, तुम्हारी स्मृतियों से। मैं भागा, आश्चर्य की फिर अवंतिका लौट आया, क्या ये तुम्हारी ओर ही लौटना नहीं था पिंगला? मेरे लिए तुम इतनी आवश्यक क्यों हो? क्यों?
3: फिर भाग आया राजा?
2: मैं तो राज्य और रानी के रणक्षेत्र से भागा हूं भैरव, किंतु तुम्हारे यहां तक भागते चले आने का क्या प्रयोजन है?
3: तुम जानते हो भर्तृहरि, ये मेरे गुरु की आज्ञा है, अलख अलख गोरख। गोरख
2: कितने दिन का साथ रहेगा?
3: जब तक गुरु की इच्छा होगी। वैसे तुम जा कहां रहे हो राजा?
2: मैंने शब्द ब्रह्म के विषय में सुन रखा है, उसका रूप रंग गति और प्रभाव जानने को मन विकल हुआ है। सुना है शब्द ज्ञान की शिक्षा एक ब्रह्म राक्षस ने रावण से प्राप्त कर असुरों के गुरु चंद्राचारी को सौंपी थी। चंद्राचारी ने स्वयं इस विषय पर गहन चिंतन करके एक ग्रंथ का प्रणयन किया और दक्षिण में अपने शिष्यों को सौंप दिया। मैं उसी की खोज में निकल पड़ा हूं भैरव।
3: राजा, ज्ञान के लिए गुरु को धारण कर, धारण कर। गुरु विहीन नर है, गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होगा राजा।
2: तो गुरु से मेरी भेंट करा दो भैरव।
3: मैं तो केवल इतना कर सकता हूं कि जिस विद्या की खोज में तू निकला है उसका पता पूछकर तुझे बता दूं। तू दक्षिण दिशा में चलता रहे, चलता रहे, मैं तुझे इस तेरे मार्ग पर फिर कहीं मिलूंगा।
2: मुझे अपने साथ ले लो भैरव।
3: ये संभव नहीं है भर्तृहरि, गुरु की आज्ञा नहीं है, मेरा और तेरा साथ नहीं हो सकता रे। मैंने खग साधना की है, मैं पखे

0: की भांति व्योम में उड़ सकता हूं, जल राशि पर चल सकता हूं। तू अपने मन के घोड़े को सौध, बहुत चंचल लगता है ये।
1: भैरव, पिंगला की स्मृतियों से मन बेचैन रहता है, जहां भी जाऊं पीछा ही नहीं छूटता।
0: चारि पहर आलिंगन, निद्रा संसार नाई बिशिया भाई। कभी बाह गुरु गोरखनाथ पुकारे, मूल न हारो मारा भाई। हे राजा भर्तरी, चारों पहर नारी की आलिंगन और नींद में बिताता संसार विषयों में बहता चला जा रहा है। ए, गुरु गोरखनाथ अपनी बाह उठाकर चेतावनी देते हैं, मूल को मत हारो, अलख।

0: अभी आप महेश कटारी द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का 22वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार शीलू अस्थाना, मैनावती दिव्या पवार, महामात्य अरशद इकबाल, पंजरा कविता इसरानी, अनिरुद्ध देशबंधु शुक्ल, जीवक तनवीर अहमद, मेखला अनुराधा चतुर्वेदी, नखला शीलू मुजुमदार, जोगी मांगीलाल शर्मा, भर्तृहरि अरविंद बिलगैया, दुर्घट स्मित मेहता और सन्यासी दिनेश राय। परिकल्पना
1: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय के अंतर्गत धारावाहिक कामिनी काय कांतारे की 22वीं कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 12:58 हुए हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
2: पेश इस घंटे की खास खबरें। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 कल से प्रारंभ होगा, जो अगले साल 8 जनवरी तक चलेगा। प्रत्येक सप्ताह के 5वें दिन यानी शुक्रवार को अभियान संचालित होगा। आम जनता की शिकायतों के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। राजधानी भोपाल में आयोजित 4 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक में आज दूसरे दिन अधिकारी स्तर पर नीतिगत प्रारूपों और विभिन्न विषयों पर चर्चा हो रही है। ब्रिक्स बैठक के साथ ही यहां भारत की समुद्री विरासत, ज्ञान परंपरा और वैश्विक सांस्कृतिक सहयोग को प्रदर्शित करने वाली 3 प्रदर्शनियां प्रोजेक्ट मौसम, बृहत्तर भारत और ज्ञान भारत लगाई गई हैं, जो 7 और 9 अगस्त को नागरिकों के लिए भी खुली रहेंगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को अब भारतीय रिजर्व बैंक की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के माध्यम से राशन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के भोपाल और इंदौर का चयन किया गया है। दिसंबर 2026 तक सभी उचित मूल्य दुकानों पर लागू करने का लक्ष्य है। संस्कृति विभाग के अंतर्गत तुलसी शोध संस्थान द्वारा प्रतिष्ठित वरिष्ठ पत्रकार, लेखक एवं राष्ट्रचिंतक राम बहादुर राय को आज वर्ष 2026 के लिए पद्म भूषण युग तुलसी पंडित राम किंकर उपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार प्रदेश में नया सिस्टम बनने से प्रदेश के अधिकांश जिलों में कल बारिश होगी। कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। और कोयम्बटूर में चल रही जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी के सेमीफाइनल मुकाबले में आज मध्य प्रदेश का सामना झारखंड से होगा। प्रदेश की टीम कल दादर और नगर हवेली और दमन और दीव को 7-3 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबर।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। दोपहर का एक बज चुका है, लीजिए सुनिए महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा।

प्यारी सखियों, स्वागत है आपका आपके मनपसंद कार्यक्रम महिला सभा में। आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी सखी शिखा साहू। तो स्वीकारे बहुत प्यार और स्नेह के साथ मेरा नमस्कार। सखियों, हम अपने जीवन में ना अनेक रिश्तों से जुड़े हुए होते हैं। रिश्ता माँ बेटी का, पति पत्नी का, भाई बहन का, मित्र पड़ोसी और सहकर्मी का। हर रिश्ता अपने साथ अपनापन लेकर आता है, लेकिन उस अपनत्व को बनाए रखने का सबसे सशक्त माध्यम है सखियों आपका व्यवहार, आपकी बातचीत, आपका संवाद और संवाद का लहजा। इस बात से जुड़ी हुई किसी ने एक बड़े कमाल की बात कही है कि रिश्ते चेहरे से नहीं सखियो, व्यवहार से बनते हैं, और व्यवहार बदलते ही रिश्ते बदल जाते हैं। क्योंकि अच्छा व्यवहार जो है ना, वो अजनबी को भी अपना बना लेता है और बुरा व्यवहार अपनों को भी दूर कर देता है। कई बार ना हम ये मान लेते हैं कि सामने वाला बिना कहे ही हमारी भावनाओं को समझ जाएगा, लेकिन सच तो ये है मेरी प्यारी सखियों कि चुप्पियाँ अक्सर दूरियाँ पैदा कर देती हैं, जबकि बातचीत उन दूरियों को मिटा देती है। आपने देखा होगा कि एक छोटी सी गलतफहमी यदि समय रहते बातचीत से सुलझा ली जाए ना, तो वो कभी मनमुटाव नहीं बनती। लेकिन वही यदि हम अहंकार, गुस्से या फिर संकोच में चुप रह जाएं, तो वह छोटी सी बात रिश्तों में दरार डाल देती है। पर सखियों, एक बात यहाँ ध्यान ये देना है कि संवाद का अर्थ केवल बोलना नहीं होता है, बल्कि सामने वाले को मन से सुनना भी होता है। जब हम सामने वाले की बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं ना, तो उसकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, तभी उसी वक्त जन्म लेता है विश्वास। और जहाँ विश्वास होता है ना मेरी सखियों, वहाँ रिश्ते हर परीक्षा का मुकाबला कर जाते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम मोबाइल पर तो घंटों बात कर लेते हैं, लेकिन अपने घर में साथ रहने वालों से दो पल की बात का भी समय नहीं निकाल पाते। कभी कभी ना बच्चों को सिर्फ हमारी सलाह नहीं, हमारा साथ चाहिए होता है। बुजुर्गों को दवाई से ज़्यादा दो मीठे बोल चाहिए होते हैं, और जीवन साथी को महंगे उपहार से ज़्यादा यह एहसास चाहिए कि उसकी बात को कोई सुनने वाला भी है। तो थोड़ा समय अपनों के लिए जरूर निकालिए। कितनी भी शिकायतें क्यों ना हो सखियों, अपनी बात कहिए, प्रेम से कहिए। रिश्ते की डोर को प्यार के दो बोलों से मजबूत बनाइए, बहुत मजबूत बनाइए। एक बहुत प्यारा सा गीत यहाँ पर मैं आपको सुनवाऊंगी, लता मंगेशकर और कीर्ति कुमार की आवाज़ में। फिर आगे करते हैं और ढेर सारी बातें।

0: सखियो, ये बहुत खूबसूरत आवाज़ें लता जी और कीर्ति कुमार की, और ये खूबसूरत बोल हसरत जयपुरी के, और संगीत अनु मलिक साहब का, फिल्म का नाम राधा का संगम। चलिए अब करते हैं आगे। और सखियो, गर्भधारण जो है ना, एक स्त्री के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील समय होता है। इस दौरान उसे संतुलित आहार, नियमित स्वास्थ्य जांच के साथ साथ पर्याप्त आराम और परिवार के सहयोग की आवश्यकता भी होती है। अगर महिला कामकाजी है ना, तो उसे गर्भावस्था के दौरान अवकाश भी लेना पड़ता है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ सभी गर्भवती महिलाओं को अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि सखियो इस योजना में हर पात्र गर्भवती महिला को पहली संतान के जन्म पर 5,000 रुपयों की आर्थिक सहायता दी जाती है, और तथा दूसरा बच्चा होने पर 6,000 रुपयों की भी सहायता दी जाती है। ध्यान रखे सखियो, योजना का लाभ लेने के लिए गर्भावस्था का समय पर पंजीकरण, नियमित जांच और निर्धारित टीकाकरण करवाना आवश्यक है। आवेदन नजदीक के आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र या संबंधित पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। तो सखियो, आपके आसपास अगर कोई पात्र गर्भवती महिला है तो उसे इस योजना की जानकारी अवश्य दे, ताकि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से वह अपने और अपने आने वाले शिशु की पोषण जरूरतों की चिंता से मुक्त होकर अपने बच्चे को जन्म दे सके। तो ये जानकारी थी सखियो गर्भवती महिलाओं के लिए। अब चूंकि सखियो 1 अगस्त से 8 अगस्त तक संपूर्ण विश्व में मनाया जा रहा है स्तनपान सप्ताह। एक बच्चे के शारीरिक विकास में माँ का दूध सबसे अहम आहार होता है, और माँ अपने बच्चे को पौष्टिक दूध पिला सके उसके लिए ज़रूरी है माँ का स्वयं स्वस्थ होना, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से। तो शिशु के संपूर्ण स्वास्थ्य में स्तनपान का क्या महत्व होता है, आइए इस विषय पर आपको डॉक्टर नीरजा पुराणिक से हुई बातचीत सुनवाते हैं। सखियो, डॉक्टर नीरजा पुराणिक से बात की है हमारी सखी संयोगिता जोशी ने।
1: सखियो, अगस्त का ये महीना हर लहजे से हमारे लिए बहुत खास होता है। एक तरफ सामाजिक त्योहारों की धूम, दूसरी तरफ राष्ट्रीय त्योहार की धूम, और

0: सबसे जो खास होता है वो होता है पहला सप्ताह, यानी कि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक आप जानती हैं विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इस साल भी हमने कुछ खास किया है आपके लिए, हमने आमंत्रित किया है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीजा पौराणिक जी को। स्तनपान सप्ताह अभी चल रहा है, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, हमारे स्टूडियो में।
1: धन्यवाद, आपने मुझे याद किया, आपने मुझे बुलाया।
0: इतनी प्यारी सी आवाज एक माँ की हो सकती है सखियो, ये हम सभी जानते हैं। तो इसकी मुस्कुराहट के साथ हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे पहली बात हम डॉक्टर साहब से ये जानना चाहेंगे कि बच्चे के जन्म के बाद माँ का जो दूध है वो कब दिया जाना चाहिए?
1: जैसे ही बच्चा पैदा होता है वैसे ही हमें स्तनपान चालू कर देना चाहिए। फिर वो बच्चा सिजेरियन से है या नॉर्मल डिलीवरी है, कोई दोनों तरीके से हम कहते हैं कि बच्चे को तुरंत स्तनपान देना बहुत जरूरी है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों,
0: हम जानना चाहेंगे ऐसा क्यों।
1: बिल्कुल, तो शुरू में जो आने वाला एक बहुत बूंद बूंद तक आने वाला एक दूध होता है जिसको कि हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं, है ना, चीका जिसको कि हिंदी में हम बोलते हैं, वो बहुत ही ताकतवर होता है। उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स रहते हैं, एंजाइम्स रहते हैं और प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ाने की उसमें ताकत रहती है, और ऐसे बहुत कई चीजें हैं जो कि वह कोलोस्ट्रम के द्वारा हम माँ के द्वारा बच्चे को दिया जाता है। तुरंत स्तनपान इसलिए जरूरी है कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो उसके जो रिफ्लेक्सेस होते हैं जो वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, और ये रिफ्लेक्सेस कितनी देर तक रहते हैं, 45 मिनट से लेके मतलब 1 घंटे तक।
0: अच्छा,
1: और इस 1 घंटे का हमें उपयोग करना है। और इस 1 घंटे में अगर हम बच्चे को नहलाना धुलाना करेंगे, सफाई करेंगे, विटामिन के लगाना चालू कर देंगे, फिर उसके बाद वजन लेते हैं, नानी दादी को दिखाना, बुआ को हाथ में देना, और कई लोग तो शहद भी चटाते हैं, ये बहुत गलत चीज है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है वैसे उसकी नाल को, कई लोग तो नाल भी नहीं काटते और सीधे माँ की छाती पर रख देते हैं। इन बच्चों को जिनको तुरंत स्तनपान मिला है माँ का, वो आगे चलकर जो उनका वजन कम होता है वो वजन भी इनका थोड़ा कम तीव्रता से कम होता है, तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की तीव्रता भी इन बच्चों में कम होती है। और जो ये कोलोस्ट्रम होता है, जो चीका होता है, उसमें ऐसी ताकत होती है जैसे जुलाब की, तो वो बच्चे के इंटेस्टाइन में जाके आंतों पे जाके उसका पेट साफ करने की ताकत उसमें रहती है, तो एकदम बच्चे का पेट साफ हो जाता है। माँ की छाती से लगकर उसको एक मानसिक सहारा या शारीरिक सहारा, उसका जो टेम्परेचर है, उसकी जो बॉडी का टेम्परेचर है, वो भी नॉर्मल हो जाता है।
0: हाँ, बहुत अच्छे से आपने समझाया। एक बात और दिमाग में आती है कि जब सिजेरियन ऑपरेशन से बच्चा हुआ है तो भी क्या माँ का दूध?
1: तो सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी में दोनों में कोई अंतर नहीं है, आपको तुरंत स्तनपान कराना ही है।
0: कई बार ये भ्रांति होती है कि माँ को लेट कर बच्चे को दूध नहीं देना है।
1: जैसे माँ अगर लेटे लेटे दूध पिला रही है तो आके डांटते हैं कि अरे तुम बैठ के नहीं पिला रही हो, ये सबसे बड़ी गलती है। बल्कि मेरा तो कहना है कि तक माँ को दर्द है, अगर बच्चा सिजेरियन से हुआ है तो पेट में के स्कार में बहुत दर्द होता है, नॉर्मल डिलीवरी में भी नीचे टांके आ रहे हैं, तो माँ को वो पेनफुल एपिजियोटमी जो नीचे के टांके हैं उस पर बैठना, या फिर सिजेरियन के स्कार के साथ आधी रात को 2 बजे जब बच्चा मांग रहा है तब बैठना इतना मुश्किल होता है कि उस दर्द के मारे उसके हॉर्मोन्स भी सारे कम हो जाते हैं और उसको जो दूध का प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाता है, और बच्चे को हाथ में लेना, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो शुरू के जो 1.25 महीने या कम से कम 1 हफ्ते तक तो माँ बच्चे को लेटकर ही दूध पिलाए तो वो सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। और ये बहुत ही भ्रांति है कि कान में दूध चला जाएगा और बच्चा दब जाएगा। माँ अगर बेहोश भी है तो भी उसको ये एहसास रहता है कि मेरा बच्चा मेरे पास में, वो कभी ऐसा नहीं होगा कि दबाएगी उसको।
0: अच्छा, एक बात और ये बताइए डॉक्टर साहब की कितनी उम्र तक ब्रेस्ट फीडिंग दे सकती है?
1: वैसे तो WHO का कहना है कि 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब 6 महीने तक बच्चे को ऊपर का पानी नहीं देना है, ऊपर का दूध नहीं देना है, शहद नहीं चटाना है, कोई फ्रूट जूस नहीं, चाय नहीं, कुछ भी नहीं देना है, केवल माँ का दूध देना है। और 6 महीने के बाद 2 साल

0: और 2 साल से ऊपर खाना
1: जो भी
0: पीना
1: आहार तय किया
0: आहार
1: गया है।
0: हाँ देना चालू करना है, और उसमें भी 1-1.5 साल तक तो नमक और शक्कर अगर नहीं दे बच्चे को
1: अच्छा।
0: तो वो बहुत अच्छी चीज रहती है, क्योंकि बच्चे की किडनी अभी इतनी ज्यादा विकसित नहीं हुई होती है।
1: अच्छा, डिमांड फीडिंग की जो बात होती है, मतलब कैसे पता चले कि बच्चा तक
0: हाँ,
1: होता ही
0: ये
1: है।
0: बहुत ही अच्छा, जैसे अपन ना हम ये कहते हैं कि बच्चे को रूमिंग इन कराओ, मतलब बच्चे को रूमिंग इन मतलब माँ के साथ चिपका के रखो, तो डिमांड फीडिंग बहुत अच्छे से हो पाती है कि जैसे ही बच्चा हिलने लगे, ये अर्ली क्यूज है, मतलब बहुत जल्दी वो पता लग जाता है माँ को कि अरे माँ मुंह में हाथ डाल रहे हैं, मतलब कि इसको चाहिए। और फिर उसके बाद थोड़ा कम धीमी आवाज में रोता है, और फिर उसके बाद तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है, तो वो लेट क्यूज हुए। तो अर्ली क्यूज में माँ को पता लगना चाहिए कि अरे इसको बच्चे को दूध चाहिए या बच्चा मेरे चाहता है थोड़ा सा। तो कई बार क्या होता है कि बच्चा की बढ़त एक जैसी नहीं होती, कभी बढ़ रहा है, फिर उसके बाद उसकी ग्रोथ रुकी, फिर बढ़ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि वो क्लस्टर फीडिंग करता है, क्लस्टर फीडिंग मतलब बार बार मांग रहा है, हर 15 मिनट में मांग रहा है, तो लगता है कि अरे अभी तो मैंने पिलाया था, इसको फिर से कैसे पिलाना है। तो ये क्लस्टर फीडिंग बहुत नॉर्मल चीज है, और अच्छा बार बार मांग रहा है तो उसको बार बार दीजिए, इसको डिमांड फीडिंग कहते हैं।
1: जी जी।
0: घड़ी देखकर आपको बिल्कुल दूध नहीं पिलाना है कि अरे मैंने दो घंटे में पिलाना है, तो ये 2 घंटे पहले क्यों मांग रहा है। तो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद 15 मिनट बाद हम पानी पीते हैं, है ना, तो बच्चा पानी मांग रहा है, तो अभी तो आप पानी भी आप हो, सौंफ भी आप हो, हर चीज माँ ही है, तो आपको ये डिमांड फीडिंग है।
1: अच्छा, एक बात और है कि अगर मान लीजिए बच्चा स्तनपान कर रहा है, उस दौरान ही मतलब प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है महिला,
0: अरे वाह ये बहुत तो, अच्छा हाँ सवाल है
1: तो स्तनपान कराती
0: बहुत बार
1: क्या
0: ऐसा, बहुत बार ऐसा होता है 6 महीने के अंदर अंदर ही सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान हो गई है, या 9 मंथ्स के अंदर। तो ऐसे में आप प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान भी दूध पिलाना आपको जारी रखना है, और जब ये बच्चा हो जाएगा तब हम तो इसको टेंडम फीडिंग कहते हैं कि
1: अच्छा।
0: दोनों बच्चे एक साथ पी सकते हैं, बड़ा वाला बच्चा जो अभी 2 साल का ही है तो उसको भी आप पिलाते रहो, और ये छोटे बच्चे को भी जो अभी नवजात शिशु है उसको भी पिलाना है। तो बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने,
1: दोहरा सुखद अनुभव,
0: अरे वाह
1: प्राप्त कर सकती है,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अच्छा, एक बात और कि बच्चे को पर्याप्त दूध मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये कैसे समझ में आए?
0: कई लोग बोलते अरे ये रो रहा है, मतलब कि इसको दूध नहीं, अरे उसने पेशाब कर ली होगी,
1: गतिविधियां चेंज होती है बच्चे की,
0: मच्छर काट खाया, उसको ज्यादा टाइट कपड़े पहना दिए, कई चीजें होती है, और उसको कई बच्चे क्रैंकी होते हैं, उस माँ की गोदी चाहिए। रोना कोई क्राइटेरिया नहीं है कि बच्चे को दूध कम मिल रहा है, बच्चा अगर दिन भर में 5 बार पेशाब कर रहा है मतलब कि माँ को दूध बहुत अच्छे से आ रहा है। और पहले दिन तो पहले 48 घंटे में तो वो 1 बार भी पेशाब नहीं करता, और फिर उसके बाद तीसरे चौथे दिन से वो उसकी आप पेशाब काउंट करके और बता सकते हैं, अगर 5 बार पेशाब किए 4 बार करिए मतलब कि उसको बहुत अच्छे से दूध मिल रहा है।
1: एक बात और मेरे जहन में आ रही है डॉक्टर साहब, कि अगर जुड़वा बच्चे हैं तो उनके मतलब पेट भरने की जो पूर्ति है वो किस तरह से हो सकती है?
0: ऊपर वाले ने प्रकृति ने इतनी सुंदर फिजियोलॉजी की है, इतना बार बच्चा सक करेगा ना उतना ज्यादा दूध प्रोड्यूस होगा, अगर
1: जी।
0: दो बच्चे ज्यादा कर रहे हैं तो उसका प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि दो बच्चे हैं तो हमको बॉटल से एक एक बार रात को 1 बार पिला दो चलो, ये बहुत ही गलत चीज है। बार बार दूध पिलाने से दूध की मात्रा बढ़ती है, और दो बच्चे पी रहे हैं तो उसका उसी मात्रा में दूध आता है। और एक और जुड़वा बच्चों के बारे में कहती हूँ कि जब आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं एक जैसे दिखते हैं, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो क्रैंकी होते हैं, बार बार उसको माँ पिला देती है, और दूसरा बच्चा शांत है तो उसको पिलाती ही नहीं है। तो जुड़वा बच्चों में हम बोलते हैं कि एक साथ दूध पिलाइए,
1: अच्छा
0: तो एक साथ उठेंगे, एक साथ उनका सारा कार्यक्रम चलेगा,
1: हाँ
0: और माँ को भी थोड़ा आराम मिलेगा।
1: जी जी। अच्छा, कई बार ये भी है कि रात में दूध बच्चे को ज्यादा ना दिया जाए
0: नहीं,
1: ताकि
0: नहीं,
1: उसका पेट खराब ना हो,
0: बल्कि ये होता है कि रात में प्रोलैक्टिन की मात्रा, जो दूध वाला हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन, उसकी मात्रा ज्यादा होती है, और अपन जैसी कामकाजी महिलाओं के लिए तो दूध रात को पिलाना बहुत ही अच्छी बात है।
1: जी, जी।
0: तो रात को दूध जरूर पिलाना चाहिए, और 6 महीने तक तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको आपका ही दूध पिलाना है,
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: फिर वो रात हो या दिन हो।
1: अच्छा, ये तो हुई स्तनपान की बात। हमारी कुछ सखियां ऐसी हैं किसी मजबूरी की

0: वजह से उनको बॉटल का सहारा लेना पड़ता है।
1: बॉटल तो बहुत ही गलत है। हमें जैसे कामकाजी महिलाओं के लिए हम बोलते हैं एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क आप करिए, आप अपने ब्रेस्ट में से मिल्क को एक्सप्रेस करिए और आप रख के जाइए घर के पीछे, जो भी उनकी देख रेख कर रहे हैं बच्चे को, तो कटोरी चम्मच से पिलाइए। बॉटल से तो एक बार पीना जब चालू करता है बच्चा, फिर वो जब महिला घर वापस आती है तो बच्चे को क्या निप्पल सकिंग की आदत हो जाती है, तो फिर वो बच्चा माँ की ब्रेस्ट को भी निप्पल समझ के सक करता है और उससे निप्पल में इंजरी होती है और माँ को बहुत दर्द होता है और इतना दर्द होता है कि फिर वो बोलती है कितने ही फायदे हो स्तनपान के, मुझे तो अब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना। तो ये बहुत गलत है। जैसे आपने पूतना का नाम सुना होगा तो ये बॉटल को हम लोग पूतना बोलते हैं, जो कि बच्चे को बीमार करने के लिए आई है, तो बॉटल से तो बिल्कुल भी नहीं देना है।
0: बिल्कुल, हमारी सखियां इस बात का ध्यान रखेंगी, चाहे कितनी भी मजबूरी हो, बॉटल को आप अपने बच्चे से दूर रखिए और खुद स्तनपान करवाएं। ये सुखद एहसास को, सुखद अनुभव को महसूस कीजिए। और जो सतर्कता डॉक्टर साहब ने अभी हमें बताई है, ध्यान रखने वाली जो बातें हैं, उन सबको ध्यान में रखकर एक बहुत अच्छी माँ होने का उदाहरण पेश कीजिए। विश्व स्तनपान सप्ताह पर डॉक्टर नीरजा पौराणिक से इतनी अच्छी जानकारी हमारी सखियों तक पहुंची। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: शिशु के संपूर्ण स्वास्थ्य में स्तनपान का महत्व, डॉक्टर नीरजा पौराणिक से हमारी सखी बात कर रही थी, संयोगिता जोशी। सखियों, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे गीत के साथ। गीत में आवाजें हैं सोनू निगम और श्रद्धा पंडित की।

सखियो, अभी हम सुन रहे थे संघर्ष फिल्म का ये गीत, और आपसे बात करना चाह रही थी मैं कि आज सुबह ही एक खबर पढ़ने में आई कि 40 पार की महिलाओं में सखियो ऑस्टियोपोरोसिस जो है ना, वो आजकल बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, और ये खबर हमें कतई अच्छी नहीं लगी। सखियो, इस तरह की परेशानी बढ़ती उम्र में महिलाओं को और परेशान कर देती है, क्योंकि इसी एज में

मेनोपॉज और उससे जुड़ी हुई परेशानियां भी हो रही हैं और उस पर हड्डियों का कमज़ोर हो जाना ये ठीक नहीं है, ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। सखियो जब इंसान की उम्र बढ़ती है ना तो हड्डियां भी बुढ़ाने लगती हैं और नाजुक हो जाती है, तब ऐसी भुरभुरी हुई हड्डियों में फ्रैक्चर की संभावनाएं बढ़ जाती है और इस बीमारी को ही ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। और हम महिलाएं ना जिन्हें आदत है अपना ध्यान न रखने की आसानी से इसका शिकार हो जाती है। तो सखियो हड्डियों का कमज़ोर होना आपको बता दूं कि कैल्शियम की कमी के कारण होता है, तो हमें कैल्शियम की पूर्ति करने वाली चीज़ों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। दूध, दूध से बनी हुई चीज़ें और फलों का उपयोग अपने नाश्ते और खाने में बहुत ज़्यादा मात्रा में कीजिए। पर यहाँ पर एक बात जानना बहुत ज़रूरी है सखियो, और वो ये कि सिर्फ कैल्शियम से बात नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे शरीर की कोशिकाएँ कैल्शियम का अवशोषण केवल विटामिन डी की उपस्थिति में ही करती है, और हम जानते हैं कि विटामिन डी जो है वो केवल धूप की उपस्थिति में ही हमारे शरीर के अंदर बनता है। तो सखियो आहार से तो हम विटामिन डी की कमी को कुछ हद तक पूरा कर सकते हैं, लेकिन एक समय के बाद है ना हमारा शरीर विटामिन डी को स्वयं नहीं बना पाता, इसलिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप विटामिन डी के सप्लीमेंट ले सकती हैं। 40 पार की उम्र में सखियो हड्डियों की मजबूती सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो एक बार कुछ ऐसे टेस्ट ज़रूर करवा लीजिए जो आपको निश्चिंत कर सके कि आपके शरीर में सब सही चल रहा है, और अगर कोई दिक्कत है तो अभी देर नहीं हुई है, सुधार संभव है। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत प्यारा सा गीत सुनवाती हूँ यहाँ पर आपको।

0: कविता कृष्णमूर्ति और मनहर उदास की आवाज में ये गीत था फिल्म सौदागर का। तो सखियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी डॉक्टर प्रीति छड़ीदार। तो अब अनुमति दीजिए अपनी दोस्त शिखा को, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: शंकर तिवारी, रेवा राम विश्वकर्मा और साथी, और दिनेश सिंह के गाए लोकगीत कजरी लोकगीत।

दिनेश सिंह के गाए कजरी गीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है सुगम संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे राजेश खरे के गाए गीत और भजन।

0: राजेश खरे के गाए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
4: क्या?
3: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
4: वो कैसे?
3: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: पर सुनेंगे कैसे?
3: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: चलो दीदी झूला झूलते हैं।
1: हाँ हाँ क्यों नहीं,
0: और झूलते झूलते सुनते हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर। अरे दीदी धीरे धीरे।
2: सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
3: इस समय आप हैं हमारे साथ।
4: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हमने लिया है वारिस फिल्म से। आवाजें लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की, वर्मा मलिक का गीत और उत्तम जगदीश का संगीत।

और अब सुनिए कयामत से कयामत तक फिल्म का ये नगमा, आवाज़ें अलका याग्निक और उदित नारायण की, मजरू सुल्तानपुरी का गीत और आनंद मिलिंद का संगीत।

0: अलका याग्निक और उदित नारायण के गाए इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:10 होने को है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। ब्रिक्स देशों के बीच आपसी सम्मान, आम सहमति और साझा उद्देश्यों के माध्यम से सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में चल रही ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक का आज दूसरा दिन है। पहले दिन ब्रिक्स सदस्यों देशों के प्रतिनिधियों ने संस्कृति क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ बनाने तथा साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श प्रारंभ किया। बैठक के दौरान भारत द्वारा कल्चर ट्रैक के अंतर्गत निर्धारित प्रमुख प्राथमिकताओं क्रिएटिव इकोनॉमी, सांस्कृतिक एवं रचनात्मक उद्योग, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण तथा संस्कृति आधारित सतत विकास पर प्रतिनिधिमंडलों ने अपने प्रारंभिक विचार प्रस्तुत किए। पेश एक रिपोर्ट।
1: भोपाल में चल रही तीसरी ब्रिक्स कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग के दूसरे और अंतिम दिन सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने संस्कृति मंत्रियों की प्रस्तावित घोषणा के दूसरे मसौदे पर चर्चा की। बैठक में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, पारंपरिक ज्ञान को आगे बढ़ाने, सांस्कृतिक धरोहर के डिजिटलीकरण और सतत विकास में संस्कृति की भूमिका जैसे विषयों पर विचार विमर्श हुआ। इसके अलावा सांस्कृतिक क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के जिम्मेदार उपयोग, सांस्कृतिक विविधता और बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण पर भी चर्चा की गई। आज शाम भोपाल के रविंद्र भवन में ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें कई सदस्य देश के कलाकार अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। विपिन कुमार मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से 50 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हुए हैं। नई दिल्ली में CII अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि वर्तमान में 19 लाख परिवारों का बिजली का बिल शून्य हो गया है। श्री जोशी ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए कमाए हैं। सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी सहभागिता की। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के हरित ऊर्जा विजन, स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में प्रदेश की उल्लेखनीय प्रगति एवं भविष्य की ऊर्जा रणनीति का प्रभावी प्रस्तुतीकरण किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा, पम्प्ड हाइड्रो ऊर्जा भंडारण और बायोमास संबंधी नीतियां लागू कर निवेश एवं नवाचार को नई गति दी है। प्रदेश में देश की सबसे सस्ती बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। प्रदेश में 27% अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से जुड़े मामले में आज जबलपुर उच्च न्यायालय की विशेष खंडपीठ में सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये मामला वर्ष 2019 से लंबित है और इससे राज्य की विभिन्न भर्तियों तथा हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ माना जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया कि सुनवाई के दौरान राज्य सरकार, OBC पक्ष और याचिकाकर्ताओं की ओर से विस्तृत तर्क प्रस्तुत किए गए। प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान अब तक सामान्य से काफी कम बारिश होने के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सूखे जैसे हालात बन गए हैं। अब तक प्रदेश में 16.3 इंच बारिश दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि तक 20 इंच बारिश होनी चाहिए थी, यानी प्रदेश में करीब 19% कम बारिश हुई है। बारिश की कमी का असर प्रदेश के 49 जिलों में देखने को मिल रहा है। केवल 6 जिलों में ही औसत से अधिक बारिश दर्ज की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत आगरमालवा जिले में भी कल से शिविर आयोजित होंगे। इसके तहत लोगों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाते हुए समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया जाएगा। विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर नर्मदापुरम जिले के विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभियान का उद्देश्य गर्भवती और धात्री माताओं को स्तनपान के महत्व तथा सही तरीके की जानकारी देना था। शिवपुरी में जिला स्तरीय पर्यटन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन कल प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में किया जाएगा। सिंगरौली जिले में सभी पेट्रोल एवं डीजल पंपों के आकस्मिक निरीक्षण के लिए अनुविभागीय स्तरीय विशेष जांच दल गठित किए गए हैं। छिंदवाड़ा में बिना परमिट, बिना फिटनेस के सड़क पर दौड़ रही आश्राम गुरुकुल की 5 बसें जब्त की गई हैं। शिकायतों पर परिवहन अमले ने यह कार्रवाई की है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:15 होने को है। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मौकी में होने वाले AHF एशिया कप के लिए 18

0: सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धरानीधरन तथा डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन दुखद हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
1: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमश 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
0: बाद में श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित हो गई है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 के लिए स्थगित की गई। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाया। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पर्वतीय और सीमावर्ती पर्यटन अवसंरचना से जुड़े प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि केंद्र ने राज्यों को प्रमुख साहसिक पर्यटन स्थलों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सलाह दी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायालयों में स्वीकृत पदों और रिक्तियों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य से मर्यादा बनाए रखने और प्रासंगिक विषयों पर ही बोलने की अपेक्षा की जाती है।
2: जब काउंसिल की बैठक चल रही हो, कोई भी इस प्रकार की अव्यवस्था, शोरगुल या किसी अन्य तरीके से इस अव्यवस्थित तरीके से बोलते समय किसी अन्य सदस्य के बीच में बाधा नहीं डालेगा।
0: विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 13वें दिन में प्रवेश कर गया है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपनी मांगों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच मानसून सत्र के पहले दिन झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। एक रिपोर्ट।
3: झारखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन भाजपा और एनडीए विधायकों ने जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग की। वहीं मंत्री चंद्रा लिंडा ने कहा कि इस मामले में सत्ता या विपक्ष नहीं बल्कि परीक्षा माफिया असली दोषी है। इस बीच मामले की जाँच कर रही सीआईडी ने रांची और लखनऊ से 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें टीडीपीएल कंपनी का अकाउंटेंट भी शामिल है। मामले में अब तक कुल 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। विवाद को सुलझाने के लिए सरकार की 4 मंत्रियों वाली उच्च स्तरीय कमेटी आज छात्रों के साथ वार्ता कर सकती है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से केंद्र सरकार के उस हलफनामे पर जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसमें कहा गया है कि नीट स्नातक परीक्षा को पेपर आधारित परीक्षा से कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं में डॉक्टर्स एसोसिएशन भी शामिल है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अगली सुनवाई 19 अगस्त को निर्धारित की है। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि वो नीट स्नातक परीक्षा को कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित करने पर विचार कर रही है, या तो एक चरण में या फिर संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य और उन्नत के समान 2 चरणों में। सरकार ने कहा कि उसने पेपर लीक और प्रणालीगत खामियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के संचालन में व्यापक सुधार किया है। पीठ ने कहा है कि वो सभी पहलुओं पर विचार करेगी और सभी पक्षों से अपने जवाब और सुझाव दाखिल करने के लिए कहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www

0: www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बंबई उच्च न्यायालय ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में आज दोषी ठहराया है। न्यायालय की गोवा बेंच की जस्टिस नीला गोखले और अमित जमसंदकर की खंडपीठ ने तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोषी पाया है। इनमें विश्वास या अधिकार के पद का दुरुपयोग कर दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और किसी महिला को निर्वस्त्र करने की नीयत से हमला करने से संबंधित धाराएं शामिल हैं। गोवा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अधिकतम सजा देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे एक कड़ा संदेश जाएगा कि ना का मतलब ना होता है। फैसले के बाद तेजपाल ने कहा कि वो उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने आशीष मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि पोत सुरक्षा का माहौल तेजी से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि साइबर खतरे, ड्रोन हमले, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, डिजिटल नेटवर्क, सूचना प्रणालियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को होने वाले जोखिमों ने समुद्री सुरक्षा को नया आयाम दिया है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पोत सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि बंदरगाह की सुरक्षा एक साझा राष्ट्रीय जिम्मेदारी है।
1: There is actionable recommendation to strengthen India's port security framework and make the proposed Bureau of Port Security a robust, responsive and future-ready institution. Let us work together for a safe maritime India, a strong maritime India and a viksit Bharat. Kyunki desh ki suraksha sarvopari hai aur hum desh ke liye जी रहा हूं और देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, दैट शुड बी द कमिटमेंट।
0: भाजपा सांसद तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग की माफी को भारतीय संसद की जीत बताया है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत में व्यापार करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को भारतीय कानून का पालन करना होगा।
2: ये जो जीत है ये भारत के कानून की जीत है, ये जीत भारत के संविधान की, ये जीत भारत के पार्लियामेंट की है और 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की ये ताकत दिखाता है कि भारत में जिसको भी व्यापार करना है उसको भारत का कानून मानना पड़ेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रादेशिक सेना पर बात की गई। बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने केरलम बाढ़, ओडिशा चक्रवात और हाल ही में असम में आई बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्य तथा जरूरतमंदों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने में प्रादेशिक सेना की भूमिका की सराहना की। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अब तक लाखों श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं।
3: अब तक 4,70,000 से ज्यादा यात्री पवित्र गुफा का दर्शन कर चुके हैं। हर दिन हजारों की तादाद में यात्री, जिनमें मर्द, औरतें, बच्चे वगैरह शामिल हैं, इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। फिलहाल यात्रा सिर्फ बालतल के रास्ते से ही जारी है क्योंकि पहलगाम रास्ते पर मरम्मत का काम चल रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए सुरक्षा बलों, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, प्रशासन और आम शहरियों की सराहना की है। याद रहे ये यात्रा 28 अगस्त को सम्पन्न होगी। से इश्फाक शाह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल तक मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है। भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर सड़क संपर्क टूट गया है, वहीं प्रमुख नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है।
4: प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल रात से जारी बारिश के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन से सड़कें बाधित हुई हैं। कुछ मैदानी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति भी देखी गई है। राज्य की प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ा है और कई गाढ़ गडेरे भी उफान पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को पूरी तरह सतर्कता बरतने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में नदी नालों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि
5: बरसात के लिए आज देहरादून, बागेश्वर और चमोली के लिए ऑरेंज अलर्ट है। बरसात लगातार चल रही है, कई जनपदों में हो रही है। और नदियों के जलस्तर की बात करें तो वर्तमान में अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, वाणगंगा, यमुना और शारदा का स्तर बढ़ रहा है।
4: इस बीच चारधाम यात्रा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जारी है और प्रशासन यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उधर ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 द्वार खुले हुए हैं।
6: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है, क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में बाढ़ का पानी कम हो रहा है। अभी जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 स्लुइस गेट खुले हुए हैं। पानी का स्तर घटने के बावजूद बाढ़ से प्रभावित लोगों की मुश्किलें बनी हुई है और सामान्य जीवन को बहाल करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। इस बीच कल रात से हो रही लगातार भारी बारिश ने राजधानी भुवनेश्वर में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर की कई सड़कों और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है, जिससे घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा है। हालांकि दक्षिणी और पश्चिमी उड़ीसा में बारिश कम होने की उम्मीद है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ के बाद स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने कहा है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्णाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संस्कृत के श्लोक को साझा करते हुए कहा कि जिसमें सभी प्रकार के श्रेष्ठ वनस्पतियों तथा औषधियां पैदा होती हैं, वो पृथ्वी माता विस्तृत और स्थिर हो। विद्या, शौर्य, सत्य, स्नेह आदि सद्गुणों से पालित पोषित कल्याणकारी और सुख साधनों को देने वाली मातृभूमि की हम सदैव सेवा करेंगे। भारतीय हॉकी ने 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन में होने वाले AHF जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। टीम में 2 खिलाड़ियों को विकल्प के तौर पर रखा गया है। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धारणीधर ने अंतिम दौर में जगह बना ली है। डिस्कस थ्रो खिलाड़ी अमानत कंबोज भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में सेंसेक्स में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 209 अंक बढ़कर 78,790 पर, जबकि निफ्टी 10 अंक गिरकर 24,635 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए और राज्यसभा की बैठक दोपहर 3:15 तक के लिए स्थगित। बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मौकी में होने वाले AHF एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय महिला टीम की घोषणा की और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धारणीधरन और डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश है, पूर्णिमा फिल्म के इस नगमे की जिसे आवाज दी है मुकेश ने, गुलजार का गीत है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता है महाराष्ट्र से बसंत जी हजारे, प्रमोद हजारे और परिवार के सदस्य, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री।

बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीवा, डल्लू अंसारी, दानिश अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए ये गीत।

भीगी पलकें। लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, एमजी हाशमत का गीत और जुगल किशोर का संगीत। इस गीत की फरमाइश भेजी है ग्राम पंचायत बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा, सारा गांव से सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा, सरोचो कमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा सालिया, सायमा खान, मुस्तफा खान, आफिया खान, राउ भाई, शहीद भाई, गांधीबाग अलकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं भीगी पलके फिल्म का ये नगमा।

कुछ कुछ होता है। लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा उदित नारायण, अलका याग्निक और मनप्रीत अख्तर की आवाज़ों में। समीर के लिखे गीत को सुरों में पिरोया है जतिन ललित ने। इस गीत की फरमाइश भेजी है खांजी पीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, अशरफ खान, नजीब खान, मंजू निम्मी और सत्यनारायण। बोरखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद, नेहा, दीपक, मयंक, चेतन, दीक्षा, कुश। और गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

पटेल नगर पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया। थाना रोड बक्सर से ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी सानवी। और गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जितिक विरक और मीका विरक। आप सबने सुनना चाहा है बेताब फिल्म का ये गीत, आवाज़ें लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की, आनंद बख्शी का गीत और राहुल देव वर्मन का संगीत।

थोड़ी सी बेवफाई। लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में, गुलजार का गीत और खय्याम का संगीत। इस गीत को पसंद किया है गौरी नगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या, करिश्मा कामले। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, गगन। छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरिंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा ने। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए कार्यक्रम का अंतिम नगमा।

0: इसके साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए अपनी रेडियो सखी कविता रावत को। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:58 हो चुके हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से 50 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हुए हैं। नई दिल्ली में CII अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि वर्तमान में 19 लाख परिवारों का बिजली का बिल शून्य हो गया है। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 कल से प्रारंभ होगा, जो अगले साल 8 जनवरी तक चलेगा। प्रत्येक सप्ताह के 5वें दिन यानी शुक्रवार को अभियान संचालित होगा। आम जनता की शिकायतों के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। राजधानी भोपाल में आयोजित 4 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक में आज दूसरे दिन अधिकारी स्तर पर नीतिगत प्रारूपों और विभिन्न विषयों पर चर्चा हो रही है। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। प्रदेशवासियों से तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर पोर्टल पर अपलोड करने और अभियानों को जन आंदोलन बनाने की अपील की गई है। प्रदेश में 27% अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से जुड़े मामले में आज जबलपुर उच्च न्यायालय की विशेष खंडपीठ में सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रदेश में मॉनसून सीजन के दौरान अब तक सामान्य से काफी कम बारिश हुई है। अब तक प्रदेश में 16.3 इंच बारिश दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि तक 20 इंच बारिश होनी चाहिए थी। और भारतीय हॉकी ने 30 अगस्त से 13 सितम्बर तक चीन में होने वाले AHF जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की। मिडफील्डर खेदम शेलेमा चानू टीम की कप्तानी करेंगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर 6:30 और 8:30। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 6:00। 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण होगा और क्षमा कीजिए 7:30 से आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। संसद समीक्षा 8:00 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित की जाएगी। 7:15 सुनिएगा कार्यक्रम सुर्खियों में। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 9:30। 10:00 आनंद लीजिएगा आपकी फरमाइश का। और 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनाएंगे देवव्रत चौधरी का सितार पर बजाया राग रागेश्री। ये थे शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम।

मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव 188.32 मीटर पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। युवा साथी सुने अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा युवा प्रोग्राम युवावाणी। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राज।
1: और मैं हूं श्रद्धा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है गुरुवार और आज हम लेकर आते हैं आपके लिए आज का खास प्रोग्राम गीतों भरी कहानी।
0: बिल्कुल श्रद्धा, गीतों भरी कहानी तो हम सुनाएंगे हमारे दोस्तों को। बाकी तुमने देखा होगा कि बाहर जो है बारिश का सीजन चल रहा है और बिल्कुल नुक्कड़ों पर बायपास पर भुट्टो की दुकानें लग गई हैं। तो जब मुझे ऐसा लगता है ना, जब बारिश का सीजन आता है और सावन जब आ जाता है तो खाने पीने के जो नेचुरल व्यंजन है वो बिल्कुल उभर के आ जाते हैं मार्केट में। तुम्हें क्या लगता है?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और पोहे तो वैसे इंदौर में सबको पसंद ही है, लेकिन बारिश के मौसम में ये पकोड़े, पोहे, जलेबी, आहा, इनको खाने का मजा ही अलग होता है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि युवा जितने होते हैं ना फास्ट फूड की ओर दौड़ जाते हैं, जो कि हम सभी के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक भी होता है। कई सारे ऐसे व्यंजन है जो चाइनीज है, पर उनके बजाय हम नेचुरल फूड्स की बात करें, कुछ जो फल है नेचुरल फल की बात करें जो सीजन में आते हैं, जैसे कई सारे फल हैं। अगर हम भुट्टे की भी कुछ व्यंजन बनाएं तो हमारे इंदौर में भुट्टे का किस भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो खैर, मालवा का अपना एक अंदाज होता है, दाल बाटी का अंदाज होता है, खान पान का एक अपना अनोखा ही अंदाज होता है। तो खैर, हम मालवा की सुनहरी यादों पर तो बात करेंगे ही करेंगे और गीतों भरी कहानी जरूर आपको सुनवाएंगे। बहरहाल उसके पहले हमारे आज के सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न पे बात कर लेते हैं साथियों। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सीहोर जिला किस शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है?
1: और दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है?
0: तो आप इन दोनों प्रश्नों को अंत तक खोज कर रखिए, हम अंत में इन दोनों प्रश्नों का सही उत्तर आपको देंगे। फिलहाल मौसम सुहावना हो चुका है, तो इस प्यारे से मौसम पे क्यों ना थोड़ा सा अंदाज मौसम वाला हो जाए।
1: नेकी और पूछ

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

0: दुनिया को युद्ध की भीषणता से रूबरू कराया। आज यानी 6 अगस्त को हम मना रहे हैं हिरोशिमा दिवस।
1: ये दिन केवल इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि मानवता के लिए एक ऐसी सीख है जो हमें शांति, सह अस्तित्व और जिम्मेदारी का संदेश देती है।
0: साथियों, 6 अगस्त 1945, 1945 की सुबह जापान के शहर हिरोशिमा पर दुनिया का पहला परमाणु बम गिराया गया। इस बम का नाम था लिटिल बॉय और कुछ ही क्षणों में पूरा शहर आग की लपटों में गिर गया। हजारों लोग तत्काल मारे गए और आने वाले वर्षों में विकिरण के कारण लाखों लोगों का जीवन प्रभावित रहा।
1: इस घटना के केवल 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर भी परमाणु बम गिराया गया। इन दोनों घटनाओं ने द्वितीय विश्व युद्ध के अंत का मार्ग तो प्रशस्त किया, लेकिन साथ ही दुनिया को ये भी दिखा दिया कि परमाणु हथियार कितने विनाशकारी हो सकते हैं।
0: साथियों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हिरोशिमा दिवस मनाया क्यों जाता है। हिरोशिमा दिवस का उद्देश्य किसी देश के प्रति द्वेष फैलाना कतई नहीं है, बल्कि दुनिया को ये याद दिलाना है कि युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिकों को उठाना पड़ता है।
1: ये दिन हमें प्रेरित करता है दोस्तों कि विवादों का समाधान बातचीत और कूटनीति से किया जाए, विश्व में शांति और सहयोग की भावना मजबूत हो। परमाणु हथियारों की होड़ पर नियंत्रण रखना बहुत ही जरूरी है और साथ ही आने वाली पीढ़ियों को युद्ध नहीं बल्कि विकास और मानवता की विरासत मिले।
0: साथियों, आज का युवा टेक्नोलॉजी, विज्ञान और नवाचार के युग में जी रहा है, लेकिन जितनी तेजी से विज्ञान आगे बढ़ रहा है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी हम सभी के कंधे पर आई है। युवाओं को यह समझना होगा कि विज्ञान का सही उपयोग मानव कल्याण के लिए होना चाहिए, ना कि विनाश के लिए।
1: शिक्षा, संवाद, धैर्य और आपसी सम्मान ही वो रास्ता है जो दुनिया को सुरक्षित बना सकता है। आज सोशल मीडिया के दौर में छोटी छोटी बातों पर नफरत फैलाना बहुत ही आसान हो गया है, लेकिन यदि युवा सकारात्मक सोच अपनाए, विविधता का सम्मान करें और शांति का संदेश फैलाए तो समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।
0: साथियों, अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई जगह देखा कि कई देशों के बीच संघर्ष चल रहा था। ऐसे में आम जन जो होते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान उनके घर, जीवन, स्वास्थ्य और सबसे जिम्मेदारी का जो उनका काम होता है, किसी भी परिवार का उजड़ना हो जाता है। तो अभी हम सभी ने हाल ही में कुछ ऐसे संघर्ष देखे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों के बीच, जब उनके घर उजड़े, कई सारा उनका सामान उजड़ा, और इन सब उजड़ने से उजड़ता है आम इंसान का एक अस्तित्व, जो कि हम इस समय बात कर रहे हैं कि युद्ध जो होता है एक आम नागरिक के लिए बिल्कुल सही नहीं होता है। तो जितने भी देश होते हैं वे अपने आपसी सुलह करके, आपस में परस्पर अपना सामंजस्य बैठा कर, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर योजनाएं होती हैं उनके बीच जो वार्तालाप होती है, उन सभी का समाधान निकाला जा सकता है। तुम क्या कहते हो श्रद्धा?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने राज, और युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, ये मेरा मानना है।
0: हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि हिरोशिमा जो है, हिरोशिमा पर ऐसा हमला हुआ तो अब हिरोशिमा कैसा है? आज हिरोशिमा पूरी तरह विकसित है साथियों और आधुनिक शहर बन चुका है। वहाँ स्थित हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क और एटॉमिक बॉम्ब डोम पूरी दुनिया को शांति का संदेश दे रहा है, और हर वर्ष 6 अगस्त को वहाँ हजारों लोग एकत्र होकर लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने इस त्रासदी में अपने प्राण गंवाए हैं।
1: दोस्तों, ये इस बात का प्रमाण है कि विनाश के बाद भी आशा, साहस और पुनर्निर्माण की शक्ति मानवता की सबसे बड़ी ताकत है।
0: हमारा देश भारत हमेशा विश्व शांति, अहिंसा और संवाद का समर्थक रहा है। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का जो मार्ग दिखाया है वो आज भी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का एक सही मार्ग है।
1: दोस्तों, भारत का मानना है कि वैश्विक समस्याओं का समाधान युद्ध नहीं बल्कि बातचीत, सहयोग और आपसी विश्वास से ही संभव है।
0: प्रिय श्रोताओं, हिरोशिमा दिवस पर हमें ये याद रखना चाहिए कि युद्ध कभी किसी की जीत का या हार का एक अहम विषय नहीं होता। जीत तब भी है जब इंसानियत सुरक्षित रहे और जब बच्चे मुस्कुराएं, जब शहर आबाद रहे और पूरी दुनिया में शांति हो और सब खुशहाल रहें, तो असल मायने में वही जीत है साथियों।
1: और राज, इससे हमें एक ये भी चीज़ सीखने को मिलती है कि हमें अपने जीवन में प्रेम, भाईचारे, दया और शांति के मूल्यों को अपनाना चाहिए ताकि हम एक बेहतर और सुरक्षित विश्व का निर्माण कर पाएं।

0: दोस्तों, जिंदगी में हम सभी को अपनी मंजिल जल्दी चाहिए होती है। कॉलेज खत्म हुआ नहीं कि अच्छी नौकरी चाहिए, काम शुरू किया नहीं कि सफलता चाहिए, और सोशल मीडिया पर कोई आगे बढ़ता हुआ दिख जाए तो हमें लगने लगता है कि हम पीछे रह गए।
1: पर दोस्तों, क्या हर अच्छी चीज तुरंत मिल जाती है? वो क्या एक बीज बोने के अगले ही कुछ दिनों में हमें पेड़ फल दे देता है?
0: बिल्कुल नहीं। कुछ सपनों को पूरा होने के लिए मेहनत के साथ साथ धैर्य की भी जरूरत होती है। दोस्तों, आज की हमारी गीतों भरी कहानी भी ऐसे ही एक युवा की है, जिसने कई बार हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन हर बार जिंदगी ने उससे बस इतना कहा कि रुको जरा, कहानी अभी बाकी है।
1: ये कहानी है 22 साल के आरव की। आरव ने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उसके मन में बचपन से एक सपना था, एक अच्छी कंपनी में डिजाइनर बनने का। वो घंटों नई चीजें बनाता, अपने काम को सुधारता और हर दिन अलग अलग कंपनियों को आवेदन पत्र करता रहता।
0: एक दिन उसके फोन पर एक बड़े शहर की प्रसिद्ध कंपनी से इंटरव्यू का संदेश आया। आरव की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने रात रात भर जागकर तैयारी की, अपने सभी डिजाइन दोबारा देखे, इंटरव्यू के सवाल पढ़े और पूरे आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू देने गया।
1: इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। सामने बैठे व्यक्ति ने भी कहा, आपका काम बहुत अच्छा है, हम जल्दी आपको जानकारी देंगे। आरव घर पे लौटा। अब हर बार फोन की घंटी बजती तो उसे लगता कि शायद कंपनी का एक फोन है। एक दिन बीता, दूसरा दिन और फिर एक पूरा सप्ताह।
0: आखिरकार एक ईमेल आया। आरव ने उत्साह से उसे खोला, लेकिन उसमें लिखा था कि हमें खेद है, इस पद के लिए किसी अन्य उम्मीदवार का चयन किया गया है।
1: उस एक संदेश ने आरव की सारी उम्मीदें तोड़ दी। उसने सोचा, इतने मेहनत के करने के बाद भी जब असफलता ही मिलनी है तो कोशिश करने का क्या ही फायदा।
0: लेकिन दोस्तों, कभी कभी एक बंद दरवाजा ये नहीं बताता कि हमारा सफर समाप्त हो गया है, वो केवल हमें किसी दूसरे रास्ते की ओर भेज रहा होता है।

0: दोस्तों, आप सुन रहे हैं युवाणी का स्पेशल सेगमेंट गीतों भरी कहानी, और आज की कहानी का शीर्षक है कहानी अभी बाकी है। दोस्तों, रिजेक्शन मिलने के बाद आरव कई दिनों तक उदास रहा। उसने अपना लैपटॉप तक खोलना बंद कर दिया। उसके मन में बार बार यही सवाल आता, क्या सच में मैं इस काम के लिए ये योग्य बिल्कुल नहीं था।
1: एक शाम आरव अपने पुराने शिक्षक से मिलने गया। शिक्षक ने उसकी परेशानी सुनी और उसे अपने घर के पीछे बने छोटे से बगीचे में ले गए। वहां मिट्टी से एक छोटा सा पौधा निकल रहा था। शिक्षक ने कहा, मैंने इस पौधे का बीज कई सप्ताह पहले लगाया था। हर दिन इसे पानी दिया, लेकिन कई दिनों तक मिट्टी के ऊपर कुछ भी दिखाई तक नहीं दिया।
0: आरव ने पूछा, फिर भी आप इसे पानी देते रहे? शिक्षक मुस्कुराए और बोले, हाँ, क्योंकि मिट्टी के ऊपर कुछ दिखाई भले ना दे, इसका मतलब ये नहीं है कि मिट्टी के अंदर कुछ हो नहीं रहा है। बीज अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है और अपना काम प्रकृति भी कर रही है।
1: ये बात आरव के दिल को छू गई। उसे समझ आया कि उसकी मेहनत भी बेकार नहीं जा रही। हो सकता है कि परिणाम अभी दिखाई न दे, लेकिन आगे आने वाले वक्त में अगर वो कोशिश करता रहेगा तो पहले से बेहतर बनता रहेगा। अब अगली सुबह उसने दोबारा अपना लैपटॉप खोला। उसने अपनी गलतियां देखी, नए डिजाइन बनाए और फिर से आवेदन करना शुरू किया। कई कंपनियों से जवाब नहीं आया, कुछ ने मना कर दिया, लेकिन इस बार आरव ने रुकना नहीं चुना।
0: साथियों, अब उसे समझ आ गया था कि धैर्य का मतलब चुपचाप रहना या इंतजार करना नहीं होता, बल्कि सही समय पर अपना काम निरंतर करते हुए, अपना काम बनाते रहते हुए और अपने काम में लगनशील बनते हुए, यही धैर्य की परिभाषा होती है।

0: दोस्तों, कहानी में आरव लगातार अपनी मेहनत कर रहा था। उसने खूब मेहनत की और लगभग 3 महीने बीत चुके थे। इस दौरान उसने अपने डिजाइन में कई बदलाव किए और ऑनलाइन प्रतिभागिताओं में भी भाग लेना शुरू किया। एक दिन उसने युवाओं के लिए आयोजित एक डिजाइन प्रतियोगिता में अपना काम भेजा। उसे जीतने की बहुत उम्मीद तो थी नहीं, लेकिन वो अब हर अवसर को ना सीखने का एक माध्यम समझने लगा था।
1: कुछ दिनों बाद सुबह सुबह आरव का फोन बजा। उस सामने से आवाज आई, क्या हम आरव से बात कर रहे हैं? आपके डिजाइन ने हमारे कंपटीशन में पहला स्थान प्राप्त किया है। आरव कुछ पल तक कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन असली आश्चर्य अभी बाकी था।
0: फोन करने वाले व्यक्ति ने आगे कहा, हम आपकी रचनात्मकता से बहुत प्रभावित हैं और आपको अपनी कंपनी में काम करने का अवसर देना चाहते हैं। ये वही कंपनी थी जिसमें काम करना आरव का सपना था, बल्कि पहले वाली कंपनी से भी बहुत बड़ी और बेहतर थी ये कंपनी।
1: आरव की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने तुरंत अपने शिक्षक को फोन किया और कहा, सर, उस दिन आपने सही कहा था, बीज मिट्टी के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है।
0: आरव समझ चुका था कि 3 महीने की असफलताएं उसे रोकने नहीं, बल्कि उस बड़े अवसर के लिए तैयार करने आई थी। कभी कभी हमें लगता है कि जिंदगी हमारी बात नहीं सुन रही है, लेकिन हो सकता है कि जिंदगी हमारे लिए कुछ ऐसा तैयार कर रही हो जिसके लिए हमें पहले थोड़ा मजबूत बनना जरूरी हो।
1: दोस्तों, धैर्य का मतलब ये नहीं होता कि हम केवल सही समय आने की प्रतीक्षा करते रहें।
0: बिल्कुल सही कहा दोस्तों, धैर्य का मतलब ये होता है कि मुश्किल समय में भी मेहनत करते रहना, खुद पर विश्वास रखना और ये याद रखना कि देर से मिलने वाली सफलता भी सफलता ही होती है।
1: दोस्तों, दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी गति पर सवाल मत उठाइए। हर व्यक्ति की यात्रा, उसकी परिस्थितियों, उसकी मंजिल बिल्कुल अलग अलग सी होती है।
0: घड़ी सभी की चलती है, लेकिन सभी का सही समय एक साथ नहीं आता। तो दोस्तों, जब भी आपको लगे कि आपकी मेहनत का

0: श्रद्धा, हमारे आकाशवाणी स्टूडियो के बाहर कितना सुहावना मौसम हो चुका है ना। ये रिमझिम बारिश, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और ठंडी हवा, ऐसा लग रहा है जैसे बादलों ने पूरे मालवा पर प्यारी सी कविता लिख दी हो।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और ऐसे मौसम में अगर घर पर बैठे रहे तो मौसम भी नाराज हो जाएगा। ये तो वक्त है बैग उठाने का, गाड़ी स्टार्ट करने का और निकल पड़ने का। इंदौर के आसपास की कितनी खूबसूरत वादियां हैं, वहां पर जाना चाहिए इस वक्त।
0: बिल्कुल, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं जाना पाव, बादलों से बातें करते, पहाड़ियां हरियाली और चादर चारों ओर, चाय और गरम गरम चाय की चुस्कियां और चारों ओर पहाड़ों का नजारा।
1: बिल्कुल, और तो और जाना पाव पर मैगी भी मिलती है, पता है तुम्हें। और उसके बाद हम रुख लेंगे पाताल पानी की तरफ या फिर टिंचा फॉल की तरफ, और बारिश में गिरता झरना मानो ऐसा लगता है ना जैसे प्रकृति अपनी ही धुन गुनगुना रही हो।
0: सही कहा तुमने। और सफर अधूरा है अगर रास्ते में भुट्टा या फिर गराड़ू, गर्मा गर्म पोहे, जलेबी या फिर दाल वाफले का स्वाद ना मिले तो।
1: ओए होए, तुमने खाने की बात कर दी।
0: मालवा में हम जो रहते हैं ना, इसलिए।
1: तो मतलब खाने के बिना तो हमारा सफर ही अधूरा है इंदौरियों का, या ये कह ले कि मालवा क्षेत्र में रहने वाले लोगों का सफर अधूरा है यदि इतना टेस्टी टेस्टी खाना ना खाया जाए। और मालवा की खूबसूरती सिर्फ उसकी वादियों में नहीं है, उसके स्वाद में भी बसती है।
0: सही कहा तुमने। अब इन सब बातों पे मुझे एक छोटी सी नज़्म याद आ रही है।
1: बिल्कुल फरमाओ।
0: कह दूं? बरसाती बूंदों ने पहाड़ों पर कुछ खामोश अल्फाज लिखे हैं। गौर फरमाइए। बरसाती बूंदों ने पहाड़ों पर कुछ खामोश अल्फाज लिखे हैं, जो ठहर कर पढ़ना ले इन्हें, वो सफर से नहीं खुद से मिले हैं।
1: अरे वाह। अच्छा चलो।

0: मेरी तरफ से भी
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हरियाली ने उड़ी है बारिश की चुनरिया, हरियाली ने उड़ी है बारिश की चुनरिया, झरनों ने छेड़ी है पानी की सरगम, चलो कहीं यूं ही निकल पड़े कि मंजिल से ज्यादा याद रहे ये मौसम।
1: तो इस वीकेंड मौसम बुला रहा है साथियों,
0: और साथ ही प्रकृति चीख चीख कर कह रही है कि आ जाओ और अपनी आंखों से मेरी सबसे सुंदर कविता, ये झरने, ये पहाड़, ये पेड़, ये पौधे, ये नदियाँ, ये सब देख कर जाओ।
1: तुमने एक बात नोटिस की है श्रद्धा, के जिसे जितने भी लेखक हुए हैं, कवि हुए हैं, उन सभी ने मौसम पर कितना कुछ लिखा हुआ है ना। जैसे हम कई सारे राइटर्स को उठाते हैं तो उनकी कविताएं, जो प्यारी प्यारी सी कविता है, उन्होंने रेल के बारे में लिखा है, उन्होंने पक्षियों के बारे में लिखा है, उन्होंने झरनों के बारे में लिखा है, उन्होंने रोडों के बारे में लिखा है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की और शहर की जो सड़कें होती हैं उनका क्या हाल होता है आप सभी को पता ही है, तो उनकी खूबसूरती पर लिखा है, गांव की पगडंडियों पर लिखा है। तो एक जो राइटर होता है ना, उसके मन में मतलब पूरा, अगर हम भारत के राइटर की बात करें तो पूरा देश, पूरा गांव, ग्रामीण शैली का पूरा जीवन उसके बिल्कुल हृदय में समाहित होता है।
0: बिल्कुल, और राइटर्स की खासियत ये होती है कि वो किसी भी चीज़ को अपने शब्दों की ताकत से इतना रोमांटिसाइज कर देते हैं कि चाहे कैसी भी चीज़ हो, चाहे कुछ भी समस्या हो, अगर वो उसे लिख दे तो वो इतनी प्यारी लगने लगती है, कानों में मिश्री घोल दे।
1: तो सबसे बढ़िया मुझे प्रकृति पर जो लिखना होता है ना, सबसे सुंदर लगता है, पक्षियों पर, पहाड़ियों पर, बादलों पर, झरनों पर, क्योंकि हर एक चीज की व्याख्या उस समय में हम सभी को मिल जाती है।
0: और सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारी प्रकृति है ये इतनी खूबसूरत है कि हमने कभी इससे खूबसूरत चीज कभी देखी ही नहीं, शायद इसीलिए हम जब तारीफें करते हैं तो हम प्रकृति की ही उपमा दी जाती है। हाँ। जैसे झील सी नीली आंखें,
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। खैर आज के इस सीजन में जो युवा होते हैं वो अक्सर जैसे ये चीज़ें बढ़ गई हैं जिंदगी में, गंदगी करना या फिर सड़क पर कुछ भी फेंक देना, तो हम सभी जब पर्यटन स्थल पर जाते हैं, ऐसी खूबसूरत वादियों में जरूर जाते हैं, तो हम सभी का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम जितनी भी वहाँ पर पिकनिक मनाने जाते हैं, पिकनिक स्पॉट्स पे जाते हैं, तो अपना खुद का ख्याल तो रखें ही रखें, इसके साथ साथ हम साफ सफाई का भी बिल्कुल विशेष रूप से ख्याल रखें, क्योंकि यही प्रकृति है जो हम सभी को खूबसूरती प्रदान करती है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने राज। और दोस्तों ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि यदि हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमें उस जगह को साफ सुथरा रखना पड़ेगा, ये हमारी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि वो जगह आपके आने से पहले जितनी खूबसूरत थी, ये आपका काम है कि आप जब उस जगह को छोड़कर जाए तब भी वो बिल्कुल वैसी ही हो, और हो सके तो आप अपनी तरफ से कुछ देकर जाइए, क्योंकि यहां से आप अपनी बहुत सारी यादें भी लेकर जा रहे हैं।
1: अब सोचो ना, अगर पेड़ ना हो, पक्षी ना हो, झरने ना हो और सुंदर सुंदर वादियां ना हो, तो फिर ये जीवन कैसे होगा।
0: बिल्कुल सही कहा, इसीलिए तो कहते हैं कि प्रकृति हमारी सबसे अच्छी दोस्त है।
1: सही कहा तुमने। तो बारिश का मजा लीजिए और सफर का जश्न मनाइए, और इंदौर के आसपास छिपी हर कविता को अपनी आंखों से पढ़ लीजिए साथियों।

0: तो साथियों, ये था आज का हमारा सुहावना सफर युवावाणी का। अब समय है आप सभी को आज के प्रश्नों के जवाब देने का। तो साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न था, मध्य प्रदेश का सीहोर जिला किस शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है? तो उसका सही उत्तर है, मध्य प्रदेश का सीहोर जिला लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है।
1: और दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न था कि चंबल नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? और इसका उत्तर है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की महू तहसील में स्थित जानापाव पहाड़ियों में है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आपने ढूंढ लिए होंगे और आज का कार्यक्रम आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। इसी के साथ अब वक्त है आपसे विदा लेने का। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त श्रद्धा।
0: साथियों, मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त राज।
1: नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: गजब। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और अब आपको सुनवा रहे हैं सीता और गीता। इस फिल्म का गीत आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज है। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, आर डी बर्मन का संगीत।
1: अरे अरे ए, ए, ए, ए, ए, ए।

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: कार्यक्रम का आखिरी गीत सबक फिल्म का है, सुमन कल्याणपुर की आवाज। गीत लिखा है सावन कुमार ने, उषा खन्ना का संगीत।

सबक इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर की आवाज में। गीत लिखा था सावन कुमार ने, उषा खन्ना का संगीत था। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोता मित्रों को मेरा यानी अजीत का नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से कुशल देव पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है, आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, शरीर ईश्वर की दी हुई सबसे अनमोल संपत्ति है। इसकी रक्षा धन से भी अधिक जरूरी है, क्योंकि बिगड़ी सेहत के आगे दौलत भी हार मान लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम चरौदा बार नवापारा अभारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर। अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। केंद्रपाड़ा ओडिशा से हमारे चिरपरिचित श्रोता देशदीप दास जी का संदेश हमें मिला है। और उसके साथ साथ संदेश भेजने वाले हैं कुटकुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आगे चलते हैं, अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे जी का। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी का। श्रोताओ, आप सबके संदेशों के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आज की चर्चा में। तो एक बहुत ही रोचक हमारी चर्चा होने वाली है, आइए करते हैं शुरुआत। श्रोताओं, एक प्रश्न कभी किसी ने मुझसे पूछा था कि बताइए अजीत जी, आखिरी बार आपने बिना काम के किस दोस्त से कब मुलाकात की? तो मैंने हंसते हुए उत्तर दिया था कि इतना कठिन सवाल ना पूछिए, बड़ी व्यस्त जिंदगी है, बिना काम के भला किसी से मिलने का समय कहां। जी हाँ श्रोताओं, यही तो समस्या है। लेकिन एक बात और है, लोग अक्सर कहते हैं हम तो हमेशा जुड़े रहते हैं। जी हाँ, लोगों का कहना भी ठीक है कि वो हमेशा जुड़े रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अब लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, वास्तविक जिंदगी

0: ने शायद नहीं के बराबर। तो श्रोताओं, आइए चलते हैं एक घर पर और देखते हैं एक दृश्य। दृश्य कुछ इस प्रकार से है, आप कल्पना करें। पिताजी मोबाइल पर अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी शॉपिंग ऐप देख रही हैं, बेटा गेम खेल रहा है, बेटी रील बना रही है, और बेचारे बुजुर्ग दादाजी सबको देख रहे हैं कि कोई कम से कम उनसे 2 मिनट बात तो कर ले। श्रोताओं, ये काल्पनिक दृश्य था, लेकिन क्या आपने खास बात पर गौर किया कि माता पिता, बेटा बेटी और दादाजी सब एक साथ एक ही घर में हैं, लेकिन उनके बीच में संवाद नहीं हो रहा है। अब लोग कहते हैं कि भाई समय ही नहीं मिलता। तो श्रोताओं, एक सवाल मैं अपने आप से पूछना चाहूंगा और आपसे भी कि 3 घंटे सोशल मीडिया के लिए हमें समय कैसे मिल जाता है? अब क्रिकेट का मैच तो पूरा पूरा देख ही लेते हैं, लेकिन आपस में 10 मिनट भी बात करने का हमारे पास समय नहीं है। और शायद यही कारण है कि आज समाज में तनाव भी है और बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी हो गई हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है श्रोताओं कि क्या किया जा सकता है। तो चलिए श्रोताओं, आज से ही एक प्रयोग करते हैं। आप पूछेंगे भला वो क्या? तो श्रोताओं, वो प्रयोग कुछ इस प्रकार से होगा कि चलिए आज ही समय निकालकर मोबाइल को आधे घंटे के लिए बंद कर देते हैं या साइलेंट कर देते हैं। आप पूछेंगे फिर क्या करें? तो मैं कहूंगा कि तो शुरुआत करते हैं अपने ही घर से। अपने माता पिता, दादा दादी या बच्चों के साथ बैठकर थोड़ा समय निकालते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कम से कम आधे घंटे से शुरुआत तो हो ही सकती है। फिर फोन को ऑन करते हैं। आप कहेंगे श्रोताओं, अभी आपने कहा फोन ऑफ करो और अब कहते हैं कि ऑन करते हैं, ये भला कैसी बात है? यही तो बात है श्रोताओं, फोन ऑन करके किसी ऐसे मित्र या रिश्तेदार या प्रियजन को फोन मिलाते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं। ध्यान रहे, इस समय आपको उनसे बात करनी है जिनसे लंबे समय से बात ही नहीं हुई। आप अपने घर के बुजुर्गों से भी बात कर सकते हैं जिनके शायद कई बार आपको या मुझे समय नहीं मिलता। खासतौर से श्रोताओं, मैं अपने विद्यार्थी श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि अपने बड़ों से बातचीत का समय जरूर निकालिए, उनके अनुभवों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। विश्वास करें श्रोताओं, जब आप फोन करेंगे तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी ना, और आपको जो खुशी मिलेगी, उसकी तुलना किसी और बात से हो ही नहीं सकती। तो आइए 5 आसान उपाय जानते हैं कि कैसे हम मोबाइल का सदुपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, रोज कम से कम 20 मिनट परिवार के साथ। दूसरी बात, भोजन के समय मोबाइल को दूर रखें। अक्सर होता यह है कि खाना भी खा रहे होते हैं और साथ में मोबाइल भी चल रहा होता है। नहीं, ऐसा ना करें, मोबाइल को खाने के समय बिल्कुल दूर रखें। तीसरी बात यह हो सकती है कि सप्ताह में एक दिन किसी रिश्तेदार या मित्र से मिलें या उससे बातचीत करें। और चौथी बात है, महीने में एक बार पूरे परिवार के साथ छोटी सी सैर या भोजन करने का कार्यक्रम बनाइए। याद रखिए, रिश्ते अपने आप नहीं चलते, उन्हें समय देना पड़ता है। जैसे हम रोज मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं ना, उसी तरह। जी, उसी प्रकार रिश्तों की बैटरी को भी प्यार, समय और अपनेपन से चार्ज करना पड़ता है। तो एक काम करें, आज ही अपने किसी को समय दीजिए। डिजिटल दुनिया में रहते हुए भी मानवीय रिश्तों को जिंदा रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ। तो श्रोताओं, हमें आशा है कि आपको हमारी बातचीत जरूर पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ करने को, आज के व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी सी कविता लिखें। विषय एक बार फिर से सुन लें, आज के व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी कविता लिखें। भेज दीजिए अपना लघु लेख या कविता हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और जी, आप हमारे ईमेल यानी audio@ceiet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं। श्रोताओं, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो YouTube में जाइए, टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहां सर्च के लिए विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पुस्तकों को डाउनलोड कीजिए। एक और जरूरी सूचना आपको दे दें श्रोताओं, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां भी अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं। जी, और इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। श्रोताओं, अब समय है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों का, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम असम का प्रकृति पर्व बिहू। कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में असम के उल्लास पर्व बिहू के बारे में रोचक जानकारी दी गई है और इसे मनाए जाने के तरीकों और इसकी प्राचीन पृष्ठभूमि के बारे भी बताया गया है।
1: मे आई कम इन मिस्टर हेनरी?
2: यस श्योर, अंदर आइए, आपका स्वागत है।
1: आपने बुलाया था सर?
2: जी मैंने आपको बुलाया था। आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। आपने असम के डांस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए लंदन की ब्रिटिश अकादमी को जो ग्रांट की रिक्वेस्ट भेजी थी वह मंजूर हो गई है। ये रहे पेपर्स।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।
2: ऑल द बेस्ट, असम जाने की तैयारी कीजिए।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
3: एंजेला का परिवार दिल्ली से था, लेकिन अब बहुत समय पहले से वो सभी लंदन में ही बस गए थे। एंजेला डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्मात्री थीं और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाकर वहाँ की संस्कृतियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाना उनका काम था।
1: सबसे ज्यादा खुशी उनकी बेटी कोमल को हुई, क्योंकि वो भी अपनी माँ के साथ भारत जा रही थी। कोमल इंग्लैंड में ही पैदा हुई थी। वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी धारा प्रवाह बोल लेती है। और आखिर आ ही गया वो दिन असम जाने का। लंदन से दिल्ली होते हुए वे गुवाहाटी पहुंचे। शाम को डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए निर्धारित कैमरा टीम भी आ चुकी थी। एंजेला ने उन्हें आलेख पढ़कर सुनाया और शूटिंग से संबंधित आवश्यक निर्देश भी दिए।
3: दूसरे दिन वो गुवाहाटी शहर के आसपास कुछ ग्रामीण इलाकों में भी घूमने गए। बाजार हाट फुल्लम गामोसा और भिन्न भिन्न प्रकार के पकवानों से पटे हुए थे।
1: फुल्लम गामोसा एक प्रकार का हाथ का बुना हुआ सूती गमछा है, जिसकी किनारी लाल रंग की होती है। असमिया लोग इसे पारंपरिक रूप से सम्मान और आदर के प्रतीक के रूप में बड़ों को भेंट करते हैं।
3: आज कोमल बहुत उत्साहित है। बिहू का त्योहार जो है, ब्रिटिश दूतावास के सौजन्य से एंजेला को आज असम की जानी मानी सांस्कृतिक आयोजन समिति की ओर से विशेष निमंत्रण भेजा गया है। आज के विशेष बिहू कार्यक्रम के दौरान वो विशेष अतिथि भी होंगी और डॉक्यूमेंट्री की निर्मात्री भी। उत्सव चल रहा था।
4: नमस्कार, मैं हूं मृगेन बरुआ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और खास स्वागत है हमारी खास अतिथि एंजेला जी और उनकी बेटी कोमल का। तो सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं बिहू पर्व का एक खास नाटक।
5: आज महाराज ने कुछ खास आदिवासी समूहों को बुलाया है।
3: सुना है वो बहुत अच्छा नृत्य करते हैं।
5: भाई जो भी हो, हमारे महाराज हैं बड़े कला प्रेमी।
6: बिल्कुल सही कहा आपने।
3: चलो देखते हैं क्या क्या होता है।
6: जी जी चलो चलो देखते हैं।
3: चलो चलो चलो चलो चलो जल्दी चलो।
7: अहोम के महाराज की जय हो।
8: जय हो, जय हो।
7: जैसा कि महाराज ने इच्छा व्यक्त की थी, आज हमारे बीच दिमासा कछारी आदिवासियों का समूह पधारा है अपने पारंपरिक कृषि नृत्य बिशु के साथ।
9: नृत्य प्रस्तुत किया जाए।

0: अद्भुत, अति सुंदर। हम इस नृत्य प्रस्तुति के साक्षी होकर धन्य हुए। महामंत्री
1: जी, आज्ञा महाराज।
0: मेरी आज्ञा से प्रजा में ये संदेश भेज दिया जाए कि आज के बाद से फसलों की कटनी के बाद प्रकृति माता को आभार प्रकट करने के लिए समस्त अहोम राज्य में विशु नृत्य विधिवत किया जाएगा।
2: महाराज की जय।

0: तो साथियों, कैसा लगा आपको ये नाटक? अब दीजिए अपने साथी मृगेन को आज्ञा, लेकिन जाने से पहले एक दूसरे से मिलना जुलना मत भूलिएगा। आपके लिए हमने खास तौर से रखा है बिहू मिलन कार्यक्रम।
1: बिहू मिलन समारोह चल रहा था और साथ ही साथ एंजेला की टीम शूटिंग में भी लगी हुई थी। अब बारी थी रेडियो साक्षात्कार की। आइए सुनते हैं एंजेला, कोमल और मृगेन का ये वार्तालाप।
2: मृगेन जी, आज का बिहू उत्सव बहुत ही सुंदर था। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। नाटक में आपने अहोम राज्य के बारे में बताया, इस पर थोड़ी जानकारी और दीजिए ना।
0: जी एंजेला जी, अहोम राज्य का काल 1200 सामान्य संवत से 1700 सामान्य संवत तक रहा।
2: अच्छा।
0: माना जाता है कि यही अहोम नाम आगे चलकर असोम कहलाया और कालांतर में असम हो गया। प्राचीन शास्त्रों में असम का उल्लेख प्राग ज्योतिषपुर नाम से किया गया है।
2: मृगेन जी, इस त्योहार का नाम बिहू क्यों पड़ा?
0: बहुत अच्छा सवाल। देखिए, शुरू में इस आदिवासी नृत्य को बिशु नृत्य कहते थे। बाद में यही बिशु नाम बिहू के नाम से जाना जाने लगा।
2: सर, मैंने सुना है कि बिहू साल में 3 बार मनाते हैं।
0: सही सुना है कोमल बिटिया। बिहू खेती से संबंधित त्योहार है।
2: ओह।
0: ये असमिया नए साल में वसंत ऋतु के आगमन से शुरू होता है और साल में 3 बार मनाया जाता है। इन्हें सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वो धान रोपते हैं और फिर जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। यानी ये त्योहार फसल लगने से लेकर वसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है।
2: अरे वाह। सर, मैंने सुना है कि इन तीनों अवसरों पर त्योहार के अलग अलग नाम हैं।
0: बिल्कुल ठीक कोमल। ये हैं रोंगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू या बैसाख बिहू भी कहते हैं।
2: ओह।
0: ये वसंत की शुरुआत और नव वर्ष का जश्न है, जिसमें नृत्य और संगीत शामिल होते हैं। दूसरा बिहू है कोंगाली बिहू। ये एक अधिक गंभीर अवसर है, जहां भरपूर फसल के लिए खेतों में दिया जलाकर प्रार्थना की जाती है।
2: अच्छा।
0: तीसरा बिहू भोगाली बिहू कहलाता है, जिसमें खान पान और उत्सव होते हैं।
2: मृगेन जी, आपने तो कोमल के सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से दिया। अब मेरा भी एक सवाल है।
1: जी।
2: मैं जानना चाहती हूँ कि बिहू शब्द कहाँ से आया, इसका क्या अर्थ है?
0: एंजेला जी, बिहू शब्द की उत्पत्ति विशु से हुई है।
2: जी।
0: जिसका अर्थ है फसल के मौसम में ईश्वर से आशीर्वाद और समृद्धि मांगना।
2: बहुत सुंदर। मृगेन जी, इतनी रोचक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आज एंजेला और कोमल लंदन वापस जा रहे हैं। कोमल को अपनी माँ के काम पर गर्व है। उसने ठान लिया है कि वो भी मीडिया कार्यक्रम निर्मात्री बनेगी। जहाज जब बादलों को चीरता हुआ आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचा, तो कोमल ने आंखें बंद कर ली और खो गई बिहू की सुखद स्मृति में। उसके मस्तिष्क में अब भी थी बिहू के सुंदर गीतों की गूंज।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम असम का प्रकृति पर्व बिहू।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की संरक्षा में ही हमारी सुरक्षा और खुशहाल जीवन का आधार है।
2: खुशी। खुशी जब पैदा हुई तो उसने अपने सारे घर में खुशियां बिखेर दी।

0: वो बचपन में इतना हंसती और इतना खुश रहती कि घर वालों ने उसका नाम ही खुशी रख दिया। उसको खेलने के लिए खिलौनों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके खिलौने थे चिड़ियों की चहचहाट, नदियों की कलकल कर बहने की आवाज। उसका खिलौना मानो पूरी प्रकृति थी।
1: वाओ, कितना सुंदर बाग है, कितने सुंदर फूल हैं, और पेड़ भी तो देखो कितने अच्छे हैं। देखो कितनी सारी तितलियां उड़ रही हैं, मुझे तो इन्हें देख के बहुत मजा आ रहा है। अरे चिड़िया तो अपने बच्चों को दाना खिला रही है। वाओ, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इन सबको देख के। अरे यहाँ तो भवरा भी है। अरे तोता कहाँ जा रहा है, कितना प्यारा।

0: जैसे जैसे खुशी बड़ी हो रही थी और समय निकल रहा था, खुशी की खुशी कहीं खो सी गई थी। आइए हम सब मिलकर खुशी की खुशी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आखिर कहां गई खुशी की खुशी?
1: खुशी के पापा, पता ही नहीं क्या हो गया है हमारी खुशी बिटिया को। पता नहीं किसकी नजर लग गई है, आजकल बहुत परेशान सी रहती है।
2: कमजोर भी हो गई है,
1: कुछ खाती पीती भी तो नहीं है, कमजोर तो लगेगी ही।
2: ठीक कह रही हो तुम, पहले तो खुशी हरदम चहचहाती रहती थी, लेकिन अब तो कल मैं बाजार से उसके लिए

0: गुड़िया भी लाया था, मिठाई भी लाया था, लेकिन वो अब किसी भी सामान से खुश नहीं है।
1: समझ ही नहीं आता है क्या हो गया इसे।
0: सही कहती हो तुम, जरूर किसी की नजर लगी है मेरी खुशी को।

0: अरे अरे हमारी बिटिया कहाँ है? अरे खुशी बिटिया कहाँ है भाई? अरे नमस्ते दीदी।
1: अरे भैया
2: नमस्ते। नमस्ते मोहन।
0: अरे भाई हमारी खुशी बिटिया दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई?
2: खुशी बेटे,
1: खुशी इधर आओ।
3: नमस्ते मामा जी।
0: अरे जीते रहो बेटे, जीते रहो। शाबाश
2: बेटा। मामा जी आए हैं, देखो तुम्हारे लिए क्या क्या लाए हैं।
0: हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आया।
2: हाँ।
0: देखोगी, एक मिनट, कहाँ गया मेरा डब्बा? ये रहा। देखो बेटा, ये तुम्हारी मनपसंद रेलगाड़ी है। आई पसंद? और देखो ये भालू, ये डमरू बजाता है। देखो देखो कैसे बजाता है। अरे ये देखो, ये तो भूल ही गया था, कितनी प्यारी सी गुड़िया है, परी की तरह लगती है ना। नो नो शाबाश। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम तो बिल्कुल खुश नहीं हो। अरे जीजी आखिर हो क्या गया ऐसे? पहले तो ये ऐसी नहीं थी।
1: पता नहीं भैया, हम तो खुद ही बहुत परेशान है इसको लेकर। पता नहीं इसे क्या होता जा रहा है, हमेशा गुमसुम रहती है, परेशान रहती है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है।
0: जीजा जी, पिछली बार जब मैं आया तो काफी खुश नजर आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, ऐसे इतनी कमजोर हो गई है।
2: मोहन जी, हम खुद कुछ नहीं समझ पा रहे हैं।
0: तो आप क्यों नहीं किसी डॉक्टर को दिखाते इसे?
2: दिखाया था।
0: तो फिर?
2: वो कहते हैं कि नॉर्मल है।
0: हैं? कमाल है, लेकिन मुझे लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। खैर कोई बात नहीं, इसके बारे में भी सोचेंगे। कोई बात नहीं बेटा। बेटा खुशी बेटा, देखो तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने, तुम एक काम करो, इसे इसे ले लो और अपने कमरे में जाओ।
3: नहीं चाहिए मुझे खिलौने विलौने, मैं जा रही हूँ।
0: अरे मगर बेटा ये खिलौने तो ले जाओ। अरे खुशी बेटा, ओफ, चली गई बिना खिलौने लिए।
4: आंटी आंटी नमस्ते।
1: नमस्ते बेटा।
4: अंकल नमस्ते।
2: नमस्ते बेटा।
1: खुशी खुशी देखो ताशु आई है तुमसे मिलने।
3: क्या है मामा?
1: देखो ना ताशु आई है।
4: खुशी खेलोगे मेरे साथ?
3: नहीं ताशु, आज मेरा खेलने का मन बिल्कुल भी नहीं है।
4: क्या हो गया, तुम तो मेरे साथ खेलते भी नहीं हो।
3: नहीं ताशु, मेरा खेलने का मन नहीं है।
4: खेल लो प्लीज।
3: प्लीज ताशु, मुझे नहीं खेलना है।
4: प्लीज
3: नहीं।
4: ठीक है फिर मैं मोनू के साथ खेल लूंगी।
3: ठीक है जाओ।
5: कुछ दिनों के बाद खुशी के पिता का तबादला हो जाता है और वो शहर छोड़कर वहां से दूसरे शहर चले जाते हैं जहां शांति थी। अगले दिन खुशी की आंखें नए शहर में खुलती हैं। सुबह सुबह जैसे ही खुशी के कानों में कोयल की आवाज आती है वो खुश हो जाती है। कोयल की आवाज सुनने भर से ही खुशी का चेहरा खिल उठता है।
3: वाह चिड़िया, कितनी अच्छी है। तितलियां भी, ये भी बहुत अच्छी हैं। फूल फूल फिर से, वाह। तोते तितलियां रंग बिरंगी, लाल पीली हरी, वाह कितना अच्छा है नजारा। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मम्मी मम्मी।
1: क्या बात है, क्या हुआ खुशी?
3: मैं तो बाहर जा रही हूँ। हम अरे वहाँ देखो चिड़िया तोते, अरे सुंदर है।
1: अरे सुन तो,
3: नहीं मैं तो जा रही हूँ।
1: अरे रुक तो सही, कहाँ जा रही है?

0: पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है।
1: एक बात देखी तुमने?
0: हाँ।
1: यहाँ हम जब से आए हैं खुशी की खुशी वापस आ गई है, वो बहुत खुश रहती है।
0: सही कहते हो आप।
1: हे ईश्वर, हे भगवान, तूने हमारी खुशी वापस लौटा दी।
2: अब खुशी के मम्मी पापा को समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि खुशी की खुशी कहाँ चली गई थी। जहाँ वो पहले रहते थे वहाँ पर हर रोज पेड़ों की कटाई हो रही थी, नई कंपनियां लग रही थी, प्रकृति की खूबसूरती जाने कहाँ चली गई थी। सो खुशी की खुशी भी चली गई थी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी खुशी बनी रहे तो खूब पेड़ लगाइए, वातावरण में खुशी रहेगी तो आपकी खुशी भी बनी रहेगी।
3: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुगम संगीत में आज आपको सुनवा रहे हैं गुरुशा दुबे की गाई गजलें। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं निदा फाजली का कलाम। आइए सुनते हैं।

0: निदा फाजली का कलाम आप सुन रहे थे, स्वर था गुरुशा दुबे का।
1: ओहो क्या है बात, अब तो हर पल हम हैं आपके साथ। आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर सुने जा रहे हैं। इसके साथ ही अब ये कार्यक्रम प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुने जा सकते हैं। ये ऐप ऑनलाइन एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस तरह आप और हम हुए एक साथ, तो सुनते रहिए आकाशवाणी का इंदौर केंद्र।
2: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
4: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान
5: आकाशवाणी इंदौर।
4: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
0: सुगम संगीत में अब आपको सुनवा रहे हैं राज बरेलवी का कलाम, स्वर है गुरुशा दुबे के।

गुरुशा दुबे के स्वर में आप सुन रहे थे सुगम संगीत। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लोक संगीत में आज कलाकार हैं दयाराम सारोलिया और साथी। इनसे आप सुन रहे हैं मालवी लोकगीत।

आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत। कलाकार हैं दयाराम सारोलिया और साथी। इनसे आप सुन रहे हैं मालवी लोकगीत।

दयाराम सारोलिया और साथी के स्वर में आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 7 बजने को है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार होंगे, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोबरधन को अपनी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके अंतर्गत देश के प्रचुर कृषि अवशेष, पशु गोबर, गन्ना अपशिष्ट, नगर पालिका जैविक अपशिष्ट और अन्य जैव संसाधनों को स्वच्छ ईंधन और जैविक खाद में परिवर्तित कर ग्रामीण आय और राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में वृद्धि का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
1: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
0: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बेहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी अपनी मंजूरी दे दी है। इस पर कुल 8,970 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। परियोजना से यात्रा का समय घटकर आधा हो जाएगा। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी थी। विधेयक में 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई राशि को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन के विनियोजन का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। उधर लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता को सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने बताया कि 19 लाख परिवारों का बिजली का बिल शून्य हो गया है। श्री जोशी ने कहा कि योजना के अंतर्गत 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए कमाए हैं। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टर्बाइन ईंधन में एथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बम्बई उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल

0: साल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई है। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख से अधिक का जुर्माना भी लगाया जो पीड़िता को दिया जाएगा। केरलम के तिरुवनंतपुरम में युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला है। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले 2 वर्षों से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की है। तन्वी शर्मा ने कोरिया मास्टर्स महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। प्री क्वार्टर में तन्वी ने श्रेयांशी वली शेट्टी को हराया। अश्मिता चालिया और रक्षिता रामराज भी सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में आपको सुनवा रहे हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। शाम 7:20 पर आप सुनेंगे खेती गृहस्थी कार्यक्रम। शाम 7:30 से आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुनिएगा किसान वाणी कार्यक्रम। रात्रि 8:00 संसद समीक्षा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। सुर्खियों में ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे रात 8:15। रात्रि 8:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। चित्र गीत में सदाबहार फिल्मी गीत आपको सुनवाएंगे रात 9:15 पर। रात्रि 9:30 से आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। रात 10:00 आपको सुनवाएंगे प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित शेष कार्यक्रमों की। अब आपको विवरण दे रहे हैं हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। कल सुबह भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा। सुबह 6:05 पर चिंतन सुनिएगा कल सुबह 6:30। खेती की बातें होंगी कल सुबह 6:35 पर। इसमें मक्का की फसल में रोग लक्षण और उपचार, इस विषय के बारे में जानेंगे। श्री रामचरितमानस गान पाठ होगा कल सुबह 6:40 पर। कल सुबह 7:20 पर इंदौर परिक्रमा कार्यक्रम में साप्ताहिक गतिविधियां आप सुनेंगे। ये कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे मुकाम सिंह चौहान। सुबह 7:35 पर सुनहरे पल कार्यक्रम होगा। सुबह 8:30 कवि गोष्ठी में प्रतिभागी कवि होंगे संतोष कुमार मतवाला और साथी। लोक संगीत का कार्यक्रम होगा कल सुबह 9:00 और शाम 6:45 पर कलाकार होंगे हरिहरेश्वर पोद्दार। अखला वारसी की गाई कुछ रचनाएं आप सुनेंगे सुगम संगीत में कल सुबह 9:15 पर और शाम 6:30। शास्त्रीय संगीत में कल सुबह 9:30 आपको सुनवाएंगे पंडित भीमसेन जोशी का गाया राग यमन कल्याण। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे सुबह 10:00। सुबह 10:05 से आपको सुनवाएंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। दिन में 11:00 से आप सुनेंगे आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित कुछ कार्यक्रम। सुबह 11:00 से आप सुनेंगे 12वें हथकरघा दिवस के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के मुख्य आतिथ्य में राष्ट्रपति भवन दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। दिन में 1:00 महिला कार्यक्रम होगा। इसमें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर चर्चा होगी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 पर बात होगी, आत्मनिर्भर भारत में हथकरघा उद्योग की भूमिका, इस विषय पर समीक्षा नायक की वार्ता सुनिएगा, लिप्पन आर्ट के बारे में जानेंगे, हेल्थ टिप्स में आप जानेंगे मानसून में संक्रमण से कैसे बचें। शाम 5:00 होगा युवाणी कार्यक्रम। शाम 6:00 NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग होगा। शाम 7:20 पर खेती गृहस्थी कार्यक्रम होगा। इसमें मंडी भाव के अलावा लोक संगीत आप सुनेंगे। रात्रि 8:00 संसद समीक्षा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुर्खियों में कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 8:15 बजे, रात 8:30 बजे होगा फिल्म संगीत। रात्रि 9:15 बजे चित्रगीत में आपको सुनवाएंगे सदाबहार फिल्मी गीत। रात्रि 9:30 बजे से आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। शास्त्रीय संगीत में कल रात्रि 10:20 पर आपको सुनवाएंगे पंडित रघुनाथ सेठ का बांसुरी पर बजाया राग यमन। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा कल रात्रि 10:30 बजे। कार्यक्रम विवरण में आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 7:10 होने को है। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
4: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ।
1: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
2: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो पिछले 1 साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। तुम भी अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मेरे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
3: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
4: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
0: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 करोड़ रुपए की गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। 1.5 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली में आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन में हुए शामिल। कहा, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य। भोपाल में ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव की शुरुआत। सदस्य देशों के कलाकार कर रहे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की प्रस्तुति। और प्रदेश में कल से शुरू होगा मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान। शिविरों के जरिए हर शुक्रवार समस्याओं का मौके पर ही होगा निराकरण। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में कहा कि इससे 1.5 लाख रोजगार सृजित होंगे। गोवर्धन योजना भारत की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। योजना के अंतर्गत देश के प्रचुर कृषि अवशेष, पशु गोबर, गन्ना अवशिष्ट, नगर पालिका जैविक अवशिष्ट और अन्य जैव संसाधनों को स्वच्छ ईंधन, जैविक खाद में परिवर्तित कर ग्रामीण आय और राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में वृद्धि का लक्ष्य है।
1: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
0: यह योजना 2026-27 से 2035-36 तक लागू की जाएगी। इससे कंपनी

0: बायोगैस भारत के भविष्य के ऊर्जा मिश्रण का प्रमुख आधार बनेगी। योजना का उद्देश्य घरेलू कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन को लगभग 10 गुना बढ़ाना, बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और देशभर में चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से 50 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हुए हैं। नई दिल्ली में सीआईआई अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि वर्तमान में 19 लाख परिवारों का बिजली का बिल शून्य हो गया है। श्री जोशी ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए कमाए हैं। सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भी सहभागिता की। इस अवसर पर मध्यप्रदेश के हरित ऊर्जा विजन, स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में प्रदेश की उल्लेखनीय प्रगति एवं भविष्य की ऊर्जा रणनीति का प्रभावी प्रस्तुतीकरण किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में मध्य प्रदेश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
1: लगभग 100 करोड़ की बचत वर्तमान की बाकी ऊर्जा की तुलना में मेट्रो कंपनी को भी अगर हो रही है, जहां एक तरफ मध्य प्रदेश बीते 12 वर्षों के हमारे अपने प्रयासों की तरफ अगर देखता है तो 2014 में कुल 438 मेगावाट नवकरणीय ऊर्जा हमारे पास थी, जो आज बढ़कर के 11,000 मेगावाट से ज्यादा आगे बढ़ गई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और यह हमारे काम करने का तरीका भी है। सौर ऊर्जा को कोयले से बनने वाली 2018 की ऊर्जा की तुलना में पूरे देश ने दुनिया में सबसे सस्ती बिजली कहीं बन रही है, तो वो मध्यप्रदेश की धरती पे बन रही है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है। लगातार मध्यप्रदेश सरकार की ओर से हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बात सही है आज के समय।
0: भोपाल में आज से 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव की शुरुआत हुई। इस महोत्सव में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के कलाकार अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक प्रस्तुत कर रहे हैं। महोत्सव के पहले दिन बेलारूस, ब्राजील, इंडोनेशिया, रूस, संयुक्त अरब अमीरात और मेजबान भारत की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। कार्यक्रम की शुरुआत बेलारूस के लोकगीत और लोक नृत्य से हो रही है। इसके बाद ब्राजील की पारंपरिक कैपोएरा, इंडोनेशिया की पुष्पांजलि और रोरो जो ग्रांग नृत्य प्रस्तुति, रूस का ब्लेलियाका लोक संगीत, संयुक्त अरब अमीरात के कलाकार सैफ अली की संगीतमय प्रस्तुति तथा अंत में भारत की ओर से राजस्थान के घूमर, चरी, कालबेलिया और भवई लोक नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे। यह महोत्सव ब्रिक्स देशों के बीच सांस्कृतिक संवाद, आपसी सहयोग और लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। दूरदर्शन के प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल द्वारा बुंदेली बोली में समाचार बुलेटिन का आज शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि दूरदर्शन दिल्ली के महानिदेशक ममता वर्मा और विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त महानिदेशक ऋतु शुक्ला शामिल हुई। आपको बता दें कि बुंदेली बोली में बुलेटिन प्रतिदिन दोपहर 12 बजे दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर प्रसारित होगा। प्रदेश में कल से जन विश्वास अभियान का शुभारंभ होगा। शासन और प्रशासन ने अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। जनसंपर्क अधिकारी राजेश जैन ने बताया कि जन विश्वास अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में जाकर जनता से सीधा संवाद एवं जुड़ाव, शिकायतों एवं समस्याओं का 100% निराकरण करना, फील्ड की वास्तविक स्थितियों का फीडबैक प्राप्त करना। अभियान में प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार के दिन संपूर्ण प्रदेश में अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर किसी भी स्तर पर कोई बैठक आयोजित नहीं होगी। आगर मालवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कल नलखेड़ा, बड़ौद, सुसनेर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में 3-3 शिविर आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में मॉनसून सीजन के दौरान अब तक सामान्य से काफी कम बारिश होने के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सूखे जैसे हालात बन गए हैं। अब तक प्रदेश में 16.3 इंच बारिश दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि तक 20 इंच बारिश होनी चाहिए थी, यानी प्रदेश में करीब 19% कम बारिश हुई है। बारिश की कमी का असर प्रदेश के 49 जिलों में देखने को मिल रहा है। केवल 6 जिलों में ही औसत से अधिक बारिश दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इसके प्रभाव से आगामी दिनों में प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है, जिससे मानसून की कमी कुछ हद तक पूरी हो सकती है। मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला के अराजपत्रित सेवा ग्रह पुलिस विभाग अंतर्गत प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक एवं प्रयोगशाला परिचारक के पदों पर भर्ती प्रक्रिया का अंतिम चयन परिणाम एमपी में जारी कर दिया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कटनी में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आज चिकित्सकों को दिया एक दिवसीय प्रशिक्षण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जागरूकता वाहन को आज शिवपुरी जिले के पोहरी में एसडीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंडला जिले में प्रस्तावित नर्मदा लोक विकास परियोजना को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में प्रदेश की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके ने अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। सीहोर जिले के भैरूंदा में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, किशोरी बालिका और परिवार के सदस्यों को स्तनपान के महत्व के साथ मातृ शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यक जानकारियां दी गईं। विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर देवास जिला चिकित्सालय में जागरूकता एवं परामर्श सत्र आयोजित किया गया। सागर में छतरपुर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास को शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए रिश्वत की मांग करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो पिछले 1 साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मेरे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों को पद्मश्री तपस्वी का राम राम। किसान भाइयों, अभी बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में खेतों और फसलों की सुरक्षा के लिए अधिक सावधानी बरतनी होती है। यदि खेतों की जल निकासी सही नहीं होगी तो अधिक पानी जमा होने से उगाई गई फसलें सड़ सकती हैं। इसीलिए खेतों में पानी जमा ना होने दें। खेतों के किनारों पर नालियां बनाकर फालतू पानी बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। मेड़ भी मजबूत होनी चाहिए जिससे तेज बारिश में उपजाऊ मिट्टी बह न जाए, इसलिए मेड़ों को ठीक रखना होगा। बारिश के मौसम में नमी के कारण तरह तरह के फंगस और कीट जल्दी फैलते हैं, इसीलिए संक्रमित पौधों या पत्तियों को तुरंत हटाएं। जब तेज बारिश हो तब दवा या कीटनाशक का छिड़काव ना करें, क्योंकि पानी के साथ छिड़की हुई दवा बहने का डर बना रहता है। तो ये तो हुई बात बारिश के मौसम की, कि बारिश के मौसम में फसलों की सुरक्षा कैसे करें। और अब हम बात करते हैं सावन के महीने की। तो इस समय सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है जो मन को उमंग और उत्साह से भर देती है। इस समय झूले झूलने का भी धार्मिक, सांस्कृतिक और मानसिक महत्व है। अब ये सोचें कि ये परंपरा कब से शुरू हुई होगी। तो ये परंपरा भगवान शिव, माता पार्वती और राधा कृष्ण के प्रेम से जुड़ी है, जो मन को आनंदित करने के साथ साथ प्रकृति के उल्लास का भी प्रतीक है। तो सुनते हैं एक ऐसा ही लोकगीत जिसे गाया है रामचंद्र गांगुलिया और साथी ने।

आप सुन रहे थे रामचंद्र गांगुलिया और साथी का गाया एक लोक भजन। तो ये तो हुई बात सावन और झूलों की, और अब वक्त है कार्यक्रम किसान वाणी का। तो अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी, जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: गोपाल केंद्र है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। किसान साथियों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री किसान

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी सुनवे बारे हमारे सभी श्रोता भैया बहनों को पहुंच जावे अंशु तिलेठे की स्नेह और नेह भरी राम राम। भैया हरो, जा बात हमारे अच्छे से जानत है के विज्ञान और तकनीक ने आज हमारा दैनिक जीवन बहुत सरल और आसान बना दो है। उन्हीं में से एक तकनीक है डिजिटल भुगतान, जा एक ऐसी तकनीक है जो हमारे रुपयन के लेन देन को आसान बनाते है। अब बात हम कर रहे हैं हमारे किसान भैयान के लाने, तो डिजिटल भुगतान करत समय किसान भैया हरन को धोखाधड़ी से बचबे के लाने अपनो UPI पिन को खो नहीं बताने हैं। संगे संगे भुगतान राशि और प्राप्तकर्ता को नाम ध्यान से जांचने हैं और अनजान लिंक या मैसेज पे क्लिक करवे से बचने हैं, सावधानी बरतने हैं। भैया हरो, पिन और पासवर्ड की गोपनीयता बनाए रखवे के लाने अपनो UPI पिन, ATM कार्ड नंबर या पासवर्ड कोनो के संगे साझा नहीं करने हैं। संगे संगे बैंक अधिकारी या को भी अगर खुद को आपको मददगार बताए और पिन पूछे तो हमें कभो भी अपनी पिन नहीं बताने हैं। संगे संगे पासवर्ड या पिन हमेशा गोपनीय रखने हैं और कोनो पर्ची पे लिख के रख लेने हैं, जिसे कि अगर हम भूल जाएं तो वह पर्ची हमें इमे मददगार साबित होए। संगे संगे लेन देन से जुड़ी हमें का सावधानियां रखने हैं बासो ही हम आप को बताए देते हैं। पैसा भेजबे या भुगतान करवे से पहला स्क्रीन पे नाम और राशि की अच्छी तरह जांच कर लेने हैं। संदिग्ध या अनजान फोन नंबरन से आए लॉटरी इनाम या सब्सिडी के मैसेज पे भरोसा नहीं करने हैं और कोनो अनजान व्यक्ति के कहवे पे अपने फोन की स्क्रीन शेयर नहीं करने हैं ना डाउनलोड करने हैं। और भैया हरो, अपने मोबाइल ऐप की सुरक्षा के लाने केवल भरोसेमंद और आधिकारिक बैंकिंग या भुगतान ऐप को ही उपयोग करने हैं। अपने मोबाइल फोन में हमेशा स्क्रीन लॉक करके रखने हैं, कोनो भी पैटर्न या फिंगरप्रिंट लगा के रखने हैं। संगे संगे सार्वजनिक स्थान पे खुले वाईफाई उपयोग करवे से बचने हैं, माने सार्वजनिक वाईफाई पे लेन देन करवे से अपन को बचने हैं। और भैया हरो, यही तरह की सावधानियां बरत के हम डिजिटल भुगतान को सही तरीका से फायदा उठा सकते हैं। जा तो हो गई हमारी डिजिटल भुगतान से सावधानी पे चर्चा, अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुन लेते हैं एक साउंड गीत। जी ये गाँव है माया पंडरे ने।

0: भैयाहरो अब अपन ने जो सॉन्ग गीत सुनो, हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आज आपके लाने हम लेके आए हैं एक विशेष स्थल रिकॉर्डिंग पे आधारित जानकारी, जिको विषय है खरीफ के मौसम में समसामयिक विविध कृषि कार्य विषय पर केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान नबीबाग भोपाल में विषय विशेषज्ञों से बातचीत पे आधारित। इनमें रिकॉर्डिंग सहयोग हमें मिलो है महेश सोनी जी को।
1: नमस्कार किसान भाइयों, खरीफ का मौसम चल रहा है, खेतों में चारों ओर हरियाली बिखरी हुई है। खरीफ फसलों में समसामयिक कार्य करने बहुत जरूरी है। ऐसे ही कार्यों की जानकारी लेने के लिए इस समय हमें केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कृषि विज्ञान केंद्र नबीबाग भोपाल में आइए। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं डॉक्टर उदय बड़ेगांवकर से, उनसे जानते हैं कि इस समय खरीफ फसलों में नीदा नियंत्रण किस तरह से किया जाए।
2: नमस्कार किसान भाइयों, मैं उदय बड़ेगांवकर केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान नबीबाग भोपाल में प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। और अभी आप खरीफ के मौसम की अपनी बुनी से फारिग हो चुके होंगे निश्चित रूप से। कुछ किसानों ने सोयाबीन बोया होगा, किसी ने धान लगाया होगा। धान आजकल हमारे एरिया में धान का रकबा काफी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सोयाबीन में आप में से कई कृषक बंधु हमारे जो है खरपतवार की परेशानियां निश्चित रूप से सहन कर रहे होंगे, उनके सामने आ रही होंगी। एक तो इस साल थोड़ा सा मानसून भी असामान्य सा है, बारिश उतनी हो नहीं रही जितने की जरूरत थी, लेकिन बीच बीच में यदि जैसे बारिश हो रही है तो ठीक भी है, फसल आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन निंदाई का जो खासतौर पर खरपतवार जो खेतों में ज्यादा से ज्यादा उगेगी, उसका प्रबंधन या उसका निदान एक बहुत बड़ा कार्य है जो समय पर होना चाहिए। और सोयाबीन फसल के बारे में खासतौर पे खरपतवार का और जो है वो कीटों का कुछ प्रकोप ज्यादा ही होता है, और खरपतवार और कीटों के प्रकोप को रोकने के लिए हम में से अधिकांश किसान बंधु जो है दवाइयों पर ज्यादा निर्भर करते हैं, क्योंकि दवाइयों का छिड़काव सस्ता पड़ता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये दवाओं के छिड़काव करने से खरपतवार नियंत्रण तो हो जाता है, लेकिन साथ साथ में दूसरी बहुत सी साइड इफेक्ट, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो दवाई दी जाती है तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो वैसे ही ये दवाओं के भी निश्चित रूप से साइड इफेक्ट्स आपकी फसल में भी और फसल से भी ज्यादा मिट्टी में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो आगे और नई नई बीमारियां लेके आते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि हमारे कृषक बंधुओं को दवाइयों से खरपतवार नियंत्रण से अलग हटके और यांत्रिक निंदाई की ओर ज्यादा बढ़ना चाहिए। यांत्रिक निंदाई की ओर यदि वो बढ़ेंगे तो निंदाई के साथ साथ में गुड़ाई का कार्य भी हो जाता है। दरअसल जब हम दवाएं छिड़क कर खरपतवार नियंत्रण करते हैं तो वो चीज दवाओं के छिड़कने से नहीं हो पा रही है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि अधिक से अधिक किसान बंधु यदि यांत्रिक निंदाई की ओर जाएंगे तो निश्चित रूप से उनको सोयाबीन में और ज्यादा फायदा होगा। और सोयाबीन में फायदा होने के साथ साथ में चूंकि उनकी मिट्टी दवाओं के प्रकोप से बच जाएगी, इसलिए जो बाद में जो फसलें लेंगे उसमें उनकी मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होगा, बाद की फसलों के लिए भी वो काफी फायदेमंद होगा। और जहां तक यंत्रों की उपलब्धता की बात है तो हमारे संस्थान ने कई यंत्र विकसित किए हैं, और इसके अलावा बाजार में भी काफी अलग अलग तरह के यंत्र उपलब्ध हैं, हर एक तरह के किसानों के लिए है। यदि छोटे किसान हैं जिनकी एक दो एकड़ जोत है तो उनके लिए छोटे वाले हाथों से चलने वाले वीडर बने हुए हैं जिनको ट्विन व्हीलो वीडर भी कहते हैं, इसके अलावा डोरा भी कहते हैं जिसमें सरकार द्वारा काफी सब्सिडी भी दी जा रही है, तो आप निश्चित रूप से उनका उपयोग करें। थोड़ा सा लेबर जरूर लगेगा, थोड़ा सा खर्चा ज्यादा होगा, लेकिन ये निश्चित रूप से आपके सोयाबीन के उत्पादन पर असर डालेगा, और ये लेबर में आपको जितना पैसा लगा है उसकी भरपाई आपके उत्पादन से हो जाएगी। तो खासतौर पर यांत्रिक निंदाई की ओर यदि आप बढ़ेंगे तो आपको आने वाले सालों में आने वाली फसलों के लिए और इन सब में बहुत ज्यादा फायदा होगा।
1: किसान भाइयों, इस समय सोयाबीन की फसलें काफी बढ़भार पर हैं, ऐसे में हमें उर्वरक प्रबंधन पर ध्यान देना है। किसान भाइयों, हमने बातचीत की डॉक्टर शुभम सिंह से, लेकिन हाँ इतना तो तय है कि इस जानकारी को सुनकर आप ना अधिक उर्वरकों का प्रयोग करेंगे और ना ही कम, बल्कि संतुलित उर्वरकों का उपयोग करेंगे तो फसल उत्पादन बेहतर होगा। आइए सुनते हैं।
3: किसान भाई नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभम सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ मृदा विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र भोपाल में कार्यरत हूँ। किसान भाई और बहनों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी वर्षा ऋतु का समय है, और इस समय आप ऑलरेडी जो इसमें डीएपी, यूरिया और जो पोटाश की खादें हैं वो खेत तैयार करते समय आप डाल चुके होंगे, तो इस वक्त हमें जो सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो ध्यान रखनी है वो है कि आप जब डीएपी की

0: में डाल सकते हैं। दूसरा, हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये जो समय है, ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनकी भी कमी दिखाती हैं कुछ कुछ पौधों में। कभी कभी आप देखे होंगे कि जो हमारी पत्ते होती है वो छोटी हो जाती है, जो हमारे फसल है वो छोटा हो जाता है, कभी कभी बालियां नहीं बन पाती हैं, या कभी कभी जो पत्तियां हैं वो ऊपर की ओर मुड़ने लगती हैं या नीचे की ओर मुड़ने लगती हैं। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्व होता है उनकी कमी के वजह से होती हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो कोई जो सलाह ले सकते हैं, जो वैज्ञानिक सलाह है कृषि विज्ञान केंद्र से, वो आप ले सकते हैं। नहीं तो आप एक पोर्टल है, किसान साथी पोर्टल, उसमें भी आप अपना पंजीकरण करवा के आप सीधे जो वैज्ञानिक है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और उनसे आप बात कर सकते हैं। जैसे कि अगर जिंक की कमी है या बोरों की कमी है, तो आप उसी समय उस पोर्टल के माध्यम से इसका आप निवारण कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि तो आप जल निकासी का प्रबंधन करवाएं, जो आपके उर्वरक हैं उनका सही और संतुलित प्रयोग करें। साथ ही साथ आप इसमें जैविक खाद जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप दूसरा या तीसरा भाग जो यूरिया का डालते हैं उसको आप वर्मी कंपोस्ट या जो आपके जैविक सड़ी हुई गोबर की खाद है उसके साथ मिला के डालें, तो ये जो उसकी जो उपयोगिता दक्षता है वो बढ़ जाती है। और साथ ही साथ आप जैव उर्वरक जो होते हैं जैसे कि आपके राइजोबियम हो गया, आपके जो स्पायरलम हो गया, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे जो आप अगर दलहनी फसल है तो उसमें राइजोबियम का अच्छा रिजल्ट है, जो आपकी धान की फसल है तो उसमें एजोस्पायरलम का अच्छा रिजल्ट है। तो आप इसी तरीके से क्या है, धीरे धीरे करके जो ये वर्षा ऋतु में जो ज्यादा बारिश होता है उससे आप होने वाली जो समस्या है उसको कम कर सकते हैं और जो आपका लाभ है उसको बढ़ा सकते हैं। किसान भाई, जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं ना, उनका भी आपको एक संतुलित प्रयोग करना है। क्योंकि अभी तो क्या है कि आप यूरिया हो गया, जो भी नैनो यूरिया आजकल आ रही है, नैनो डीएपी आ रही है, इनका तो आप छिड़काव करेंगे। साथ ही साथ जो जिंक हो गया, बोरोन हो गया, फिर आयरन हो गया, इनकी भी कमी हमें इस समय देखने मिलती है। तो आप इनका भी अच्छे से संतुलित प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई, अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि इस समय आप सबसे सर्वप्रथम तो एक जल निकासी का प्रबंधन करवाइए, दूसरा संतुलित प्रयोग करें, तीसरा यूरिया की खाद को आप 2 या 3 भाग में डालें, एक 20 से 25 दिन में, दूसरा 40 से 45 दिन में, फिर चौथा जो आपके सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है उनको आप वैज्ञानिक से पूछ के उसका निवारण करें, और पांचवा आप जो जैविक खादें हैं और जो जैव उर्वरक हैं उनका भी एक संतुलित प्रयोग करें, तब जाके जो आप मुनाफा आप अलग से कमा पाएंगे और कृषि को लाभदायक बना पाएंगे।
1: किसान भाइयों, जो जो फसलें बढ़ती हैं, खेतों में बढ़वार लेती है, त्यों त्यों कीट प्रकोप भी बढ़ने लगते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, कौन सी सावधानी रखनी चाहिए ताकि कीटों से हमारी फसलें सुरक्षित रहें? जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मेदिनी प्रताप सिंह।
2: तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं मेदिनी प्रताप सिंह, कृषि विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्था। किसान भाइयों, इस समय जैसा सोयाबीन का हमारा समय चल रहा है, सोयाबीन में हमें इस समय किसान भाइयों बहुत ही सावधानी और देखभाल की आवश्यकता होती है। हालांकि इस बार बहुत ज्यादा बारिश नहीं हो रही है, सोयाबीन की फसल हमारी अच्छी है सोयाबीन में। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप अपने खेतों पर जाएं, देखें, अगर खेत में देखते हैं उसमें रस चूसक कीट इस समय आपको दिखाई दे रहे हैं, तो किसान भाइयों रस चूसक कीट में के लिए आप जो है सोयाबीन में सबसे पहले मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूंगा कि आप नीम का तेल, जो नीम ऑयल के नाम से मार्केट में आपको मिलेगा, नीम ऑयल का अगर आप 10,000 ppm का एक आता है और एक आता है 15,000 ppm का, तो उसमें अगर 10,000 ppm का है तो आप 4 से 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें। थोड़ा सा मौसम की उसको देख करके कि कम से कम 5 से 6 घंटा बारिश ना हो, उस समय मौसम के पूर्वानुमान को देख करके आप छिड़काव करें। तदुपरांत यदि आप देखते हैं कि उससे आपका इलाज नहीं हो पा रहा है, फिर भी आपके उसमें पत्तियों को कट चूसरस चूस करके पत्तियों को सिकोड़ रहे हैं, पत्तियां सिकुड़ रही हैं, कुरकुरा रही हैं पत्तियां, तो आप उस देखिए कि उसमें रस चूसक कीटों की मात्रा यदि ज्यादा है तो फिर आप जो है उसमें जो हमारा इंसेक्टिसाइड है यानी कीटनाशक है जिसे हम इमिडाक्लोरपीड के नाम

0: अच्छे जानते हैं। इमिडाक्लोरपिड 3 मिलीलीटर 10 लीटर पानी में घोल बना करके आपको छिड़काव करना है। ध्यान ये देना है कि हमें जो पत्तियां होती, पत्तियों की निचली सतह में भी हम स्प्रे का यानी पार जो हमारा कीटनाशक है उसकी फुहार को वहां तक भी पहुंचाए, जिसमें कि पत्तियों के निचले भाग में जो छुपे हुए कीट हैं उन तक भी वह कीटनाशक पहुंचेगा और वह कीटनाशक समाप्त हो जाएंगे। इसके साथ साथ किसान भाइयों, हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच को भी अपनाना है। तो कई बार किसान भाई हमारे जब ज्यादा मात्रा में सफेद मच्छर हैं, रस चूसा कीट के रूप में ये सब चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं, तो बहुत ही अच्छा कारगर है जो हमें कहते हैं येलो स्टिकी ट्रैप। पीले रंग का एक स्टिकी ट्रैप बनाया जाता है या मार्केट में भी मिलता है, या आप खुद से अपने घर पे या कनस्तर है या कोई डिब्बा है उसको पीले रंग से पेंट से पोत करके और उसमें आप चिपचिपा पदार्थ लगा दें, चाहे तो उसमें ग्रीस लगा दें, जिसकी तरफ आकर्षित होकर के सफेद जो आपके मच्छर है जिसे हम व्हाइट फ्लाई के नाम से जानते हैं वो जो है उसमें जाकर के चिपक जाते हैं। यदि आपने इनको कंट्रोल कर लिया तो जो आगे ये बीमारी को फैलाते हैं जिसे हम येलो वेन मोज़ेक के नाम से जानते हैं, जो वायरस जनित बीमारी है, इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपने खेतों पे अपनी फसल से लगभग 1 फीट 1.5 फीट ऊंचाई पे आप पीले स्टिकी ट्रैप को जरूर लगाएं। इसके बाद किसान भाइयों, आप देखते हैं कि दूसरा जो कीट इस समय आने की संभावना होती है जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम सेमी लूपर के नाम से जानते हैं, यह हरे रंग का कीट होता है जिसे हम सेमी लूपर के नाम से जानते हैं, लूप बना करके चलता है। तो ये सेमी लूपर नामक कीट हमारी पत्तियों को खा करके डैमेज कर देता है। तो इसके रोकथाम के लिए किसान भाइयों हमें ध्यान देना है कि हम अपने फसल में इंडोक्सा कार्ब 1 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से पानी में घोल बना करके छिड़काव करें, तो जिससे कि हम इसमें देखते हैं कि इस तरीके से हम इस कीट से यानी सेमी लूपर नामक कीट से भी हम छुटकारा पा सकते हैं। कई बार जो किसान भाई अभी अगर जिनकी फसल 15 दिन की अवस्था की होगी, कुछ किसान भाई देर में बो पाए होंगे, तो उन किसान भाइयों के लिए भी है कि रस चूसा कीट का प्रकोप जो देखते हैं तो मेरे द्वारा बताई गई चीजों को उपयोग करके उनका करें। और कहीं कहीं पर हमारे किसान भाइयों को एक और छोटा सा कीड़ा होता है जिसे हम ब्लू बीटल के नाम से जानते हैं, ब्लू बीटल भी देखने को मिल जाता है, ब्लू बीटल भी हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो यदि ब्लू बीटल यदि आपको दिखता है तो वहां पर आप जो है क्लोरोपाइरीफास या क्यूनालफास 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करेंगे। तो इस तरीके से आप जो है देखेंगे कि आप शुरुआती अवस्था के कीटों को आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं। आगे आने वाले समय पे क्योंकि हमारी सोयाबीन में बहुत सारे कीटों का आक्रमण होता है, तो आगे आने वाले समय में देखेंगे कि उसमें जो है आपकी फल मक्खी जो आती है तना मक्खी का भी प्रकोप होता है। इसके बाद हमारा जो है बिहार हैरी कैटरपिलर, तंबाकू की सुड़ी, इनका प्रकोप भी काफी ज्यादा मात्रा में दिखता है। अगर आप देखें तंबाकू की सुड़ी और बिहार हैरी कैटरपिलर, तो इसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है किसान भाइयों के लिए, क्योंकि इसकी जो मक्खी होती है वो अंडा देती है पत्तियों के निचले भाग में और वो पूरे ग्रुप बना के समूह में अंडे को देती है और उसका एक साथ जो है हैचिंग होती है। एक साथ जब हैचिंग होती है तो एक साथ जो छोटी छोटी इल्लियां हैं वो बहुत ज्यादा एक साथ हमारे पूरे पौधे पे अटैक कर देती हैं, जिससे कि पत्तियों को पूरी तरीके से खा करके इल्लियां छान देती हैं। एक तरीके से पत्तियां आप देखेंगे जालीनुमा हो जाती हैं, तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो किसान भाई उसको समय पे ही हमें पहचानना है, अपने खेतों को समय समय पे देखते रहना और हमें उसके लिए जो करना है क्या करना चाहिए हमें कि यहां हमें प्रोपेनोफास या क्यूनालफास 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करना है। और घोल बना के छिड़काव यहां पर भी आपको ये सावधानी रखनी है कि अंडे जो देती हैं इल्लियां और वो निचली सतह पे रहते हैं तो हमें जो है उसी समय हमें इनको समाप्त करना है। तो हम जो स्प्रे करेंगे तो नोजल हमें पत्तियों के निचले सतह पर भी घुमाए, जिससे कि अच्छी तरीके से कीटनाशक वहां तक पहुंच जाए और उनका सही से रोकथाम कर सके।
1: किसान भाइयों, हमने महसूस किया है कि फसल उत्पादन के साथ साथ खाद्य सुरक्षा तथा पोषण पर भी ध्यान देना जरूरी है, तभी तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा और हम बढ़िया काम कर पाएंगे। आइए कृषि विज्ञान केंद्र में पदस्थ डॉक्टर निधि जोशी से जानते हैं कि किस तरह से खाद्य सुरक्षा की जानी चाहिए और पोषण वाटिका कैसे तैयार होती है।
2: नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है।

0: डॉक्टर निधि जोशी, मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में विषय वस्तु विशेषज्ञ खाद्य एवं पोषण विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आप सभी से पोषण वाटिका के द्वारा किस प्रकार हम खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं और यह किस प्रकार आमदनी का एक अच्छा स्रोत हो सकता है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। संतुलित आहार प्रणाली में सब्जी और फलों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, साथ ही यह हमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जैसे खनिज, विटामिन एवं रेशा भी प्रदान करते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय पोषण संस्थान के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति को नियमित रूप से अपने आहार में 400 ग्राम सब्जियां शामिल करनी चाहिए और हमारी आहार में विविधता लाने के लिए पोषण वाटिका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अब पोषण वाटिका के कुछ फायदे भी जान लेते हैं। यदि आप अपने घर के आसपास के इलाके में जहां थोड़ी सी जमीन मौजूद है वहां किसी आयातकार हिस्से में पोषण वाटिका लगाते हैं तो यह आपको निरंतर नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां सुनिश्चित कर सकता है। यह पोषण वाटिका से प्राप्त फल एवं सब्जियां जहरीले रसायनों से मुक्त होती हैं। बाजार से जो खरीदते हैं हम सब्जियां उस पे भी खर्चा कम होता है। अतिरिक्त फल और सब्जियों को आप बेचकर अतिरिक्त आय का स्रोत भी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही आप घरेलू अपशिष्ट आसानी से अपनी पोषण वाटिका में उपयोग कर सकते हैं। यदि हम बात करें कि पोषण वाटिका के लिए किस स्थान का हमें चयन करना चाहिए, वह स्थान जहां पर धूप अच्छी आती हो, सूर्य की किरणें अच्छी आती हो, जहां जल का स्रोत मौजूद हो और साथ ही साथ हमें यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी जानवर या कोई भी अन्य बंदर या जानवर वहां ना आए, तो चारों तरफ आपको बाड़े की व्यवस्था भी करनी है। एक 250 वर्ग मीटर क्षेत्रफल 5 सदस्यीय परिवार के लिए पूरे वर्ष अच्छे मात्रा में नियमित रूप से हरी पत्तेदार सब्जियां और अन्य प्रकार की सब्जियां प्रदान कर सकता है।
1: तो किसान भाइयों, ये था हमारा आज का स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में हम पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए महेश सोनी को दे आज्ञा, नमस्कार।
2: तो भैया हरो, अभी आपने जो स्थल रिकॉर्डिंग सुनी और अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपके लाने लाए हैं कछु कृषि सलाह। भैया हरो, मूंग के लाने हम आप और उनको सलाह देना चाहते हैं कि एंथ्रोक्नोज एरियर ब्लाइट एवं चारकोल रॉट रोग के नियंत्रण हेतु अनुशंसित फफूंद नाशी को छिड़काव करवे, सफेद मक्खी एवं अन्य पत्ती खावे वाले कीटन की नियमित निगरानी करवे तथा आवश्यकता अनुसार नियंत्रण करवे, पीले स्टिकी ट्रैप, लाइट ट्रैप एवं फेरोमोन ट्रैप लगा के कीटन की निगरानी सोई करवे और खेत में जल भराव से बचावे के लाने उचित जल निकासी बनाए रखें। संगे संगे उड़द के लाने भी कछु ऐसे ही सलाह है भैया और वैज्ञानिकन की के एंथ्रेक्नोज एरियल ब्लाइट एवं चारकोल रॉट रोग के लक्षण मिलवे पे अनुशंसित फफूंद नाशी को छिड़काव करें, गर्डल बीटल एवं पत्ती खावे वाले कीटन के नियंत्रण हेतु अनुशंसित कीटनाशियन को प्रयोग करवे, सफेद मक्खी द्वारा फैलवे वाले पीलो मोजेक रोग से बचाव हेतु थायमेथोक्साम को छिड़काव करवे और पीले स्टिकी ट्रैप, लाइट ट्रैप एवं फेरोमोन ट्रैप को उपयोग सोई करवे और वर्षा के पानी की निकासी को सुनिश्चित करवे। तो जाहती अपहरण किलाने कृषि सलाह, तो जाहती आज की किसान वाणी। अब आज्ञा दो अपनी अंशु बहन को और स्वीकारो हमारी नई और इसने भरी राम राम।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे,
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ,
4: पर हम तो सब यही डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूँगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: कार्यक्रम किसान वाणी अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप मुनीश शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर आज भी अड़े रहे। इस कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित रही। हंगामे के बीच सदन ने विनियोग विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया, जिसके तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में खर्च हुई अतिरिक्त राशि के लिए संसद से मंजूरी मांगी है। इस दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन भी किया। इससे पहले पूर्वान 11 बजे सभापति सीपी राधाकृष्णन ने बैठक शुरू होने पर शून्यकाल की कार्यवाही को शुरू करना चाहा, लेकिन कांग्रेस तथा कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच कुछ सदस्य अपनी सीटों से बाहर आ गए। हालांकि सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से उनकी सीटों पर लौटने का कई बार आग्रह किया। हंगामे के बीच ही शून्यकाल के दौरान भाजपा के राघव चड्डा ने डॉक्टरों को डायग्नोस्टिक केंद्रों द्वारा कथित तौर पर कमीशन राशि दिए जाने का मुद्दा उठाते हुए इस पर रोक लगाने और मरीजों के हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव बीडा ने सरकारी विभागों में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 27% आरक्षण का प्रावधान होने के बावजूद केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में इस वर्ग का प्रतिनिधित्व अपेक्षित स्तर तक पहुंच नहीं पाया है। भारतीय जनता पार्टी के सदानंद महालू शेठ तानवड़े ने कहा कि गोवा में वर्ष 2012 में खनन गतिविधियां बंद होने के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ ही हजारों परिवारों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने केंद्र से खनन क्षेत्र को स्थायी और पारदर्शी तरीके से पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य गृहमंत्री के बयान की मांग करते हुए लगातार हंगामा करते रहे। सभापति ने उनसे अपने स्थानों पर लौट जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शन पर आपत्ति जताई। श्री रिजिजू ने यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हर दिन कुछ लिखकर लाते हैं और सदन में उसे पढ़ते हैं। इस पर कांग्रेस सदस्यों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति देने की मांग की। जब सभापति ने श्री खड़गे को बोलने की अनुमति दी तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे दोबारा बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर फिर हंगामा शुरू कर दिया। इन सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति देने की मांग की। सभापति ने कहा कि विपक्षी सदस्य शांत रहेंगे तो वो पूरक प्रश्नों के बाद नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने की अनुमति देंगे। सदस्यों के शांत होने के बाद सभापति ने नेता प्रतिपक्ष खड़गे से अपनी बात रखने को कहा। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। विपक्ष अपनी इस मांग पर अड़ा रहा कि गृहमंत्री अमित शाह सदन में आकर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर अपना वक्तव्य दें। श्री खड़गे ने संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा कि सदन में अपनी बात रखना उनका अधिकार है। उन्होंने कहा कि कब बोलना है, क्या बोलना है, ये तय करना उनका अपना अधिकार है और इसके बारे में उन्हें अब क्या संसदीय कार्य मंत्री से पूछना होगा। नेता प्रतिपक्ष ने आसन से कहा कि गृहमंत्री को सदन में आने और स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जाए। उन्होंने कहा कि हम चर्चा चाहते हैं। इस पर सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से गृहमंत्री को विपक्ष की भावनाओं से अवगत कराने को कहा। हंगामे के बीच सभापति ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन शोरगुल के कारण उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। दोपहर 2:15 पर बैठक पुनः शुरू होने पर सदन में विपक्षी सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को दोहराया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया। उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि एक महत्वपूर्ण विधेयक को पेश किया जाना है, इसलिए सदन में व्यवस्था बनाए रखें। लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण उन्होंने 1 मिनट के भीतर ही बैठक को दोपहर 2:45 तक के लिए स्थगित कर दिया। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:45 पर राज्यसभा की बैठक शुरू होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक पर चर्चा के लिए सदन में पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान सदस्यों ने अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं को उठाया। तृणमूल कांग्रेस के बाबुल सुप्रियो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, बीजू जनता दल की सुलता देवी, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार झा, ऑल इंडिया अन्ना डीएम के सदस्य डॉ एम थंबी दुरई, तेलुगु देशम पार्टी के भाष्यम रामकृष्ण, भारतीय जनता पार्टी के डॉ सिकंदर कुमार, महेंद्र भट्ट, डॉ अनिल सुखदेव राव बोंडे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, डीएम डीके सदस्य एल के सुधीश और मनोनीत सदस्य सतनाम सिंह संधू ने भी हिस्सा लिया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार ये अनुदान की अनुपूरक मांगे 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष में अतिरिक्त खर्च के लिए लाई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस अतिरिक्त बजट को लोक लेखा समिति की सिफारिश पर लाई है और पीएसी की अध्यक्षता विपक्ष के नेता के पास है। विधेयक का उद्देश्य भारत की संचित निधि से उन खर्चों के लिए धन निकालने की खातिर मंजूरी देना है जो व्यय 31 मार्च 2023 को खत्म हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ खास सेवाओं पर और उस साल के लिए मंजूर रकम से अधिक किए गए थे। वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोकहित के विभिन्न मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद पीठासीन अधिकारी घनश्याम तिवाड़ी ने सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक कल 11 बजे होगी। और लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारालूर हक। लोकसभा ने आज कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा न हो सकी। विधेयक का उद्देश्य विश्वसनीय नीतिगत व्यवस्था और प्रक्रियागत निश्चितता उपलब्ध कराकर अधिक से अधिक विदेशी पूंजी को आकर्षित करना तथा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने पिछले कई दिनों की तरह आज भी सदन में हंगामा जारी रखा, जिससे लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही सदन में एक भी दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके हैं। सदन की कार्यवाही सवेरे 11 बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने की वर्षगांठ का उल्लेख किया और फिर सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विपक्षी सदस्य सदन में हंगामा करने लगे। समाजवादी पार्टी के सदस्य जहां अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा प्रमुखता से उठा रहे थे, वहीं कांग्रेस सदस्य दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग को दोहराते हुए हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सदन को चलना चाहिए, सदन में चर्चा और संवाद होना चाहिए। अध्यक्ष ने कहा कि रोजाना नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना सदन की गरिमा को गिराता है, ये अच्छी परंपराएं नहीं है। उन्होंने कहा कि देश आपके आचरण को देख रहा है। शोर शराबा न थमने पर अध्यक्ष ने 11:03 पर बैठक अपराह्न 2 तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 2 फिर शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य आसन के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा उसे पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रख दिया। पीठासीन अध्यक्ष संध्या रॉय ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने और कार्रवाई चलाने में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि आपका यह व्यवहार उचित नहीं है, ये सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। हंगामा न थमने पर पीठासीन अध्यक्ष ने बैठक शुक्रवार सुबह 11 तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। विपक्ष के हंगामे के कारण कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा न हो सकी। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के आरएसपी सदस्य एनके प्रेमचंद्रन के सांविधिक संकल्प को खारिज कर दिया। सदन ने के राधाकृष्णन, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और प्रेमचंद्रन सहित कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। इसके बाद ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया गया। इस विधेयक में फंड मैनेजरों के भारत आने को आसान बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जबकि विदेशी निवेश को भारत में कारोबार में लगा पैसा नहीं माना जाएगा। ये विधेयक सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से होने वाले भुगतान पर शुल्क लगाने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है। इस विधेयक का उद्देश्य वर्तमान कानूनी प्रावधान को हटाना है, जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR को लागू करने से रोकता है। RTGS और NEFT के जरिए होने वाले रियल टाइम भुगतान के लिए सेवा शुल्क देना पड़ता है। हालांकि UPI लेनदेन को ऐसे शुल्क से अभी छूट प्राप्त है। संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित बदलाव कराधान से जुड़े एक बड़े कानून का हिस्सा है। कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर कम शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं तथा भुगतान अवसंरचना कंपनियों के लिए एक टिकाऊ राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है, जो डिजिटल भुगतान व्यवस्था को संचालित करती हैं। विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 10A बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पर शुल्क लगाने से रोकती है। वहीं आयकर अधिनियम की धारा 269SU के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाले बड़े व्यवसायों के लिए रुपे डेबिट कार्ड और भीम UPI QR कोड सहित कुछ निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान स्वीकार करना अनिवार्य है। वर्तमान में कोई भी बैंक या भुगतान प्रणाली प्रदाता आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269SU के निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए किसी पर भी सीधे या परोक्ष रूप से कोई शुल्क नहीं लगा सकता। इसके बाद अध्यक्ष और सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। इन हमलों में तत्काल 1,00,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी, जबकि लाखों लोग गंभीर रूप से घायल और विकिरण के शिकार हुए थे। राष्ट्रीय स्तर पर स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन की निगरानी मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति द्वारा की जाती थी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए ब्रिक्स 2026 वैश्विक सहयोग और समावेशी विकास की नई दिशा पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
3: उभरते देशों के समूह ब्रिक्स का गठन 20 वर्ष पहले हुआ था और 2026 में भारत ने इसकी अध्यक्षता संभाली, जिसके तहत अब तक लगभग 115 बैठकें अलग अलग स्तर की, अलग अलग क्षेत्रों के नेताओं की हो चुकी हैं, मंत्रियों की और भी लेवल्स पर मीटिंग्स हुई हैं, और जो पूरा क्लाइमेक्स होना है वो सितंबर में जब हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग होगी। सो क्या है ये ब्रिक्स की ग्रुपिंग का महत्व और किस तरह से ये लाभान्वित कर सकता है जो 11 सदस्य देश हैं और 10 पार्टनर देश हैं, और क्या है इसकी थीम, किस तरह से आपसी सहयोग सभी देशों के लिए एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज है, इस सब पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की एक्सपर्ट प्रोफेसर अंशु जोशी। प्रोफेसर जोशी, आपका बहुत बहुत स्वागत सुर्खियों में कार्यक्रम में।
4: सोनू जी नमस्कार, इतने महत्वपूर्ण चर्चा का भाग मुझे बनाने के लिए आपका हृदय से आभार। सभी श्रोताओं को नमस्कार।
3: प्रोफेसर जोशी, जैसा आपने अभिनंदन किया उसमें कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि ब्रिक्स का महत्व, ये जो उभरते देशों का समूह है, इसका महत्व क्या है, और जो भारत की अगर हम अध्यक्षता की खास तौर से बात करें तो जो ब्रिक्स का जो उन्होंने एक थीम दिया है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, इसके बारे में भी, इसके पीछे की सोच के बारे में भी अगर आप हमें संक्षेप में बता सकें।
4: सोनू जी, आपने दो बिंदुओं का ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछकर चर्चा की शुरुआत की है। तो ब्रिक्स की 2026 की अध्यक्षता और इसके समिट की मेजबानी भारत के पास है। भारत आज ग्लोबल साउथ के प्रणेता देश के रूप में पूरे विश्व में जाना और माना जा रहा है। जब हम ब्रिक्स की ओर देखते हैं तो अलग अलग जो ग्लोबल साउथ की मेजर इकोनॉमीज हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, उनका एक सरकारों का आपसी समूह है जिसमें 11 पूर्ण सदस्य हैं, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका थे, अब इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई और इंडोनेशिया भी जुड़ गए हैं। ब्रिक्स के पिछले समूह में सबसे नवीनतम सदस्य के रूप में इंडोनेशिया इससे जुड़ा, और इससे इसकी भौगोलिक सीमाओं का विस्तार हुआ है। हम देख सकते हैं कि लगभग सभी जितने भी ये इमर्जिंग इकोनॉमीज के देश कॉन्टिनेंट्स हैं, इनका प्रतिनिधित्व ब्रिक्स में है। ग्लोबल साउथ का एक बड़ा प्रतिनिधि प्लेटफॉर्म हम इसे कह सकते हैं, और इसमें पार्टनर कंट्रीज के रूप में 10 देश जुड़े हुए हैं, जिसमें बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, नाइजीरिया और वियतनाम जो है इस पूरे ब्लॉक के पार्टनर फ्रेमवर्क का भाग है। 2009 में हम देखते हैं कि ऑफिशियल समिट सोना ब्रिक्स के शुरू हुए, और फिर 2011 में जब साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स को ज्वाइन करके ब्रिक्स से इसे ब्रिक्स बनाया, इसके बाद से इसका एक बड़ा एक्सपेंशन हुआ, और अब इसका एक स्ट्रेटेजिक महत्व है, इसका एक आर्थिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है, और भारत जैसे कि मैंने कहा ग्लोबल साउथ के प्रणेता देश के रूप में पूरे विश्व में जाना और माना जा रहा है, तो रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी की थीम के साथ, जिससे जुड़े हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को और ग्लोबल साउथ के एजेंडा को भारत लगातार योगदान दे रहा है, इस थीम के साथ भारत इस वर्ष ब्रिक्स की मेजबानी कर रहा है। सोनू जी,
3: प्रोफेसर जोशी, आपने इतनी खूबसूरती से समझाया कि किस तरह से जो समूह है इसका कहें कि विकास हुआ है पिछले 20 वर्षों में, किस तरह से ये बढ़ा है, और जो मेजबानी भारत कर रहा है, कितने उन्होंने एक स्पष्ट प्राथमिकता दी है अपने थीम के द्वारा। ये जो पहली मीटिंग हुई थी ब्रिक्स शेरपास की 9-10 फरवरी को 2026 में, उसमें ये प्रस्तुत की गई थी। उसके बाद कई मीटिंग्स हुई है प्रोफेसर जोशी, जो विदेश मंत्री है ब्रिक्स देशों के उनकी मीटिंग हुई 14-15 मई को 2026, और जो एनर्जी मिनिस्टर है उनकी मीटिंग हुई 25-26 जून को, और अभी ओडिशा में जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हो रही है एजुकेशन सेक्टर में किस तरह से सहयोग हो उसको डिस्कस करने के लिए, और कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग भोपाल में हो रही है। तो आप हमें एक मोटे तौर पर बता सकती हैं कि जब ऐसी मीटिंग्स होती हैं तो किस तरह का आपसी सहयोग उभर के आता है, क्या प्रोडक्टिव या क्या प्रैक्टिकल आउटकम्स उभर के आते हैं?
4: सोनू जी, आपने ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, क्योंकि अक्सर हम इस प्रकार के जो ये मल्टी लेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी बात करते हैं, इनमें भारत की भूमिका की बात करते हैं, पर इनका भारत जैसे देशों की आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की प्रगतियों पर क्या असर पड़ता है ये भी जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक ऑप्टिक्स की यहाँ पर बात नहीं है, टेंजिबल आउटकम्स की बात है। भारत ने जब 2023 में G20 की मेजबानी की थी, अध्यक्षता की थी, तभी से हम इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय मंचों के न सिर्फ डेमोक्रेटाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम इसमें ग्लोबल साउथ का जो एजेंडा है जिसमें कि ग्लोबल साउथ की इमर्जिंग इकोनॉमीज को नेतृत्व की भूमिका दिलाना, ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म करना, किस प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज और लड़ाई को मजबूत करना, इन सभी देशों की सुरक्षा, अलग अलग प्रकार की जो सुरक्षा है वो अक्षुण्ण रहे इसके लिए प्रयास करना, इन सभी देशों के इंफ्रास्ट्रक्चरल और सामाजिक विकास के लिए प्रयत्न करना और इससे जुड़ी फंडिंग को जुटाना, ये तमाम जो लक्ष्य है इनको लेकर के विशेषकर ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पर काम हो रहा है। तो आप देखिए फरवरी में ब्रिक्स के शेरपास की पहली मीटिंग नई दिल्ली में हुई थी, इसमें जो थीम है, थीमेटिक जो जितने ये एलिमेंट्स है जिनकी हमने बात की, रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी, इसको लेकर चर्चा हुई। और एजेंडा फिक्स हुआ जो ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाने से जुड़ा हुआ है, एनर्जी और हेल्थ सिक्योरिटी से, पीपल सेंट्रिक पार्टनरशिप से, पीपल टू पीपल कनेक्ट्स को बढ़ाने से जुड़ा हुआ है। फिर इसको लेकर के हम देखते हैं कि मई में ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई जिसमें सभी सदस्य देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने शिरकत की। उसके बाद जून में एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, जुलाई में हेल्थ मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई। अब हम देख रहे हैं कि शिक्षा से जुड़ी हुई, संस्कृति से जुड़ी हुई जो थीम्स है उसको लेकर के जुड़े हुए जो मंत्री हैं वो आ रहे हैं ब्रिक्स के अलग अलग देशों से और यहाँ हमारे यहाँ अलग अलग शहरों में जुड़ रहे हैं। तो इससे सोनू जी फिर द्विपक्षीय स्तर पर सहयोग को और टेंजिबल आउटकम्स में फिर बात करूंगी उसे, जैसे उदाहरण स्वरूप ब्राजील के साथ हमने जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बीते वर्षों में अपने सहयोग को बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ाया है, चाहे वो हमारा बायोफ्यूल अलायंस हो या सोलर अलायंस हो, तो इस तरह से द्विपक्षीय स्तर पर भी सहयोग मजबूत होता है और ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पर भी ये जितने भी हमारे एजेंडा है इनको एक नई दिशा मिलती है और योगदान मिलता है।
3: सो प्रोफेसर जोशी, आपने बहुत खूबसूरती से समझाया कि किस तरह से प्रैक्टिकल आउटकम्स आते हैं। अगर हम तात्कालिक बात करें तो अभी जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग चल रही है भुवनेश्वर में और अगस्त 5 से 7 तक ये मीटिंग होनी है और हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी वो भी इसमें भाग ले रहे हैं। आप खुद शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं तो किस तरह की आउटकम्स आप एज एन एक्सपर्ट सोचती हैं कि निकल के आ सकती हैं, कौन से एरियाज में आपको लगता है कि टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग या स्किल्स डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं या फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स प्रिपेयर्डनेस की बात करते हैं, इन एरियाज पर भी ध्यान दिया जाएगा?
4: निश्चित तौर पर सोनू जी, और यहाँ पर फिर प्रोफेशनल मोबिलिटी का भी जो बिंदु है वो जुड़ जाता है। भारत जैसा देश जो कि पूरी आबादी, विश्व की जो युवा आबादी है उसकी 22% युवा आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, हम एक युवा देश है, तो ऐसे में ये जो युवा आबादी है, जेन जी है, जेन अल्फा है, जेन बीटा है, इनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप को, किस प्रकार से स्टार्टअप्स को, इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाए और अलग अलग जो एक्टिविटीज हैं, तमाम जो क्षेत्र हैं, चाहे तकनीकी सहयोग का क्षेत्र हो, चाहे हम रक्षा का क्षेत्र देखें या अलग अलग सामाजिक हम क्षेत्रों को देखें, तो इसमें यूथ पार्टिसिपेशन को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे पीपल टू पीपल एक्सचेंज हो। अब इसमें फिर शिक्षा से जुड़े हुए एक्सचेंजेस से जुड़े हुए समझौते भी हमारे सामने आते हैं जो कि ब्रिक्स के स्तर पर या द्विपक्षीय स्तर पर होंगे। उदाहरण स्वरूप हमारा जो ICCR है, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च जो है, या ICSSR है, इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंसेज रिसर्च, ये इस प्रकार की स्कॉलरशिप्स प्रदान करता है, ये जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमीज है इन देशों के युवाओं को जो यहाँ आकर के पढ़ सकते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं, वाइस वर्सा हमारे यहाँ के युवा इन देशों में जा सकते हैं। इसी प्रकार से जो शिक्षक है, शिक्षकों के एक्सचेंजेस, शिक्षकों के लिए वर्कशॉप्स और इस प्रकार की जो सुविधाएं और इस प्रकार की जो स्कीम्स हैं वो फिर इन मीटिंग्स के बाद हमको टेंजिबल आउटकम्स के रूप में, तो कैसे युवाओं का पार्टिसिपेशन बढ़े, कैसे एकेडमिशियंस का पार्टिसिपेशन बढ़े, इसको ध्यान में रखते हुए इस मीटिंग में जो है चर्चा की जा रही है सोनू जी।
3: सो प्रोफेसर जोशी, अब ग्लोबलाइजेशन का जो एक दौर आया था, फिर बीच में हमें कुछ ऐसा दिखाई दिया कि मल्टीलैटरलिज्म थोड़ा वीक हो रहा है, लेकिन अब ब्रिक्स का जो हम एक समूह देख रहे हैं बहुत स्ट्रांग, और जिस तरह से हमने देखा है कि 115 बैठकें हुई हैं अलग अलग अलग अलग क्षेत्रों में और आउटकम्स उभर के आ रहे हैं, आपको लगता है कि उभरती टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है सभी देशों को आपस में जोड़ने के लिए और जो एक आदान प्रदान है बेस्ट प्रैक्टिसेस का उसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत हद तक सहायक है?
4: बिल्कुल सोनू जी, बल्कि मैं आपको बताऊं कि जब हम शक्ति की परिभाषा की ओर नजर डालते हैं तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शक्ति की परिभाषा एक मिलिट्रल और टेरिटोरियल शक्ति या पावर तक सीमित थी। उसके बाद 90 के दशक में जब वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन ने दस्तक दी तो किस बेसिस पर या किस शक्ति के बलबूते दस्तक दी? तकनीक की शक्ति के बलबूते दस्तक दी। फिर हमने इंटरनेट, ICT टेक्नोलॉजीज, MNCs को हमारे द्वार खटखटाते देखा। फिर ये जो तमाम ग्लोबल साउथ की इमर्जिंग इकोनॉमीज थी, इन्होंने अपनी ओपन इकोनॉमी के माध्यम से FDIs के लिए द्वार खोले। और फिर हमने देखा कि ये तमाम देश जो है ये आर्थिक तरक्की की ओर बढ़े। इन सब में तकनीक का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ये जो तकनीकी सहयोग है, ये आज भी हम देख सकते हैं कि ब्रिक्स जैसे मंचों पर सहयोग का एक बहुत बड़ा एरिया कह लीजिए या एक एलिमेंट कह लीजिए, जिसके माध्यम से ये जो तमाम देश हैं, चाहे आप देखिए स्वास्थ्य का क्षेत्र देखिए, शिक्षा का क्षेत्र देखिए, आप विदेश नीति को देख लीजिए, आप रीजनल या ग्लोबल सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, तो हर कहीं तकनीक जो है उसका एक रोल है। बिना तकनीकी सहयोग के और बिना तकनीकी दक्षता के कोई भी देश आज की तारीख में आगे नहीं बढ़ सकता। और ये जो तकनीकी सहयोग है, ये फिर न सिर्फ मल्टीपोलैरिटी को मजबूत करता है, ये कहीं ना कहीं शक्ति के अलग अलग जो है पोल्स हमें बनाता हुआ दिखाई पड़ता है, ये मल्टीलेटरल इंगेजमेंट्स को भी मजबूत करता है और फिजिकल बॉर्डर्स के अक्रॉस देश और उसके लोग आपस में एक दूसरे से संवाद कर पाते हैं। तो ये तकनीकी शक्ति है और ये जो तकनीकी सहयोग है, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ा जाए, ये ब्रिक्स का एक प्रमुख एजेंडा।
3: प्रोफेसर जोशी, ये सारी उभरती इकोनॉमीज हैं जो ब्रिक्स का हिस्सा है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं। आपको लगता है कि उस संदर्भ में भी एक बहुत ही एक ये सिनर्जिस्टिक सिनर्जी है इस समूह में, क्योंकि सब किसी ना किसी डेवलपमेंट साइकिल की स्टेज से गुजर रहे हैं। उनकी सबकी प्रायोरिटीज आपको लगता है कि साझा है और इसलिए जो इसके परिणाम भी है वो ज्यादा मजबूत आते हैं ऐसे समूह के?
4: बिल्कुल सोनू जी, लेकिन मैं आपको बताऊं, विविधता में एकता। हमारे जो ग्लोबल साउथ के ये देश हैं और विशेषकर जब हम ब्रिक्स के मेंबर नेशंस की ओर देखते हैं जो फुल मेंबर्स हैं, तो उनकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन और उनकी आर्थिक स्थितियां और सामाजिक स्थितियां भिन्न भी हैं, हम इस बात को भी समझें। ऐसे कई देश हैं, उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताऊं, लैटिन अमेरिका के और अफ्रीका के जो देश हैं वो यदि आप आर्थिक दृष्टि से देखें तो वे बहुत मजबूत नहीं नजर आते, लेकिन उनके पास एम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, विशेषकर क्रिटिकल मिनरल्स। और भारत जैसे देश जिनकी जिनकी भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है, जिनके पास एक बड़ी संख्या में यूथ पॉपुलेशन है, तो यहां से फिर एक सिनर्जी और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमको क्रिएट होती हुई नजर आती है, जिसमें जिस देश को जो आवश्यकता है और उस आवश्यकता की पूर्ति जो दूसरा देश कर सकता है उसके साथ वो हाथ मिलाते हुए नजर आता है। तो जैसे भारत ने घाना, मैं अफ्रीका की बात करूं, या नाइजीरिया, या फिर हम लैटिन अमेरिका में चलें तो जो लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज हैं, अर्जेंटीना, बोलिविया, चिले, या हम ब्राजील की ओर देखें तो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को प्रमोट करने के लिए भारत ने बायलेटरल लेवल पर कई समझौते किए हैं। और इसी तरह से आप जब इन मेंबर नेशंस को देखेंगी तो इनके बायलेटरली और फिर ब्रिक्स के लेवल पर मल्टीलेटरली कई अग्रीमेंट्स भी हैं और साझा सहयोग इस प्रकार का है कि जिन देशों को फंडिंग की आवश्यकता है तो उनकी फंडिंग के माध्यम से सहायता की जाए। क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक कहीं ना कहीं भिन्नता नजर आती है। कुछ देश ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से बहुत प्रगति कर चुके, भारत जैसा देश आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन जब हम देखते हैं तो अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के और साउथ ईस्ट एशिया के कई ऐसे देश हैं जिनको की फंडिंग की आवश्यकता है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसी प्रकार से इन देशों के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं और वहां पर फिर भारत जैसे देश जो है वो इनके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन संसाधनों का हम कैसे उचित प्रयोग कर सकते हैं, उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और किस तरह से एक ग्लोबल लेवल पर हम एक अच्छी सप्लाई चेन क्रिएट करके उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं, उनको बेच सकते हैं, तो इसमें भारत सक्षम है। तो ये एक सिम्बायोटिक हमको सिनर्जी क्रिएट होती हुई नजर आती है।
3: भारत का जो नेतृत्व रहा उसको आप कैसे देखती हैं? क्या ये एक और पहलू रहा जिसमें भारत ने एक लीडरशिप रोल निभाया?
4: बिल्कुल, 2023 में जब भारत ने G20 की अध्यक्षता की थी तब भारत की न सिर्फ सराहना हुई थी वैश्विक स्तर पर, बिना किसी एक भी डिसेंट के दिल्ली डिक्लेरेशन पास हुआ था और तमाम अलग अलग वैचारिकता रखने वाले देशों ने भी एकजुट होकर के भारत का जो एजेंडा था और जिस तरह से भारत ने G20 की मेजबानी की उसकी बहुत सराहना की थी, उसी प्रकार से भारतीय होने पर मुझे बहुत गर्व है। क्योंकि भारत शांति और सुरक्षा की बात करते हुए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करने की बात करते हुए आपसी सहयोग की बात करता है, जिसमें वो विन विन सिचुएशंस क्रिएट करने के लिए लगातार काम कर रहा है। और इसमें जो लाइक माइंडेड देश हैं जिसमें ब्रिक्स के भी सदस्य देश शामिल हैं, वो भारत के साथ लगातार सहयोग कर रहे हैं। तो भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण पिवोटल केंद्रीय भूमिका है न सिर्फ ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पे, बल्कि यदि मैं ओवरऑल वैश्विक राजनीति की बात करूं तो सोनू जी, भारत आज जिस मंच में जाकर के बैठता है उसका पलड़ा भारी होता है और वहां से फिर हम देखते हैं कि कैसे वैश्विक सहयोग जो है वो निरंतर प्रगति करता है, आगे बढ़ता हुआ नजर आता है।
3: प्रोफेसर जोशी, थैंक यू सो मच। आपने ब्रिक्स पर, खासकर भारत के जो अध्यक्षता है ब्रिक्स की, अभी 2026 में अभी चल रही है, उस पर इस समग्र चर्चा की, हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
4: बहुत धन्यवाद सोनू जी।
2: अभी आप सुन रहे थे ब्रिक्स 2026।

0: वैश्विक सहयोग और समावेशी विकास की नई दिशा पर चर्चा इसमें भाग ले रही थीं अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी, कार्यक्रम का संचालन कर रही थीं सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
1: सुर्खियों में
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुर्खियों में।
3: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम नमक हलाल। किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज है। गीत लिखा है अनजान ने। बप्पी लहरी का संगीत।
4: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना ना।

0: किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज़ में अनजान का लिखा गीत आप सुन रहे थे। संगीत था बप्पी लहरी का, फिल्म का नाम नमक हलाल।
1: ओहो क्या है बात, अब तो हर पल हम हैं आपके साथ। आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर सुने जा रहे हैं। इसके साथ ही अब ये कार्यक्रम प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुने जा सकते हैं। ये ऐप ऑनलाइन एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस तरह आप और हम हुए एक साथ, तो सुनते रहिए आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। मालवा की शान
2: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत,
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
3: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे। चलो दीदी झूला झूलते हैं।
4: हाँ हाँ क्यों नहीं,
5: अंगवा की रार पेजी।
3: और झूलते झूलते सुनते हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
0: फिल्म संगीत में कार्यक्रम का आखिरी गीत अब आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म है मोहरा, उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज़, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, बीजू शाह का संगीत।

0: मानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
2: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
1: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि परियोजना से यात्रा समय घटकर आधा हो जाएगा।
2: आज का दूसरा बड़ा फैसला है, असम में एक हाईवे पे बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये है बायता चेरियाली, यानी गुवाहाटी से जस्ट बाहर निकलने के बाद में वहां से लेके तेजपुर तक। ये 4 लेन हाईवे 135 किलोमीटर का है और करीब 8,970 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। आगे जाके ब्रह्मपुत्र टनल को भी ये जोड़ेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने कहा कि ये योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। किसानों, सहकारी समितियों, लघु और मध्यम उद्यमों, महिला उद्यमियों तथा ग्रामीण उद्यमों को इसका लाभ मिलेगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। जम्मू कश्मीर के संबंध में सदस्यों की चिंताओं पर वित्त मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि 2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान की है।
3: आर्टिकल 370 गेटिंग

0: फॉरगेटेड।
1: अनुच्छेद 370 का निरसन इस बात को सिद्ध करता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जिसमें वे क्षेत्र भी शामिल है जिन पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इसलिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरा सहयोग और संरक्षण मिले, क्योंकि हम सभी एक ही देश का हिस्सा है।
2: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही में कई बार व्यवधान आया।
3: लोकसभा की कार्यवाही दो बार और राज्यसभा की कार्यवाही तीन बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के कारण लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका, जबकि राज्यसभा में इन्हें कुछ समय के लिए ही संचालित किया जा सका। हंगामे के बीच लोकसभा ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। इस विधेयक में संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 तथा वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन का प्रावधान है। उधर राज्यसभा ने चर्चा के बाद विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 को पारित कर लोकसभा को लौटा दिया। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांग की थी। यह राशि मुख्य रूप से ऋण के पुनर्भुगतान पर खर्च की जाएगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आज फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग हैं और इन्हें एक नहीं समझना चाहिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही।
4: 19 लाख हाउस होल्ड आर रिसीविंग जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल।
5: 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। सौर ऊर्जा संयंत्रों को लगाने से महज 9 महीनों में लगभग 3.25 गुना की वृद्धि हुई है।
4: मोर देन 3.2 टाइम्स इन जस्ट 9 मंथ्स।
2: ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हुई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस बैठक में शामिल हो रहे हैं।
6: ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें 9 देश मिलकर दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं, जो हम सब अपने अपने देशों के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से अच्छी नीतियों के साथ विश्व भर में प्रगति हो सके उसकी चिंता करते हैं।
2: 2 दिन का ब्रिक्स वेब्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
7: सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री चंचल कुमार ने आज कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार का उद्देश्य वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए एक ऐसा मंच बनाना है जहां परियोजनाओं, भागीदारी तथा को प्रोडक्शन के नए मार्ग उजागर हों। इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, एआई मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के भविष्य को आकार देने के लिए प्रभावी साबित होगा। विशारानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: ये आकाशवाणी है। झारखंड और केरलम में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में मॉनसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में झारखंड विधानसभा में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गयी।
1: छात्रों का आंदोलन अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सरकार की ओर से गतिरोध समाप्त करने की गंभीर कवायद शुरू की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर चार मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसके जवाब में छात्रों की तरफ से वार्ता के लिए 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की घोषणा की गई है, जो सीधे सरकार के मंत्रियों के समक्ष अपनी बातें रखेंगे। इस मुद्दे पर विपक्ष ने आज झारखंड विधानसभा के भीतर और बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के विधायकों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: उधर केरलम के तिरुवनंतपुरम में भाजपा युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले 2 वर्ष से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की। बम्बई उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपने कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया, जो पीड़िता को दिया जाएगा। सरकार ने आज बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने मेजबान सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र वापस लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि अभियान ने 5 सफल वर्ष पूरे कर लिए हैं और ये एक जन आंदोलन में बदल गया है। ये राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना को दर्शाता है। हर घर तिरंगा अभियान इस महीने की 9 से 17 तारीख तक चलाया जाएगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 374 अंक बढ़कर 78,955 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11 अंक की मामूली बढ़त लेकर 24,636 दर्ज हुआ। और अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 95.22 रूपए पर बंद हुआ।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई से मानवाधिकारों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पिछले एक दशक में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जबरन गायब किए जाने, अत्यधिक बल प्रयोग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक और कब्जे वाले क्षेत्र में जवाबदेही की कमी पर बार बार चिंता व्यक्त की है। 27 जुलाई को पीओजेके में तथाकथित विधायी चुनावों के पहले दिन रावलकोट में हिंसक झड़प हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णामूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में तन्वी ने श्रेयांशी वलिशेट्टी को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरलम में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ। और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9.

इंदौर केंद्र है। चित्रगीत में लीजिए सुनिए सदाबहार फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत अब आपको सुनवाते हैं। फिल्म है अनुपमा, आशा भोसले की आवाज़ है। गीत लिखा है कैफी आजमी ने, हेमंत कुमार का संगीत।

हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में अब आपको सुनवा रहे हैं पतिता फिल्म का गीत। हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत।

आशा भोसले की आवाज़ में माय लव इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवाते हैं। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, दान सिंह का संगीत है।

कार्यक्रम के आखिर में गीता रॉय की आवाज़ में आपको सुनवा रहे हैं मिस मेरी फिल्म का गीत। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, हेमंत कुमार का संगीत।

6 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध, आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को पद्मश्री तपस्वी का नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है अजनबी, किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ है, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, आर डी बर्मन का संगीत, और इसे पसंद किया है आप सभी ने। सनावत से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, दीपक, सचिन कटारिया, प्रभा, कृष्णा, विराज, काव्यांशी कटारिया, मोटका माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल। सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अल्तमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। मुखर्जी नगर इंदौर से जगदीश चौहान, ललिता, विशाल, उर्वशी, प्रियंका, प्रियान, ऋतिक, लकी, शौर्य, मुन्नू, ख्याति, किशन लाल, बसंतीबाई। पुलगांव वर्धा से सुनील पेदाम, सुनीता, निकिता, दामिनी और श्रिया। देवास से मनु ठाकुर, योगेंद्र सिसोदिया, नेत्रा रावणकर। कराड़िया जिला देवास से लाखन सिंह राजपूत, विजय, सोनू, उमेश, मुरली, राजकुमार, अनमोल, संजय, दीपक और कपिल। बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची, तनु। गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधड़े, आरती और समस्त साथी। बहरामपुर टेमा से डॉक्टर त्रिलोकचन वर्मा, अभिषेक, सीमा, अंतिम, अमित वर्मा, सचिन, मास्टर समरराज, आर्यन, बेबी आरोही, इशिका, अंजलि और श्वेता। ग्राम देवलरा तहसील मनावर से डॉक्टर महेंद्र सिंह सोलंकी, रुद्र प्रताप सिंह सोलंकी। पालदाना का इंदौर से हसीना भी मंसूरी, अमीना भी मंसूरी, मोहम्मद रफ़ी मंसूरी। इंदौर से ही सृष्टि उपाध्याय। सनावत से कालू सिंह बडोले, सीताराम, हीरालाल, तेरसी डावर, साहिल, हरिओम, विशाल, सुमन, रमा, कंचन और भावना। इसी गीत को पसंद किया है हिंगोली से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान, सारिका, सुरेखा, सोनम। छत्रपति शाहू नगर हिंगोली से रामचंद्र हिंगोले, सिद्धांत, टीकू, रमाबाई, सुरेंद्र, मयूरी, सुरभि, मंजूषा, गौतम हिंगोले और समस्त परिवार। आप सभी ने पसंद किया है अजनबी फिल्म का गीत, किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़।

मन भावन कार्यक्रम का अगला गीत अब आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म है पति पत्नी, लता मंगेशकर की आवाज है, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, आर डी बर्मन का संगीत, और पसंद किया है आप सभी ने धर्मपुरी जिलाधार से शेख फही मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम, शेख मुजफ्फर, अयान फैजान, सुमेरा, कशिश, साइमा, हसनैन और खुशी। ग्राम नावदाखेड़ी जिला देवास से प्रेम नारायण जाट, संजय जाट, पवन सिंह जाट, माही सार्थक और आदित्य जाट। ग्राम खेड़ा मंसूर से भगत राम चौहान, कृष्णपाल, मयंक, प्रीति। ग्राम गोगावा तहसील मनावर से महेंद्र भगोरे, श्रेया भगोरे, साक्षी और श्रेयांश भगोरे। द्वारकापुरी इंदौर से राजेंद्र शर्मा, भावना, जयदीप, अर्पिता, हिमांशु, निशिता। सनावत से अबरार भाई, इमरान, इरफान, वसीम, सोनू, सईदा बी, आयशा, सुल्ताना। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राजेश, राशि और शीतल। पिंपरी वाशिम से गबा सिंह राठौर, सतीश राठौर, अभय, अजय, यश और खुशन। मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीक धाड़े, मीनाजी, स्वप्निल, अजय खिरोड़कर। मोटका माफी खंडवा से दयाचंद सेन, मिश्रीलाल, प्रेमबाई, छाया, पूजा, योगेश और समस्त परिवार। सुदामा नगर इंदौर से अनिल भंडारे, उषा, समता चित्रा, निशा भंडारे। प्रमिलागंज आलोट से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि। इंदौर से अनिल कवचाले, नेहा फंड से सीमा, सबीहा, कमल, पूजा, नैनावा, सुषमा और स्मिता। वंदना नगर इंदौर से वंदना खर्चे, नारायण भाऊ खर्चे, ललिता, परी, स्वाति, गणेश भाऊ, कार्तिक भाऊ खर्चे। पिपलियापाला इंदौर से समंदर सिंह भंडारी, कविता, सविता रानू, जया माधुरी, अश्विन, केशव सिंह और गौरव। आप सभी ने पसंद किया है पति पत्नी, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़।

आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म का नाम चोरी चोरी, लता मंगेशकर मन्ना डे की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, और पसंद किया है आप सभी ने कवर कॉलोनी बड़वाहा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली, मीनू राज श्रीमाली, ग्राम थापना से राजेंद्र सिंह भदौरिया, ज्योति भदौरिया, उदय राज सिंह भदौरिया, अश्विन राज सिंह भदौरिया, प्रतिभा पांजरे, नेहा बल्लू जिया, मनीष शर्मा, भावना आशीष, राशि जाधव और दिनेश पांजरे इंदौर से, करनाल से सुधीर, नूतन, मीनाक्षी तिवारी, ग्राम भड़बुंजी आगर से रघुनाथ मालवीय, आशा, लता, सुषमा, ममता, मंजू, बबीता, मधु, मिलन, आयुष, उमंग, ओम प्रकाश, हाथीगेट राजपुर से संतोष पाटिल, लड़की पाटिल, नेहा बरखा, मक्सी से दयाराम जाटव, चेंसी आरोल, नानू राम कासोटिया, नंद किशोर, दीपक, सारणी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि वाघ, पंजाब राव, निम्बालकर, संदीप पाटिल, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक, झावेंद्र कुमार, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रेयांश, बड़वाहा से पुष्पेंद्र रावल, इंदु रावल, निहारिका, सूर्यकांत, चंद्रकांत, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबिन, छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दकी, वाहिद अली सिद्दकी और शमीम बानो। आपको सुनवा रहे हैं चोरी चोरी फिल्म का गीत, लता मंगेशकर मन्नाडे की आवाज़।

मन भावन कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम शर्मीली, लता मंगेशकर की आवाज़, गीत लिखा है नीरज ने, एस डी बर्मन का संगीत है और पसंद किया है आप सभी ने। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन पंचोलिया, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, राजा राम नगर देवास से राजू अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, सौरभ, शाइना, निवान, उपाध्याय नगर से मुरारी लाल वर्मा, मनीष वर्मा, कमल निगम, पलसीकर कॉलोनी इंदौर से धनेश मटाई, राकेश, उमेश सहजवानी, हनी, अमिता, जियाना, जियांश मटाई, कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, मनमौजी, सरताज भी, उबैद, रजिया भी, जुनैद, अलीना, नसरीन जहां, आयत, मुआज मंसूरी, सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता, मुस्कान, बोरखेड़ा पित्रामल से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दिशा, कुश, ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार, विशाल, शीला, गायत्री, मानपुर से विजय वेद, रानी, महिमा, नीतू, लाभ्राभिरु इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमीला बामनिया, नंदिनी, मुस्कान, नीलम, सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कुणाल, केतन, आप सभी ने पसंद किया है शर्मीली फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज़।

मन भावन कार्यक्रम का आखिरी गीत अब आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म है चित्रलेखा। आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने, रोशन का संगीत। पसंद करने वाले श्रोता हैं आप सभी। मालेगांव से दत्ता घायार, सुनीता बाई, सानिका गजानन। इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला, संगीता, सुनीता, पीके साक्षी, मनन तानिया। बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, काफिर, श्रीमती सविता, बेबी स्वाति। कल्याणपुर ग्राम तिगड्डा, खुरई तिगड्डा से मनीष कुमार पाराशर, राधिका खुशी, अनीता, सविता, प्रेम नारायण पाराशर, हेमंत, किशन, अभिषेक, दीपेश, वृंदावन, मयंक, गिरीश, राजा, पुष्पेंद्र, गौरी शंकर और कृष्ण कुमार पाराशर। भालोदा लखा उज्जैन से कन्हैया लाल प्रजापति, कैलाश, कुंदन, साक्षी, मीनाक्षी, भगवंताबाई। खंडवा से शिवांश कुमार खंडाले, सुभाष, मंदा, राजेश कुमार, अंजलि, संदीप, माधुरी, पिंटू, जयश्री। मोहत जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ।

तड़वी जरीना मुबारक परवेश बिटिया रोजबीन तैमूर गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले रेखा राखी पारस तपस्या करिश्मा आप सभी ने पसंद किया है चित्रलेखा फिल्म का गीत आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाज़।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: की सुगम गायन। संगत कलाकार हैं हारमोनियम पर अजय हेड़ाऊ, तबले पर निखिल मड़ावी तथा वायोलिन संगत निशिकांत देशमुख इनकी है।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू मराठी सुगम संगीत द

0: Flautist is Bhairavi Kale. The accompanists are Ajay Hedau on harmonium, Nikhil Madavi on tabla, and violin artist is Nishikant Deshmukh.
1: Bhairavi Kale ne apne pita Vikas Kale tatha Sushri Mangal Deshmukh inse sangeet ki siksha prapt ki hai. आप आकाशवाणी नागपुर की सुगम संगीत में ए ग्रेड प्राप्त कलाकार हैं। आपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में संगीत अलंकार तथा पीएचडी प्राप्त की है। मधुर स्वर की धनी भैरवी काले ने राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संगीत प्रतियोगिताओं में सहभाग लिया है तथा वह एक दंत चिकित्सक भी हैं।
0: Bhairavi Kale received her musical training from her father Vikas Kale and Miss Mangal Deshmukh. She is an A-grade artist in light music from Akashvani Nagpur. She holds the Sangeet Alankar and PhD in Hindustani classical music. Possessing a melodious voice, Bhairavi Kale has participated in various music competitions at the state and national levels. She is also a dentist by profession.
1: आज की पहली पेशकश है वसंत वैभव दहा दिशान्ना पसरे। ये शब्द है कवियत्री सरोज देशमुख के। इस गीत को संगीतबद्ध किया है अजय हेड़ाऊ ने।
0: हियर इज द फर्स्ट गीत वसंत वैभव दहा दिशान्ना पसरे, संग बाय भैरवी काले। द पोएटिस इज सरोज देशमुख एंड इज कंपोज्ड बाय अजय हेड़ाऊ।

0: इस गीत के बाद अब भैरवी काले प्रस्तुत कर रही हैं गीत धरा आणी मेघांचे हे ये जुड़ुनी नाते। रचना है सरोज देशमुख की, इसे संगीतबद्ध किया है अजय हेड़ाऊ ने।
1: भैरवी काले नावरेंडर्स द नेक्स्ट गीत धरा आणी मेघांचे हे ये जुड़ुनी नाते, पेंड बाय पोएटस सरोज देशमुख एंड इज कंपोज्ड बाय अजय हेड़ाऊ।

0: भैरवी काले की इस प्रस्तुति के बाद अब सुनते हैं सुरेश भट्ट की रचना। शब्द है माझी उदास गीते तू एक दोस कारे, और गा रही हैं भैरवी काले। संगीतकार हैं अजय हेड़ाऊ।
1: नेक्स्ट कॉम्पोजिशन माझी उदास गीते तू ऐकतो सकारे इज पेंड बाय सुरेश भट्ट, कंपोज्ड बाय अजय हेड़ाऊ, एंड सिंगर इज भैरवी काले।

0: कार्यक्रम के इस भाग के अंत में प्रस्तुत है रामदास कुहिटे का लिखा ये गीत। भैरवी काले ने गाए इस गीत को, संगीतबद्ध किया है अजय हेड़ाऊ ने। इस गीत के बोल हैं, गणतंत्र भारताचा स्वातंत्र दीप देवो।
1: भैरवी काले कंक्लूड्स हर रिसाइटल विथ गीत गणतंत्र भारताचा स्वातंत्र दीप तेवो। द पोएट इज रामदास कुहिटे and is composed by Ajay Hedau.

0: इस गीत के साथ ही आज के प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के इस भाग का समापन होता है। कलाकार थी भैरवी काले, संगत कलाकार थे हारमोनियम पर अजय हेड़ाऊ, तबले पर निखिल मड़ावी और वायोलिन संगत निशिकांत देशमुख इनकी थी।
1: With this Marathi Geet by Bhairavi Kale, we come to the end of this part of the national program of regional folk and light music. The accompanists were Ajay Hedau on harmonium, Nikhil Madavi on tabla, and violin artist was Nishikant Deshmukh.
0: यह ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी नागपुर के स्टूडियो में किया गया। आज का प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम जारी है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला भाग।
1: This part of the program was recorded in the studio of Akashvani Nagpur. The program continues. Let us listen to the next segment.
2: ये Akashvani है। क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे सुखविंदर सिंह द्वारा पंजाबी सूफी व लोकगीत।
3: This is Akashvani. In this part of the national program of regional folk and light music, you will listen to Punjabi Sufi and folk songs by Sukhvinder Singh.
2: Sukhvinder Singh, जिन्हें उनके मंचीय नाम दलेर अली के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब के एक प्रतिष्ठित सूफी एवं लोक गायक हैं। संगीत के क्षेत्र में दो दशकों के अनुभव के साथ उन्होंने पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक एवं संगीत परंपरा के संरक्षण और प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पिछले 20 वर्षों के दौरान उन्होंने अनेक कव्वाली कार्यक्रमों, सांस्कृतिक समारोहों, धार्मिक आयोजनों तथा विभिन्न प्रतिष्ठित सामाजिक एवं सांस्कृतिक मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। उनकी सूफियाना एवं लोक गायकी को देश विदेश के श्रोताओं द्वारा सराहा गया है। एक सफल कलाकार होने के साथ साथ वे एक समर्पित संगीत गुरु भी हैं। उन्होंने अनेक विद्यार्थियों को संगीत की शिक्षा प्रदान की है। वे आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं।
3: सुखविंदर सिंह, ऑल्सो नोन बाय हिज स्टेज नेम दलेर अली, इज अ रेनाउंड सूफी एंड फोक सिंगर ऑफ पंजाब। विद टू डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, He has made significant contribution to the preservation and promotion of Punjab's rich cultural and musical heritage. Over the past 20 years, he has performed at numerous live Qawwali concerts, cultural festivals and religious events, as well as on various prestigious social and cultural platforms. His Sufi and folk singing has been acclaimed by audience. Both in India and abroad. In addition to being a successful artist, he is also a dedicated music mentor. He has imparted musical training to numerous students, many of whom are now successfully pursuing career in their respective fields. He is an A-grade artist of Akashvani.
2: आज रात के कार्यक्रम में सुखविंदर सिंह सबसे पहले प्रस्तुत करेंगे काफी शाह हुसैन।

0: माई मेनू खेड़ियां दी गल ना आख। इस काफी की प्रस्तुति का मुख्य विषय ईश्वरीय प्रेम, अटूट भक्ति और आध्यात्मिक मिलन है। हीर का खेड़ों को स्वीकार करने से इनकार करना, आत्मा द्वारा सांसारिक मोहमाया को ठुकराने और अपने प्रियतम जो ईश्वर का प्रतीक है के प्रति पूरी तरह समर्पित होने का प्रतीक है।
1: द सेंट्रल थीम ऑफ दिस काफी रिवॉल्व्स अराउंड डिवाइन लव, अनवेवरिंग डिवोशन एंड स्पिरिचुअल यूनियन। हीर्स रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द खेड़ास symbolizes the soul's rejection of worldly attachments and its complete surrender to the beloved Ranjha, who represents the divine.

0: सुखविंदर सिंह अब प्रस्तुत करेंगे काफी बाबा बुले शाह। मैं गल उत्थे दी करदा हां। ये बुले शाह की एक बेहद रहस्यमय रचना है जो अनिश्चितता, आत्मखोज और ईश्वर के प्रति समर्पण के जरिए साधक की आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाती है। कवि एक ऐसी सच्चाई की बात करते हैं जो भौतिक दुनिया से परे है, एक ऐसा आध्यात्मिक सत्य जिसे आम भाषा में बयां करना बहुत मुश्किल है। वह ईश्वरीय प्रेम और आंतरिक जागृति के अपने अनुभव को साझा तो करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही अपनी झिझक और डर को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि ऐसे सत्य को केवल तर्क या बुद्धि के जरिए पूरी तरह नहीं समझा जा सकता।
1: दिस वन इज अ डीप मिस्टिकल कॉम्पोजिशन बाय बाबा बुल्ले शाह दैट एक्सप्लोर्स द सीकर्स स्पिरिचुअल जर्नी थ्रू अनसर्टेनिटी, सेल्फ डिस्कवरी एंड सरेंडर टू द डिवाइन। While the poet wishes to share his experience of divine love and inner awakening, he admits his hesitation and fear because such truths cannot be fully understood through reason.

0: सुखविंदर सिंह अब प्रस्तुत करेंगे काफी बाबा गुलाम फरीद, सोनिया रमजा तेरियां पौंदियां। बाबा गुलाम फरीद की ये सूफी रचना दिव्य प्रेम की अनोखी सुंदरता और आध्यात्मिक आकर्षण का जश्न मनाती है। असल में कवि प्रिय की मनमोहक खूबियों के बारे में बताता है। मन मोहने वाली आंखें, सुंदर बौहें, लहराते बाल, आकर्षक हाव भाव। हालांकि सूफी परंपरा में ये शारीरिक खूबियां दिव्य सुंदरता के उन रूपों की निशानी हैं, जो साधक के दिल को आध्यात्मिक जागृति की ओर खींचती हैं।
1: दिस इज अ मिस्टिकल सूफी कंपोजिशन एट्रिब्यूटेड टू बाबा गुलाम फरीद दैट सेलिब्रेट्स द इररेसिस्टिबल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल अट्रैक्शन ऑफ द डिवाइन बिलेवड। इन द सूफी ट्रेडिशन The physical attributes symbolize the manifestation of the divine that draws the seeker's heart towards spiritual awakening.

0: कार्यक्रम के अंत में सुखविंदर सिंह प्रस्तुत करेंगे एक गीत, रात अद्धी रात तो लंग गई अगा, पता नहीं यार किथे रह गया। देव हरियाणवी का ये गाना चाहत, इंतजार और जुदाई के दर्द से दिल को छू लेने वाला है। गाना एक ऐसे प्रेमी की भावुक हालत को दिखाता है जो पूरी रात अपने उस प्यारे के आने का इंतजार करता है जो कभी नहीं आता।
1: दिस सॉन्ग लिरिसाइज्ड बाय देव हरियाणवी इज अ पॉइगनेंट एक्सप्रेशन ऑफ लॉन्गिंग, एंटिसिपेशन एंड द पेन ऑफ सेपरेशन। द सॉन्ग कैप्चर्स द इमोशनल स्टेट ऑफ अ लवर हु स्पेंड्स द एंटायर नाइट वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ अ बिलेविड हु

0: क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में आप अभी सुन रहे थे सुखविंदर सिंह द्वारा पंजाबी सूफी व लोकगीत। उनके साथ संगत कर रहे थे ढोलक पर प्रदीप कुमार, तबले पर चरण, कीबोर्ड पर पंकज, सारंगी पर सुखविंदर सिंह, बांसुरी पर गुरदीप सिंह तथा मैंडोलिन एवं गिटार पर चरणजीत ढिल्लो। कार्यक्रम का ये भाग आकाशवाणी जालंधर की प्रस्तुति थी।
1: You were listening to the Punjabi Sufi and folk songs sung by Sukhvinder. He was accompanied on dholak by Pradeep Kumar, tabla, charan, sarangi, Sukhvinder Singh, keyboard, Pankaj, flute, Gurdeep Singh, and mandolin and guitar by Charanjit Dhillo. This part of the program was a presentation by Akashwani Jalandhar.

0: जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर रात्रि के 11 बजने को है। अब कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार।
1: नमस्कार,
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदकर बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने का आग्रह किया।
3: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूं 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
2: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ

0: ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चरियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोबरधन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र भारत लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि सरकार विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल बनाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। 2 दिन का ब्रिक्स वेव्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। यह रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। वहीं ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हो गई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। झारखंड में विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विधानसभा में राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब और दिल्ली में संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स सपोर्ट धोखाधड़ी और जबरन वसूली करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। The Union Cabinet today approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees to boost clean energy and rural economy. Briefing media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the scheme will be implemented from 2026-27 to 2035-36 and establish compressed biogas as a major pillar of India's future energy mix.
2: भारत की जो नेचुरल गैस का कंजम्पशन है,
3: इंडिया करंटली इम्पोर्ट्स नियरली 50% ऑफ इट्स नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट्स एंड द गवर्नमेंट इज टेकिंग कंटिन्यूअस स्टेप्स टू रिड्यूस दिस डिपेंडेंस। अंडर द स्कीम द प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस इज टारगेटेड टू इंक्रीज टेनफोल्ड ओवर द नेक्स्ट डेकेड। फ्रॉम एन एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव द इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बाय अप्रोक्सीमेटली 40 मिलियन टन्स। इकोनॉमिकली इट इज प्रोजेक्टेड टू कंट्रीब्यूट अराउंड 75,000 करोड़ रुपीज